0: FM 100's time check. It's 7 a.m. This public service message is brought to you by FM 100. गाड़ी चलाते वक्त ये ना सोचिए कि सिर्फ आपकी गलतियां हादसात का सबब बन सकती हैं। दूसरों की गलतियों के लिए भी तैयार रहिए। ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए। FM 100 Like us on facebook.com/FM247365
1: FM247365
0: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
1: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.

0: 7:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: गली मोहल्लों में सफाई का खास ख्याल रखें, कहीं पर पानी खड़ा ना होने दें। डेंगू जानलेवा मर्ज है, इलाज से बेहतर एहतियात है। This public service message is brought to you by FM 100.
3: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदान-ए-जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो राज निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
0: Like us on facebook.com/FM247365. FM247365.

0: अगली गाड़ी से रास्ता लेने के लिए दिन में हॉर्न और रात में बत्तियों का इस्तेमाल कीजिए और रास्ता मिलने का इंतजार कीजिए।
1: दिस मैसेज वॉज ब्रॉट टू यू बाई FM 100 पाकिस्तान।
2: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247 365

0: FM 100's time check. It's 8 a.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: It's 8:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking
2: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath
1: account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेक बुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
2: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
1: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहाँ HBL.
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
5: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: This program is brought to you by
4: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
0: And
6: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
7: Sweep V Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

following us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

जी आप है हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मुझे कहते हैं आज है समीहा और आज का हमारा टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। आज का हमारा टॉपिक ये है कि ऐसी कौन सी दूसरों की आदतें हैं जो आपको बहुत गुस्सा दिलाती है। ज्यादा से गलत दबाव तो मेरे पास तो खैर पूरी लिस्ट है कि लोगों की कौन सी आदतें गुस्सा दिलाती होंगी और ऐसी भी बात नहीं है, मुझे पता है कि मेरी भी कोई बहुत सारी ऐसी आदतें जो दूसरों को गुस्सा दिला देती होंगी, मेरे घर वालों को दिलाती हैं, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन अपनी गलतियों का अंदाजा होना चाहिए ताकि आप उस पर काम कर सकें और कोशिश यही होनी चाहिए कि अच्छे तरीके से अपनी खुद ही एहतसाब कर लें, क्योंकि जब दूसरे बताते हैं आपको आपकी गलतियां बहुत बुरा लगता है। और तो हम अनोइंग हैबिट्स की बात करें, लेकिन अगर कुछ हैबिट्स काफी तकलीफदेह होती हैं दूसरों के लिए भी तो अपने आप को ठीक करना चाहिए। आप लोगों के पैगामात हमारे पास आ गए हैं, नजीर खोसो, शनाज शाहिद, मोहम्मद अली अंसारी, इकबाल हुसैन और थैंक यू आप लोगों के मैसेजेस के लिए। और तो इकबाल हुसैन थैंक यू, आपने मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज किया है, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमारे पास हाँ जी मोहम्मद अली अंसारी हैं, वो हमें बाहर से मतलब शहर से बाहर से भी सुन रहे होते हैं और फिर भी मैसेज कर रहे होते हैं, बड़ी बात है वैसे कि समिया जी रिटर्न जर्नी हो, कराची की तैयारी कर रहा हूँ, साथ साथ शो भी इंजॉय कर रहा हूँ, थैंक यू। फरहाद मेमन कह रहे हैं सैलरी का पूछना, जब कोई पूछता है कि क्या करते हो, जॉब कौन सी है, कारोबार क्या है, सैलरी कितनी है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। सैलरी वाकई में ये एक ऐसी गलती है जो कभी नहीं करनी चाहिए कि आप किसी से सैलरी ही पूछें। भी तनख्वाह एक अंकल थे, वो हर एक से ना सैलरी पूछते थे और खवातीन से उनकी एज पूछते थे, तो लोगों हमने उनके घर ही जाना छोड़ दिया कि बस छोड़ दें भैया आप, मतलब रहने ही दें, आप तो हर वक्त सैलरी पूछते रहते हैं। कुछ बातें जो कभी भी नहीं पूछनी चाहिए वो भी सबके सामने, उनमें से सैलरी ऊपर से अजीब अजीब बातें लोग पूछते हैं। और तुम्हारी शादी कब कर रहे हो अंकल, जब हो जाएगी ना शादी तो मैं आपको सबसे पहले इनवाइट करने आऊंगा। और उनको अच्छी तरीके से पता होता है कि यार अभी शादी करने में मसला है, जिस चीज में मसला होता है वही सबके सामने, वो भी कि बंदा लोग दूसरे लोग अवॉइड करें, मगर कुछ एक आ जाते हैं अंकल जो सबके सामने पूछते हैं अच्छा बेटा शादी कब कर रहे हो, भाई उनकी उसका और किसी का दिल नहीं चाह रहा शादी करने का, मतलब क्यों करनी है शादी, हर वक्त जबरदस्ती शादी शादी शादी शादी, वो भाई नहीं कर रहा, वो दिल नहीं चाह रहा। वैसे भी कराची के हालात कौन से हैं जहां पे शादी करने का दिल चाहेगा, है अजीब वो गरीब में, क्योंकि शादी करनी है ना कराची से भाग जाके रहने, या है क्या, एक इंसान वैसे ही दुखी है, दूसरे को ले आए दुखी होने के लिए, फिर बच्चे भी हो जाए उनको भी मजीद दुखी कर लो, अगर आपके पास पैसे हैं अपना मकान है तभी शादी के बारे में सोचे, खुद तो बंदा दुखी कहते हैं अच्छा अच्छा। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है कि जी वो बीवी रेस्ट ले आएगी, हाँ बीवी जहेज ले आएगी तो शादी करो, ताकि भाई सीरियसली मैं तो कहती हूँ कि सोच समझ के करे शादी, वरना बंदा ना ही करे शादी, शादी के बगैर ही ठीक है, और पैसे होने चाहिए शादी से पहले। और वो कहते हैं जी गरीब गुर्बत इज बीइंग मल्टीप्लाइड, हाँ ये कब अक्सर ऐसा भी होता है कि शादी के बाद लोग ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, घर बन जाता है, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर अनोइंग हैबिट्स हैं तो ना पहले उसको दूर करें उसके बाद शादी करें, क्योंकि फिर आजकल की बीवियां वो वाली कमजोर बीवियां तो है ही नहीं कि जो चुपचाप सहेंगी, वो भी बेलन है और वो तरीके आ गए ना आजकल की लड़कियों को, इसलिए अपनी अनोइंग हैबिट्स ठीक करें। फिलहाल हमें मैसेज करें और बताएं कि आपका क्या सीन है, आप जो है वो क्या कहते हैं यू आर मतलब आपको कौन सी अनोइंग हैबिट्स हैं, चल आज अपनी ही दूसरों की बात कर रहे हैं कि आपको दूसरों की कौन सी बुरी हैबिट्स जो है ना वो आपको बहुत ही जहर लगती है, दूसरे जानवरों को पकड़ के मारो, तो ये आप हमें बताएं, हमें बताएं, हम सुनेंगे आपकी बात और हमें मैसेज करें आजय समिया के फेसबुक पेज पे या एट आजय समिया इंस्टाग्राम पे। और सिग्नल इश्यू हो रहा है तो खैर इट्स लाइक वेरी बैड, चलिए ठीक है, फिलहाल हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये ट्रैक, आइए सुनते हैं।

0: ऑलराइट जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और आज हमारा टॉपिक ये है कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाती हैं, अनॉय करती हैं दूसरों के अंदर। और क्या कहता है अजीम अफजल का भी मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि झूठ बोलना। और शहनाज शाहिद भी कह रही हैं कि झूठ बोलने की आदत वो तो सबको बहुत ही है। खवातीन जितना भी बोलते हैं झूठ बोलने की आदत नहीं, आप उनसे एज पूछें फिर बताएं फिर पता चलेगा वो कितना सच बोलती है। लेकिन फिर भी ये भी बहुत अनोइंग हैबिट है किसी के सामने, खवातीन के सामने, सबके सामने उनकी एज पूछना, मतलब दैट्स लाइक रियली रूड एंड हॉरिबल। और उसके साथ साथ मर्दों की आपने अगर उम्र पूछी है तो ये भी बहुत बुरी बात, एज वो तनख्वाह पूछी है तो ये भी एक बहुत ज्यादा बुरी बात है। खैर हम लोगों के मैसेजेस पढ़ते हैं। नजीर खोसो कह रहे हैं, देखिए मुझे सबसे ज्यादा परेशानी तब होती है जब कोई दूसरों की बात बीच में काट देता है। और बात मुकम्मल तो होने देना है, हर कोई अपनी राय देना चाहता है। दूसरी आदत जो बहुत बुरी लगती है वो वादा करके भूल जाना, किसी से टाइम लिया हाँ कह दिया फिर गायब है, फिर बहुत दिल दुखाता है। तीसरी चीज, लोगों का मोबाइल चलाते हुए सामने वाले को इग्नोर करना। आपके सामने बैठा है बंदा और आप स्क्रॉल कर रहे हैं, इज्जत नहीं। और सबसे बड़ी बात, छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना। बस यही गुजारिश है कि थोड़ी सच्चाई, थोड़ा वक्त और थोड़ी इज्जत, रिश्ते खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे। और ये कितनी अच्छी आपने बात की नजीर खोसो साहब, आपके लिए तारियां होनी चाहिए। एक बार पहले होता था कि बड़ों के सामने लोग सिगरेट नहीं पीते थे कि नहीं नहीं वो आ गए अब वो आ गए या खालू आ गए, जो भी सिगरेट छुपा लो। अब मेरे ख्याल से मोबाइल छुपा लेना चाहिए, क्योंकि मैं अब बच्चों को सिखाना चाहिए कि बेटा कोई बड़ा आया है आपके घर पे, बड़ा आपके सामने बैठा हुआ है, भले वो आपसे बात भी नहीं कर रहा या मेहमान आए, अपने मोबाइल ही निकालना। इवन आप अगर आप किसी के घर पे गए अपने मोबाइल ही निकालना। दैट इज लाइक, मैं कहा एक घंटा बर्दाश्त कर लो, सबर कर लो, लोगों को ऑब्जर्व कर लो, उनकी शक्लें देख लो, किसी के घर आए हो, उन्होंने मेहनत की हुई है, खाने वाने आपके लगाए हैं, तो ये फोन लिटरली बच्चे इतने एडिक्टेड हो गए हैं, माँ बाप खुद एडिक्टेड हैं, तो बच्चों ने क्या रोकना है। आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, बच्चे आईपैड पे लगे हुए हैं, माँ बाप अपने अपने फोन पे लगे हुए हैं, ये उनको बच्चे भी फिर चाहिए। मैं कहा भाई बच्चों के लिए अगर बस टाइम नहीं था तो बच्चे क्यों ना आने थे दुनिया में, है। और मतलब वो एडिक्टेड हो गए। इवन अगर आप बच्चों को कुछ खिला नहीं सकते जब तक आप उनके सामने स्क्रीन ऑन ना करें, और अच्छा अब तो माँ बाप भी कुछ नहीं खा सकते क्योंकि स्क्रीन ऑन ना है। एंड इवन आई नीड अ लॉट ऑफ स्क्रीन, आई नीड माई फेवरेट ड्रामा टू ईट, बिकॉज आई थिंक हमारी जिंदगी का सबसे खुशी का मोमेंट ही यही है कि ड्रामा लगाओ या मूवी लगी हो आपकी पसंद की और फिर आप खाना खा रहे हो। लेकिन ये आप बड़े हो गए, बच्चे इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर वो बहुत कंडीशनड हो जाते हैं कि उनको बस स्क्रीन देखनी है हर वक्त, और खाना हो या ना हो। तो खैर हमारी बातें चल रही हैं और आबिद अमीर साहब का भी मैसेज आ गया जो हम शामिल करेंगे। और हर वक्त अपनी पर्सनल ले लिया करें, है, शादी के बिना जिंदगी नहीं। भाई आपकी शादी कामयाब होगी इसका मतलब यही नहीं है कि हर एक शादी कामयाब है, बहुत सारी शादियां टूट भी रही हैं। आप खुश हैं बस अच्छी बात है, खुश रहें, मस्त रहें। और मेरी बात आपको हर सुनने को किसने कहा है, मस्त सुनने बात है। आपने कौन सी मेरी आज तक बात सुनी है जो आप आगे भी सुनेंगे, है, छोड़ें और खुश रहें, फ्रूट खाएं। और हम आपको मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
1: This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
2: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. Sirf ek bimari nahi, ek imtihan hai. Har din एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है। और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं उम्मीद है। ہر اس چہرے کی جو جینا چاہتا ہے. خدمت میں سب سے آگے سندھ.
1: ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ کے ساتھ اپنے خوابوں اور بزنس کو دے آزادی کی اڑان. مفت آئی بی ایف ٹی, مفت چیک بک, مفت آن لائن بینکنگ اور بہترین موبائل ایپ کی سہولت کے ساتھ اکاؤنٹ کھولے ڈیجیٹلی یا وزٹ کریں اپنی قریبی ایچ بی ایل برانچ. ایچ بی ایل فریڈم اکاؤنٹ, جہاں خواب وہاں ایچ بی ایل.

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खार वहां HBL।
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
0: This program is brought to you by
1: Haier का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: एंड फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा।
4: एंड स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
0: एंड HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।

0: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कवानीन के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं तो बराहे करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसान जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: पाकिस्तान हमसे है, हम अच्छे तो पाकिस्तान अच्छा। तो आओ अहद करें कि जैसा पाकिस्तान हम देखना चाहते हैं वैसे खुद बनकर दिखाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। अज़्म-ए-इस्तेहकाम, मुस्तहकम पाकिस्तान।
1: मुफाद आमा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत मुंह खोले आपकी मुंतजर है।
4: हमने आप लाखों से तीन बार मौत देखी।
5: टाइम से मनु ऐसे ही कि मैं हूँ, कब्र से चला गया, मैं नहीं बचा।
6: फिर उन्होंने साड़ी वीडियो बनाया, सानू मारिया, सानू कुटिया।
3: अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें।
7: एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीजा लग गया था, वर्क वीजा।
3: इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देभाव के लिए वजीर आजम पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का कयाम। मुलगीर क्रैकडाउन जारी, एजेंट्स और सरकारी अहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनों बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकदसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचें, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/fm247365
8: FM 247365। किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
9: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे ना लगाएं।
8: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
10: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
9: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
8: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ही कम नहीं।
10: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
9: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
10: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
8: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचें
10: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
8: आइए वेट से आगे का सोचें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।

वेलकम बैक। आप हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में और मैं हूं आपकी दोस्त आजय सुमिया। हम बात कर रहे हैं आज के आपको ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपको दूसरों में बहुत ज्यादा इनॉय करती हैं, आपको दिल चाहता है उनको पकड़ के मारो। और मुझे तो ये जो मुंह में रख के जो गुटखा लोग खा रहे होते हैं और वो बोल भी रहे होते हैं, इसके साथ साथ जाता उनको उठा के मारो और फिर उनको असल में रियलाइज ही नहीं होता कि ये कितनी डिस्गस्टिंग हैबिट है। मुंह के अंदर कोई भी चीज रखना जब आप किसी से बात कर रहे हो, ये बहुत ही गंदी चीज है। और ये भी कि आप सिगरेट पी रहे हैं मुंह के सामने, आप धुआं आ रहा है आपके ऊपर। और अच्छा, बंदा मुरव्वर ने बोल देता है हाँ हाँ पी लो तुम्हारे फेफड़े हैं, लेकिन पैसिव स्मोकिंग भी एक चीज होती है। और अब समझ में नहीं आता कि ज्यादा गंदी चीजें क्या है, मतलब ये मावा गुटखा या फिर ये स्मोकिंग। और तो ये इस काइंड ऑफ वेरी वेरी अनोइंग। और उसके बाद कुछ लोग जो है ना वो लाइक शोएं भी बड़ी मारते हैं, शो भी बड़ी मारे होते हैं हर वक्त अपने। हम तो वहां छुट्टी पे गए, वहां पे छुट्टी गए, और अब तो ये कि चले आप उनसे मिले या ना मिले, इंस्टाग्राम पे हर चीज ही डाली हुई होती है। और खाने की तस्वीरें, खाना पहले खाओ नहीं उसकी तस्वीरें लेकिन इंस्टाग्राम पे डाल दो। ओ भाई अब तुम खा रहे हो तो हम क्या करें यार, मतलब मैं भी ये करती थी कभी कभी, कहते कभी मैं बहुत चाहता था शेयर करने का, दुनिया को बताना कि हम यहाँ गए, हमने यहाँ नाश्ता किया है। फिर इकबाल हुसैन साहब ने कहा मुझे एक दफा के लिए आपने खाने की तस्वीरें नहीं आपको डालनी चाहिए, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि हाँ अपनी फैमिली को तो बंदा भेजते व्हाट्सएप पे, लेकिन कोई दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि आप कभी कभी जिंदगी में अच्छी जगह जाते हैं खाने पे। और

जिंदगी में अच्छी जगह जाते हैं खाने पे, और उस पे क्या है हमने सबको तस्वीरें दिखानी हो, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि आपके बच्चे कितने हैं और नहीं बच्चे के या आपके बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, उनके अच्छे लोगों ने रिपोर्ट कार्ड भी डाली हुई होती है, भाई हम क्या करें भाई हमारा बच्चा मुश्किल से पास हुआ है, तुमने अपने बच्चे की पूरी रिपोर्ट कार्ड डाल दी है ऑल एज, भाई हम क्या करें, मुबारक हो तुम्हें लेकिन हम क्या करें। तो वो मतलब मैं तो फेसबुक ही यूज करना छोड़ दिया कि सारे मेरे दोस्त जो है ना वो अच्छी अच्छी चीजें डाल रहे होते हैं, ऐसा था किसी की सबकी जिंदगियां अच्छी चल रही है सिवाय आपके, और आप कहते हैं यार बस सर मेरे साथ क्या मसले, ये काफी अनोइंग है। इवन लिंक्डइन के अंदर भी भाई आप किसी सेमिनार गए हर जगह चीज की वो डाल रहे हो, तो भाई हम क्या करें, गुड फॉर यू यू नो, एंड नॉट एवरीथिंग इज वर्थ शेयरिंग। आज हम अपने लंच पे गए अपने कोलीग्स के साथ, तो भाई हम क्या करें है, हर कोई डाल रहे होते हैं, मतलब सीरियसली आई थिंक थोड़ी सी चीजें अपने तक ही महदूद रखनी चाहिए, तो ये भी जो है ना वो काफी अच्छी बात है। फिलहाल अच्छी बात ये है कि आप हमें मैसेज कर रहे हैं आज समिया के फेसबुक पेज पे या @RJSamia इंस्टाग्राम पे, और आप हमें ये बता रहे हैं कि कौन सी चीजें जो है ना आपको बहुत बुरी लगती है, हर बात बुरी लग जाना ये आदत ही परेशान करती है। हाँ कुछ लोगों के हस्बैंड भी इतने सड़े हुए होते हैं कि उनको हर बात ही बुरी लग रही होती है कि जी हमें तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता, ऐसे भी रिश्तेदार हैं इनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, जब भी आप उनसे मिले उनके मुंह पे शिकायतें भी होंगी लेकिन वो आएंगे भी। मैं कहती हूँ भाई जब तुम लोग जो हो मतलब क्या कहते हैं क्यों आना है आपने, मतलब लिटरली क्यों भला। और इसके अलावा हमारे पास और भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, और नम्रा का भी मैसेज आ गया है जो हम शामिल करेंगे, फिलहाल हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये ट्रैक।

0: FM 100's time check. It's 9 a.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है, शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी, पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
4: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
5: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट के लिए जैस कैश है ना।
6: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
7: बंद करो ना ढक्कन।
8: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
4: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
9: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: This program is brought to you by
1: Hire Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries,
0: and
2: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा,
0: and
3: Sweepy Clean, करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा, और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ,
0: and
4: HBL Freedom Account, जहां खाब, वहां HBL.

0: is facebook.com/FM247365. FM247365. Let's celebrate 31 years of memory, milestone, and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy. Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
1: वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और मैं हूं आपकी दोस्त आजय समीहा. और हमारे पास आ गए हैं आप लोगों के पैगाम और हम शामिल करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास है आपके लिए एक खास पैगाम HBL की जानिब से. और अब खोलें अपना HBL फ्रीडम अकाउंट और हासिल करें मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक और मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग की सहूलत. अकाउंट खोलना भी बहुत आसान है. अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच. और अब नई HBL मोबाइल ऐप के साथ बैंकिंग का नया अंदाज एक्सपीरियंस करें. HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दें आजादी की उड़ान. ये मैसेज था HBL की जानिब से. और अब हम चलते हैं आपके मैसेजेस शामिल करते हैं. ओके जी, और आपके मैसेजेस क्या हैं भला देखते हैं. हमारे पास आली अंसारी का मैसेज आया हुआ है, हमारे पास नमरा महमूद शेख का भी मैसेज आया हुआ है. तो सबसे पहले जो है हम जो है वो नमरा महमूद शेख का मैसेज जो है वो पढ़ते हैं. एक सेकंड, आली अंसारी का भी हम पढ़ेंगे. बड़े खूबसूरत लोग हमें मैसेज कर रहे होते हैं और तो हम जो है वो आपके साथ इसको शेयर करते हैं. रुक जाएं. अच्छा जी, और हमारा आज का टॉपिक ये है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा अनॉय करती हैं लोगों के बारे में, तो आप हमें उसका बता रहे हैं. अच्छा जी, और हम पर चलते हैं, नम्रा का मैसेज जो है वो शामिल करते हैं. अच्छा, नम्रा जो है वो कह रही है कि इंटरप्टिंग स्पीकिंग बिफोर अनदर पर्सन फिनिशेज देयर थॉट. और कि उससे पहले जो है ना लोग जो है बात रोक देते हैं. फोन डिस्ट्रैक्शन, ग्लांसिंग एट स्क्रीन्स व्हाइल समवन इज टॉकिंग, वन अपमैनशिप, मैचिंग एवरी स्टोरी विद द बिगर वन अबाउट वन सेल्फ, लाउड पब्लिक कॉल्स, शाउटिंग फोन कॉन्वर्जेशंस इन क्वाइट स्पेसेस, नॉइजी ईटिंग, च्यूइंग बैडली और स्मैकिंग लिप्स ड्यूरिंग मील्स, और इम्परफेक्ट वर्क, फिनिशिंग द टास्क विद केयरलेसनेस, स्किपिंग बेसिक चेक्स, लीविंग टास्क हाफ डन, वर्किंग टू फास्ट टू सेव टाइम, पैथेटिक प्रेजेंटेशन. अच्छा, शी हैज स्पोकन लाइक अ गर्ल हु इज वेरी ऑर्गेनाइज. नम्रा कह रही है कि जब बंदा जो है, अक्सर ये कॉर्पोरेट लाइफ में आपको ये चीजें फेस करनी पड़ती है कि आपने बात खत्म नहीं की, दूसरा पहले से शुरू हो गया, कोई बात कर रहा है, आप फोन देख रहे हैं और आप किसी को अपनी स्टोरी बताते हैं, वो बंदा उससे भी बड़ी स्टोरी लेकर आता है. अच्छा, तुम वहां गए थे छुट्टियों पे? अच्छा, मैं तो पता तुम्हें लास्ट टाइम वहां गया था. तो ये हम नोटिस नहीं करते कि वाकई में हम किसी की स्टोरी को अपनी उससे बड़ी स्टोरी से कैसे किल करते हैं. तो थैंक यू नम्र, इतना अच्छा. उसके बाद फोन पे बहुत ज्यादा जोर जोर से बातें करते हैं तो मैं भी करी उठू. अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही. अच्छा, तुम आ गए. और उसके बाद ये इट्स काइंड ऑफ अनोइंग. और हॉस्पिटल से भी मैंने देखा लोग बहुत जोर जोर से बात कर रहे होते हैं, इस तरह उसका ख्याल नहीं रखते. और उसके बाद खाते वक्त बहुत जोर जोर से आप च्यू करते हैं. लड़कियां देखो बता रही हूँ, बातें बड़ी नोटिस करती हैं. और क्या आप कैसे खाना खा रहे हैं, पागलों की तरह, जंगलियों की तरह. और खाना खा के ना फिर कुछ लोगों, जब खाना सामने आ जाता है, साथ में लड़कियां हैं नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो पागल हो जाते हैं खाना देख के. ऐसे भी लोग हैं. इम्परफेक्ट वर्क, और के जो टास्क को जो है ना वो जल्दी जल्दी खत्म करना और चेक भी नहीं करना. और लड़कों का ये भी होता है अक्सर, लड़कों का, लड़कियों का अब तो खैर चैट GPT आ रही है, अब तो स्पेलिंग चेक कर लो, चेक नहीं करते, आधा काम छोड़ देते हैं और जल्दी जल्दी काम कर रहे होते हैं टाइम बचाने के लिए, और प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती. तो ये खैर नम्रा ने बड़ी अच्छी हमें बातें बताई. इसलिए मैं चाह रही थी कि नम्रा जो है ना, मैं जरूर मैसेज करें. लड़कियों का जो अंदाज होता है, और लड़कियां बिल्कुल खामोशी से ऑब्जर्व कर रही होती हैं लड़कों को. अच्छा, लड़के ओवर कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं, उनको हम में कोई खराबी हो ही नहीं सकता, परफेक्शन को इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है. उनकी ऐसी सोच होती है कि आपको बात बताऊं, आप किसी लड़की से मिले, वो आपको ऐसी ऐसी डिटेल में बताएगी चीजें कि आपकी आंखें खुल जाएंगी. इसके अलावा हमारे पास आर्यन सारी का भी मैसेज आया है और वो भी हम जरूर शामिल करेंगे. इट्स ऑल्सो अ ग्रेट मैसेज. अभी वक्त हुआ है हमारे क्लासिक टाइम का, तो चलते हैं क्लासिक टाइम में. और हम वो एक गाना है एक बाल बानो का, उसमें भी काफी अनोइंग बातें वो कर रही हैं कि वो लड़की अगर मिलकर आ गई है तो वो उसको बड़ा छेड़ रही है कि ओहो कहाँ गई थी तुम, किससे मिलकर आ रही हो तुम, अब तो तुम्हारी खैर नहीं है वगैरह वगैरह. तो ऐसी कुछ अनोइंग बातें हो रही हैं इस गाने में, आइए सुनते हैं.

0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: महिराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है। शॉबिंग सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शॉब जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम।
2: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
3: This program is brought to you by
2: Hire Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
4: And Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
5: And
6: sweep it clean, kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
0: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

All right जी, आप है हमारे साथ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में, होपफुली आवाज आ रही होगी अब है, और आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास है आ गए हैं। आप बता रहे हैं कि ऐसी कौन सी अनोइंग हैबिट्स हैं जो आपको लाइक बहुत ही गंदी लगती है दूसरों के अंदर। और आली अंसारी का मैसेज है हमारे पास, बड़ा ही शानदार एज एक्सपेक्टेड एज यूजुअल। आली अंसारी कह रहे हैं, हु आर द पीपल एंड व्हाट आर द एक्शंस दैट आई डिसलाइक। दिस इज अ वास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इनवाइट्स अस टू रिफ्लेक्ट ऑन द क्वालिटीज दैट मेक अ पर्सन एडमिरेबल और अनडिजायरेबल। एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन मॉरल स्टैंडर्ड, बट फॉर अ मुस्लिम द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इज द गाइडेंस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी एंड द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। The Quran and Sunnah clearly describe which qualities are loved and which are disliked. Therefore, our personal preferences should be guided by these principles. Allah Almighty loves truthfulness, honesty, justice, mercy, humility, patience, forgiveness, keeping promises, protecting the rights of others and wishing well. These qualities define strong character and build a peaceful, trustworthy society. On the other hand, lying, deception, betrayal, breaking promises, oppression, arrogance, envy, backbiting, slander, spreading discord, violating the rights of others and harming people for personal gain or greed are all strongly condemned. Such behaviors destroy trust, weaken relationships, divide communities and lead to social corruption. A Muslim should constantly evaluate their character in the light of Quran and Sunnah, speak the truth, uphold justice, honor commitments, respect the rights of others and avoid all that displeases Allah and His Messenger when individuals refine their character. और बहुत ही खूबसूरत बात की है आली अंसारी ने। आली अंसारी ने कहा है कि आपको अल्लाह ताला और उनके नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहकामात पे चलना चाहिए और वो वाली आदतें अपनानी चाहिए जो अल्लाह को पसंद है। इसी तरीके से जो बातें का कुरान में भी जिक्र है जो अल्लाह ताला को नहीं पसंद, वो आदतें अपनों से, अपनी जात से निकालनी चाहिए, जिसमें झूठ है, धोखा देना है, वादे तोड़ना है, गुरूर करना है, पीछे बुराइयां करना है, फसाद फैलाना है, दूसरों का हक मारना है और अपने फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करना है, लालच, ये सारी चीजें अल्लाह ताला को नहीं पसंद। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में इसका जिक्र किया है, मौला अली ने नहजुल बलागा में इन आदतों का जिक्र किया है। जो भी जिस चीज से दूसरों को तकलीफ पहुंचे, भले वो झूठ है, भले वो बहुत ज्यादा लालच है, तो ऐसी सारी चीजों को आपको चुन चुन के अपनी जात से निकालना होता है, तभी कहीं आपकी जात जो है वो संवरती है। और जात को निखारने वाला जो काम है वो सारी उम्र जारी रहता है। अपनी जिंदगी के किसी मकाम पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब मैं अपने आप को क्या चेंज करूं इस उम्र में। भाई चेंज आप आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक आपको करना चाहिए, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहना फिल्मों में क्यों लगता है मैं तो ऐसा ही हूं, भाई आप अपने आप सवाल करें कि मैं ऐसा क्यों हूं, क्यों हूं मैं ऐसा, क्यों हूं मैं इतना सड़ा हुआ, क्यों मैं हंसता नहीं हूं, क्यों मैं हर जगह मतलब अपना गुटखा जा खा के थूक रहा होता हूं, मतलब क्यों है आप ऐसे। और मेरे ख्याल से लोग भी, कराची का ये मसला ये भी है, हम लोग मुंह पे नहीं बोलते, हम लोग बस पीछे से बुराइयां कर रहे होते हैं, मुंह पे हम कुछ भी नहीं बोलते किसी को कि यार भाई तू क्यों खा रहा है, तू पागल है, कौन है भाई। और लोगों का लोगों से डर नहीं है, और इस तरह हमारे सियासतदानों को कोई डर नहीं है अपने लोगों का कि कितने जहर लग रहे होते हैं मुझे। और मुझे सियासतदानों की अनोइंग पहली हैबिट ये लगती है कि तो वह बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं होते, क्योंकि मतलब आप अपने आप को तो देख ले मन्ना, चलो हुसन हटा दो साथ में, एक तो मन्ना हसीन नहीं है, ऊपर से उसकी हरकतें भी हसीन नहीं है। मुझे इतनी अनोइंग लगती है बातें कि भाई आगे पीछे चेले क्यों लेकर चलते हैं ये सारे सियासतदान। आपको पता है कि एक लाइन क्रूजर जो चल रही होती है उनके पीछे, उसके अंदर सिर्फ चेले होते हैं, जरा सी गाड़ी स्लोली सारे चेले निकल जाते हैं गाड़ी से बाहर, हाय हाय बेचारे उनको कुछ हो गया, तबीयत तो नासाज नहीं होगी, गाड़ी सिर्फ स्लो हो गई थी टेंडिंग के ऊपर, आपको उतरने की क्या जरूरत थी। ये जो चेले लेके जा रहे होते हैं, फिर भाई सिग्नल पे उतर नहीं सकते, सिग्नल पे रुकना इनके खिलाफ है, क्यों भाई क्या हो गया, सिग्नल पे अगर तुम उतर जाओगे तो क्या मिनिस्टर नहीं रहोगे। नहीं नहीं नहीं, ये रूल्स जो है ना ये सिर्फ बेचारे गरीब आवाम के लिए, सारे कोई रूल्स ना इन लोगों ने फॉलो नहीं करने, इनके लिए ना कानून भी अलग, इनके लिए हर चीज अलग है, इनको पासपोर्ट भी अलग चाहिए, इनको पूरे अपने खानदान के लिए पासपोर्ट अलग चाहिए। शक्ल तो देखो पहले अपनी जाके, चलो तुम हसीन होते तो शायद हम कुछ कर लेते, शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी इनको अपने पासपोर्ट अलग चाहिए। मुल्क के उन्होंने कुछ नहीं किया है, अपनी बातें की, अपनी तनख्वाहें बढ़ा लेते हैं हर साल आके, और कुछ भी नहीं।
और भी इनकी बहुत सारी अनोइंग हैबिट मुझे लगती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, वो 40-50 लोग साथ में खड़े होंगे, भाई वो क्यों खड़े हुए हैं? चलो ठीक है, सीएम तो खड़े हो, सीएम को देख लिया उसका तो बनता है, तुम लोग क्यों खड़े हुए हो साथ में? चलो सिक्योरिटी गार्ड्स का भी बनता है कि सिक्योरिटी गार्ड जो है चलो जरूरत है, लेकिन कोई नहीं मारा इनको। वो बंदा कहता है इनको मार के भी मैं क्या करूंगा, इनको मारने का भी कोई फायदा नहीं है, लोगों ने इनको मारना ही छोड़ दिया, आम आवाम मर रही है, इनको तो कोई मारना भी नहीं चाहता। खैर चलो सिक्योरिटी गार्ड आपने खड़े कर लिए, आप दो नहीं चार सिक्योरिटी गार्ड साथ खड़े कर लो। ये जो इतने आवाम क्यों खड़े होते हैं, उनमें से माशाल्लाह कोई भी हसीन नहीं होता, क्यों आते हैं लोग टीवी पे? मुझे इन लोगों की बातें ना इतनी ज्यादा अनोइंग लगती है ना, अपने सियासतदानों की, फिर अपनी तस्वीरें लगवा रहे हो। अगेन यू आर नॉट फोटोजेनिक इवन, मतलब आज के दौर के अंदर AI के जमाने के अंदर भी आप वो पूरी टचिंग फिल्टर करके भी अच्छे नहीं लग रहे हो, फिर तस्वीरें अपनी लगाई होंगी पुल के अंदर। अच्छा पुल के अंदर वो पूरे पता नहीं 50 उनका बस चले सियासतदानों का, अपने बच्चों की तस्वीरें भी लगा दें, अपने ड्राइवर की तस्वीरें भी लगा दें, एक बोर्ड पे इतनी सारी तस्वीरें लगाने की क्या जरूरत है भाई? सबकी तस्वीरें लगा दो उसके अंदर, है जिसने बनाया बोर्ड उसकी भी लगा दो, इस्लामाबाद से लेकर पिंडी से लेकर जो भी बड़े लीडर्स हैं सबकी लगा दो। क्यों लगानी है, क्यों भला भाई? अपने बना लिया ठीक है, अपनी तस्वीर लगा दो, फिर एक भी काफी है, चलो दो लगा दो, पूरे वृक्ष पे तस्वीरें लगाई हुई है क्यों? एंड इतने वो मुफ्त के अंदर जब वो बनाते हैं अपने कहते हैं तस्वीरें, तो यही रिजल्ट आना है। तो मैं ये सोचती हूँ कि भाई बड़े इनके अजीब गरीब सीन है हमारे सियासतदानों के। खैर आप टेंशन ना लें, आप हमें मैसेज करें और बताएं कि आपको कौन सी अनोइंग हैबिट्स लगती हैं, इन सियासतदानों के अलावा भी बता सकते हैं लोगों की, बड़ी वैसे लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। और फिलहाल हमारे जुनेद जमशेद के गाने का टाइम आ गया है, तो आइए हम सुनते हैं। और कुछ लोगों के साथ ना आपका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसी बात पे जुनेद जमशेद का ये ट्रैक सुनते हैं।

0: It's 9:30 a.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
2: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शॉप सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होम्यो और शॉप सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी JazzCash ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए JazzCash है ना।
3: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।

0: HBO फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
1: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
2: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
5: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
6: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
7: This program is brought to you by
8: Hire का नया No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries,
9: and Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा,
4: and Sweepy Clean करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ,
0: and HBL Freedom Account, जहां ख्वाब वहां HBL।

us on facebook.com/FM247365. FM247365.

वेलकम बैक जी, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और आप लोगों के मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं। और तो फिर आप लोग मुझे बता रहे हैं कौन सी आदतें जो है वो आपको बहुत ज्यादा इनॉय करती है दूसरों के बारे में। मुझे सबसे ज्यादा जो इनॉय चीज करती है कि वो अखबार के अंदर जो लोग सबसे ऊपर ही सबसे गंदी खबर डाले हुए होते हैं, मतलब किसने कहा है, कौन सा रूल है कि आप सुबह के वक्त अखबार देखे और ना बोले हैं दुखी खबर ये हो गया वो हो गया। भाई आप इस दुखी खबरें सेकंड पेज पे भी डाल सकते हैं, कोई रूल है कि सबसे गंदी खबरें आपने ऊपर डालें? पहले बंदे को आप हौसला तो दें, कोई अच्छी अच्छी खबरें डालें और उसके बाद फिर बंदे का हौसला है तो फिर वो बुरी खबरों के ऊपर जाए। सुबह उठी बंदा बोले यार मैं उठा ही क्यों, मैं सो ही जाता हूं, इस दुनिया में तो कुछ करने का फायदा ही नहीं है। ये मुझे सबसे गंदी बातें लगती है अखबार की। मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे खबरें पढ़ने की बहुत दफा ऑफर हुई है तो मैं गई जियो में, कह रहे हैं कि जी आप खबरें पढ़े, तो मैंने कहा सर मैं ना खुशखबरी वाली खबरें पढ़ना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा बेटा आप तो साइड में आ जाएंगे, आप फिर महीने में एक या दो दफा ही आया करेंगे स्क्रीन पे, बाकी वक्त लोगों को स्क्रीन पे आने का शौक है, आपको स्क्रीन से दूर जाने का शौक है कि आप कहीं आपसे खुशखबरी। मैंने कहा मेरे चेहरे पे लोगों के क्योंकि ये आ गई दुखी खबरें सुनाने के लिए, हाँ आप क्या सुनाएगी दुखी खबरें। सोचे ना लड़कियां इतना तैयार होकर रहती हैं अभी भी दुखी खबरें सुना रही होती है, मतलब बंदा उनकी खबरें उनका कपड़े बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे होते हैं। अब इतनी अच्छी अच्छी तुम लग रही हो तो अच्छी अच्छी बातें भी तो करो, लेकिन नहीं, खबरों का काम है आपको दुखी करना। खैर, और दूसरा मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल की कीमत आज क्या है, जैसे नहीं आज भाव क्या है भला, तो आज है 335.81 जो है वो फ्यूल की प्राइस। फ्यूल नहीं हो गई, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज हो गई है, आज ऊपर जाएगी नीचे जाएगी ये हो गया। खैर अब जो है 335.81 आज हो गई है, प्लीज जो पैसे बचे वो आप जरूर लिया करें फ्यूल वालों से। मुझे बदखलाक लोग नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, खासतौर पर जिनका मुंह आपको देखना पड़ता है, जैसे कि आप पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं या किसी बेकरी में कोई चीज लेने जा रहे हैं या दुकानदार है, अगर आप खुश अखलाक नहीं है तो फिर आप मत अपनी शक्ल दिखाएं। अगर आपका मूड खराब है, और कुछ लोगों का परमानेंट मूड खराब होता है, मतलब कि रोज, ये तो एक दिन आज कुछ हुआ है, बीवी ने नाश्ता नहीं दिया तो आज मेरा मूड खराब है, मतलब कि रोज ही मूड खराब है। और मुझे वो बहुत ही जहर लगते हैं, और इसी कि जो लोग का मूड खराब होता है फिर उसमें, और उसके साथ साथ जो लोग रिसीविंग पे होते हैं, भले वो घर के अंदर है भले वो ऑफिस के अंदर, जो इस्तकबाल लोग करते हैं रिसेप्शन पे होते हैं, क्योंकि खुश मिजाज नहीं है। सबसे ज्यादा खुश मिजाज लोगों को ना आपने ज्यादा पैसे देके रिसेप्शन पे बिठाना है कि सर सर हाउ कैन आई हेल्प यू, कैसे आप, तो आइए सर। तो एक आप बंदे की आधी थकन वहीं उतर जाती है जब कोई इसका इस्तकबाल अच्छे से करता है। तो ये जो है ना, ये मुझे आदत जो लोग और ये बहुत कॉमन हो गया बड़े शहरों के अंदर, इवन इन यूके के अंदर मैं थी तो वहां पे कोई खुश अखलाक लोग नहीं थे, वहां जाके तो मुझे कराची याद आना शुरू हो गया था। मैं कहेंगे तो हंसते ही नहीं, क्या पागल तो नहीं है ये, मतलब रोजाना सीरियस कौन रह सकता है, मेरी तो तबीयत खराब हो जाए इतना सीरियस रह के, मतलब रोज सीरियस, मतलब हम रोज सीरियस ही रहेंगे दुखी, हाय हाय दम घुटता है मेरा बद अखलाक लोगों के साथ। मैं आपको कह रही हूँ आप लाख अमीर सही, आपके पास ऑडी सही, मर्सिडीज सही, कोई भी आपके पास डाले वाले साले सब सही, अगर आप खुश अखलाक नहीं है, अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है, तो आपकी जिंदगी का कोई फायदा ही नहीं, आपके मुंह का कि पैसे का कोई फायदा नहीं, तो पैसा हमें थोड़ी आप दे रहे हैं, अपने लिए अच्छा है तो हम क्या करें, बल्ले बल्ले तो शावा शावा। बंदा मतलब मुस्कुरा लेता है, अच्छे से बात कर लेता है, भले वो अमीर ना भी हो अच्छा लगता है। जो सरे लोग मुझे बहुत जहर लगते हैं, यकीन करें मैं चाहती हूँ कि एक उनके खिलाफ ना जो लोग सरे उन पर फाइन लगना चाहिए कि आप बदखलाक लोगों पर फाइन हो, सर आपने आज बहुत बदखलाकी का मुजाहरा किया था, चले आप इनके ऊपर क्यों नहीं ट्रैफिक लाइसेंस बनाते हैं, ये जो कैमरे लगे हुए हैं उनके खुद ही कैमरे काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने क्या किसी पे कैमरे लगाने हैं, उनको भी छोड़े। अच्छा, और बुरहानुद्दीन के समिया जी बहुत खूब, आप बिल्कुल सच हकीकत बोल रही हैं, अंसारी साहिबा को सलाम, साहिबा नहीं है वो अली अंसारी, साहिब बड़ा साहिबा को सलाम कह रहे हैं। अच्छा, कह रहे कुरान पढ़े समझे अमल करें, सुन्नत रसूल सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाबंद बन जाएं, और वो पैदा जो पौधा जो खुद धूप में चलता हो दूसरों को फल फ्रूट साया देता ऐसे हो जाओ। बड़ी बड़ी बातें, लेकिन थैंक यू आपके मैसेज के लिए। आली अंसारी के मैसेजेस के ऊपर मैसेजेस आ रहे होते हैं, मतलब ये बात है मैसेजेस की। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास अदनान अहमद जो है ना क्या कहते हैं का मैसेज आया हुआ है, और भी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, रहीम साहब का भी मैसेज आया हुआ है, रहीम बलोच, और क्या कहते हैं अजीम अफजल कह रहे हैं जाती बातें पूछने पे बहुत मुझे लोगों पे वो गुस्सा आता है, सही बात है। और तो खैर अभी हमारी बात चली, नवीद अहमद ने आज बोला
थैंक यू नवीदा. नवीदा मैंने कहा कि आज अपने टॉपिक के लिहाज से ये वाला आप गाना लगा दें आदत. ऑफ कोर्स इस टॉपिक की वजह से ये एक्चुअली गाना ही हमारी इंस्पिरेशन है इस पूरे टॉपिक के लिए. तो आइए सुनते. नहीं, सियासतदान भी हैं. खैर आइए सुनते हैं.

0: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोलें डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
1: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
0: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL

0: This program is brought to you by
1: Higher Kanaya, No Frost IoT Refrigerator, Twin Inverter Technology, जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving, No Frost, No Worries,
0: and
2: Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा,
0: and
3: Sweep It Clean, करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम रखा, और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ,
4: and HBL Freedom Account, जहां खाब, वहां HBL.

और राइट, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान और हम बात कर रहे हैं हैबिट्स की। आदत सी है मुझको ऐसे जीने की, और हमें तो आदत ही है कि हम बगैर लाइट बिजली और मतलब बगैर लाइट बिजली एक ही होती है, गैस सुना है गैस का नया स्केड्यूल आ गया है, और मतलब अजीब तरीके से हमें रहने की आदत सी हो गई है। बल्कि हमें अब अच्छी चीजों की आदत नहीं रही, बारिश हो रही हो और बिजली हो, हमें इस चीज की आदत नहीं है। अच्छा बारिश आएगी या बारिश हो सकती है या लाइट हो सकती है, दोनों चीजों का एक साथ होना कैसा होता है। और राइट, तो आप लोगों के बड़े प्यारे प्यारे मैसेजेस हमारे साथ हैं, और आदतों पे तो हम पूरी किताब, मुझे लगता है कि हम पूरे हफ्ते शो कर सकते हैं, इतनी सारी लोगों की अनोइंग हैबिट्स हैं स्पेशली पाकिस्तान में। अदनान अहमद और इरफान सलीम और रहीम बलोच के मैसेजेस शामिल करते हैं। अदनान अहमद कह रहे हैं, मुझे सबसे ज्यादा ये आदत परेशान करती है कि लोग बात सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। थोड़ी देर खामोश होकर सुन लें तो आधे मसले वैसे ही हल हो जाएं। मोबाइल में लगे रहना, बंदा सामने बैठा और दूसरा बस दो मिनट कहकर 20 मिनट रिलीज ना करे। यार या तो मिलना छोड़ दो या मोबाइल रख दो, वादा करके भूल जाना छोटी छोटी बातों पर भी उससे एतबार टूटता है। अगर नहीं कर सकते तो हाँ ही मत कहो। ट्रैफिक पर हॉर्न सिग्नल बंद है तो दो सेकंड सब्र कर ले, इतने हॉर्न से ना सिग्नल जल्दी खुलेगा ना मूड अच्छा रहेगा। खैर मूड की तो किसी की आपको परवाह ही नहीं होती, अपना मूड खुद ही अच्छा रखना होता है। आप बाहर निकलो शहर से, हर कोई लगा हुआ है कि आप खुश ना रहे, इसलिए लोगों ने अपने चेहरे पर ना अजीब सी उदासी मायूसी सड़ा हुआ एक्सप्रेशन बनाया होता है कि गलती से अगर हम खुश हो गए तो कोई उदासी कर देगा, इसलिए वैसे ही मुंह बना लो। अच्छा इसके अलावा इरफान सलीम कह रहे हैं, हर जगह थूकने की, गंदगी करने की, गली में कचरा फेंकने की। मैं तो कह रही हूं थूकने पर तो लोगों को चमाट मारो, लग के थप्पड़ मारना अलाउड होना चाहिए, कानून होना चाहिए ये कि जिसने भी जहां थूका वहां से थप्पड़ आ गया। ऐसे दुबई के अंदर होता है कि एक बंदे ने वहां पर थूक दिया था, हमारा पाकिस्तानी गया तो उन्होंने आके उसके मुंह पर कोई स्प्रे किया और फिर उसको उठा के ले गए कि तुम क्या पागल हो या तुम क्या पाकिस्तान समझा हुआ कि जगह जगह थूक रहे हो तुम। और तो ये खैर हमारी आदतें बहुत बुरी हैं, और इसलिए इसका मसला बेसिक ये भी है कि यार आप एजुकेशन ही नहीं देते हो, इतने सारे लोग एजुकेटेड ही नहीं है इस मुल्क में, आपने उनको क्या सिखाना है, आप कितनी चीजें उनको सिखाओगे। ये बेसिक चीजें जो हैं, तरीके से जाना, लाइन क्रॉस ना करना, गंदगी नहीं करना, ये आप स्कूल बेसिक लेवल से ही सीख रहे होते हैं ना लोग। और हमारे स्कूल में अगर स्कूल नहीं भेज दो तो करिकुलम क्या है, कुछ भी करिकुलम नहीं है यहाँ पे। खैर रहने दें, और सिंध गवर्नमेंट ना जाने किस बात पर तराती है, बेसिक तो दे नहीं पाई लोगों को। अच्छा और रहीम बलोच कह रहे हैं, पर्सनल बातें पूछने वाला इंसान से मैं परेशान होता हूं जी, पर्सनल बातें। हाँ जी, शादी कब हो गई, शादी हो गई तो बच्चे कितने, अच्छा बेटा है तो बेटी क्यों नहीं है, बेटी है तो बेटा क्यों नहीं है। अच्छा मतलब हर बात पर लोगों की कॉमेंट्स होते हैं, जैसे कि बड़े PhD हैं जिनकी हम बात सुने हैं, तो मुझे समझ में आता, मैं कहती हूँ यार तुम PhD हो है नहीं ना, या तुमने चलो कुछ नहीं PhD मास्टर्स हो, माइक्रोबायोलॉजी में तुमने रिसर्च की है, नहीं ना, तो फिर तुम अपनी बातें अपने पास रखो, यू नो। तो आप ये भी देखें कि सामने वाला बोल क्या रहा है, क्योंकि कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बोलता ही रहेगा। और नवीद अहमद कह, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, जिंदगी तमाम, खुश रहें, आवाज है समिया तमाम, लिसनर को प्यार भरा सलाम। आज के मौजू पर जब दुकानदार कोई प्रोडक्ट आपको बेचे, वो फूड इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज हो, दूसरी मोबाइल मार्केट वाले आपको मोबाइल बचे वो खराब हो जाए, और वो मोबाइल रिपेयर वाले जब दो नंबर ही करे। अच्छा हाँ ये भी है कि आप मोबाइल अपना देखते हो उसमें चीजें गायब हो रही होती है, आपकी पर्सनल आइटम्स गायब हो रहे होते हैं, या लैपटॉप दे, मेरे साथ तो हो चुका है लैपटॉप दिया उससे हार्ड ड्राइव भी गायब है, और इतनी आप चोरियां कर रहे हो, यकीन करो चोरी का माल आगे आता है। और अब तक कराची में लोगों के पास सब्र ही नहीं हो, रख के मारना ही शुरू कर रहे हैं हर एक को, और मोबाइल स्नैचिंग के लिए लोगों ने अपने पास ही गन्स रखी, वो डायरेक्ट खुद ही कहते हैं पुलिस ने क्या पकड़ना है, हमने खुद ही कर देना है, खुद ही अब लोगों ने ना हथियार अपने हाथ पे, वो कहते हैं लेकिन ये भी गलत है, मारे नहीं जान से, लोग तो जान से ही मार देते, इतना लोगों के अंदर गुस्सा है, तो प्लीज अपना गुस्सा पहले से रिलीज कर दें, जरा जरा सी बात पे ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा है। खुदा के लिए अपने गुस्से को काबू पाएं, अपने घर वालों पे गुस्सा ना करें, क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा आपको गलत चीजों की तरफ ले जाता है। मुझे कुछ लोगों के हैबिट्स इतनी अनॉय करती है कि लोग जो तारीफ नहीं करते, जो अप्रिशिएट नहीं करते आपको, जैसे कि आप है ही नहीं, अक्सर आप किसी के मैं देख रही होती खवातीन के साथ, अक्सर मैं देख रही होती, मैं ऑब्जर्व कर रही होती, खवातीन ने इतनी मेहनत करके खाना बनाया होता है, दावतें होती हैं,
اور کوئی تعریف ہی نہیں کرتا. اور اس کے بعد مرد حضرات وہیں بیٹھے رہتے ہیں, کھانا لگا دیا جی دوستوں کے سامنے, اگر انہیں بیوی کی مدد کر دی تو جیسے کہ وہ تو پھر مرد ہی نہیں رہیں گے نا, وہ مرد ہی کیا جو عورت کی مدد کر دے. مجھے ایسے مرد اتنے زہر لگتے ہیں جن کے آگے خواتین آ رہی ہیں جا رہی ہیں, بچے کھانا لگا رہے ہیں اور انہوں نے ہلنا نہیں ہے, وہ کھا کے پھر وہیں بیٹھے رہیں گے, گندے برتن بھی جو ہے نا وہ پھر دیکھ رہے ہیں سب گندے برتن اٹھا رہے ہیں, انہوں نے نہیں ہلنا, مہمان بھی بیٹھے رہیں گے اور مطلب میزبان بھی وہیں بیٹھے رہیں گے, اور عورتیں بچے اور اگر نوکر ہے تو وہی کام کرتے. آئی ہیٹ دیٹ, بیکاز آپ باہر سے جب آؤ تو وہاں پہ مہمان اتنے اچھے ہوتے ہیں, برتن دھلوا کے جاتے ہیں آپ کے ساتھ, اور خیر وہ بھی ہمیں اس کی بھی عادت نہیں دیتی نہیں, اتنا کیوں کام کرا رہے ہو, مہمانوں سے کام نہیں کراتے. بٹ مرد جو اپنی بیویوں کی تعریفیں نہیں کرتے, ان کو اپریشیٹ نہیں کرتے, اور بالکل اس طرح وہ باسز جو مطلب آئی ہوپ کہ کچھ یو نو کنسرن لوگ بھی سن رہے ہوں, جو کبھی آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے, جیسے آپ کو کوئی وجود ہی نہیں ہے, جیسے کہ آپ ہیں ہی نہیں, آپ کو تعریف نہیں کرتے, اکنالج نہیں کرتے. ہاں غلطی کر دو تو فوراً بلا لیتے ہیں آفس کے اندر, آؤ بیٹا تم کہاں تھے اتنے دن تک, لیکن جب اتنے اچھے دن آپ کام کر رہے ہیں, اچھا کبھی ٹائم پہ آنے پہ آپ کو کسی باس نے شاباشی دی ہے, ویری گڈ بھائی تم 10 دن تک مسلسل ٹائم پہ آئے, کبھی کوئی تعریف نہیں دیتا, لیکن لیٹ ہو جاؤ تو اسی وقت بلا لیتے. ایسے باسز کو اللہ پوچھے کا زہر لگتا ہے مجھے, ایسے باسز یہ غلطی میں بلا لیتے اور کبھی زندگی میں مہینوں سالوں تعریف نہیں کرتے, مطلب وہ ہے ہی کیوں, مطلب وہ کیوں ہے زندگی میں, سوچو اتنا پیسہ کما کے باس بن کے بھی آپ ہمارا دل نہیں جیت پائے تو آپ کی زندگی بالکل مطلب فارغ ہے آپ. خیر میں آپ کو بتا رہی ہوں سیریسلی ایسے ایسے انوائنگ لوگ ہیں نا.

दफा जिद्दीकी भी कुछ कह रहे हैं कि आजकल लोग अपनी साइंस लगाते हैं इन एवरी प्लेस, किसी को आप कुछ समझाओ तो उल्टा गुस्सा हो जाते हैं, यहां लोग सही होना ही नहीं चाहते, जिस दिन लोग सही हो जाए माशरा खुद ब खुद सही हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और इतने दिन हो गए आपने नमाज के हवाले से मोटिवेट नहीं किया अपने मीठे से अंदाज, मुझे लगता है नमाज और कुरान वाली बात आपको पार लगा देगी आखिरत में, मेरा हुस्न ज़न है। नमाज ऑफकोर्स नमाज आपको डिसिप्लिन करती है, और नमाज है किसी चीज इस पे बोलना चाहिए आपको कि आपने नमाज पढ़ ली, आप जा रहे हैं। अच्छा, इस चीज पे कोई नहीं टोकेगा, अकेले अकेले लोग नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं, और मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि वो बुढ़े तो नहीं कहेंगे, बुजुर्ग लोग जा रहे होते हैं सुबह अकेले नमाजी, वो अपने नौजवान सो रहे हैं, पूरी पूरी रात जागना लड़कों का कराची में स्पेशली, आपको पता है 30 लाख, एक कोई मैं रिपोर्ट देख रही थी, आई डोंट नो इफ इट्स वेरीफाइड, तकरीबन 30 लाख मर्द हजरात रात के वक्त ढाबों पे पाए जाते हैं कराची के अंदर। सुबह ऑफिस जाना है लेकिन ये लोग रातों को जाग जाग के चाय पी रहे हैं कि जी उनको अपने घर से भी ब्रेक चाहिए, क्या वो घर में बीवी के वही रोने हैं, बच्चों के, हम आते हैं ऑफिस के बाद तो अपने दोस्तों से मिलते हैं, अच्छा दोस्तों से भी बातें नहीं कर रहे, वहां भी मोबाइल चल रहा होता है, दोस्त बैठे हुए चार, वो दोस्त चारों अपने मोबाइल पर लगे, तो भाई तुम मिले ही क्यों हो भाई, सिगरेट चल रही है, सेहत आपकी खराब, आई थिंक इज सुपर डुपर अनोइंग, और सभी लोग इनसे खाना, फिर आप क्या अपने जिंदगी में तरक्की करनी है कि रात के 12-1 बजे तक आप ढाबों पर बैठ के चाय पी रहे हैं, भाई दूध पियो, लस्सी पियो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। और बुजुर्ग साहब भी वो जी अकेले खुद जन्नत में जा रहे हैं, औलादें पड़ी सोनी है फजर के वक्त, भाई अभी से मेहनत करें, अभी से आप आदत डालेंगे तो शायद बुढ़ापे में नमाज पढ़ लें, क्योंकि जो इनकी हरकतें हैं ना बुढ़ापों में भी अब तो नमाज नहीं पढ़नी। तो खैर थैंक यू, आपने हमें ये बात याद दिलाई, और अब टाइम बहुत कम रह गया है, लेकिन अब वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम इतनी बातें करते हो, गाने का कहाँ टाइम है, मैं थोड़ी देर लगा रही हूँ गाना, है लगा दो, अच्छा ठीक है 1 मिनट के लिए लगा रही हूँ, सही है ठीक है, चलिए 1 मिनट के लिए गाना सुन लेते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने कीमती वक्त निकाल के हमें पैगामात किए, अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे और हमें अच्छी आदतें अपनाने की तौफीक अता फरमाए। टेक केयर, एंजॉय दिस ट्रैक।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking aur behtareen Mobile App ki sahulat ke saath HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए गोशा।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खाब वहां HBL।
3: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
4: FM 100, like us on facebook.com/FM247365
5: FM247365
6: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात हैं, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है। वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरूने मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में, कभी एनजीओ वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए। कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो, फौरन रिपोर्ट कीजिए। हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा। फैसला आपके हाथ में है।
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: बैक टू बैक, बैक टू बैक, ओनली म्यूजिक, नो आरजे टॉक, ओनली म्यूजिक, नो आरजे टॉक। दिस इज FM 100।
8: कम ऑन।

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरती बेहतरीन नज़ा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
2: कहीं अनजाने में आप दहशतगर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें. अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें. हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है. याद रखें, दहशतगर्दों की माली मुआवनत भी दहशतगर्दी है. हुकूमत पाकिस्तान.
0: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

is facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: FM 100's time check. It's 12 noon.
1: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
2: नाजरीन, ताजा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
3: बंद करो ना ढक्कन।
4: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
0: FM 100 like us on facebook.com/FM247365 FM 247365 FM 100 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
5: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।

ओके, सो ट्रैक के साथ आ गए हैं वापस। भी बातों का सिलसिला तो जारी है और मजीद ट्रैक्स को शामिल कर ये जो मूड है वो ज्यादा अच्छा हो रहा है अभी। जी खैर, इसी के साथ साथ आज है 29th of July और जुलाई का जो ये इख्तितामी मराहिल है ना, इसमें हम लोगों को बहुत सारी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं बारिश से मुंसलिक कि जी कराची में बड़ी तूफानी को बारिश होने वाली है। तो इन खबरों में कितनी हकीकत है, क्या ताजा तरीन सूरत हाल है, इस हवाले से भी हम आपको आगाही फराहम करेंगे। लेकिन आज अगर आपकी सालगिरह है तो आपको सालगिरह बहुत मुबारक हो, बिकॉज भाई आज 29th of July है और अगर आज आपकी हैप्पी बर्थडे टू यू है तो आपको हमारी जानिब से हैप्पी बर्थडे। लेकिन भी आज बहुत सारे दिन मनाए जा रहे हैं जिस पर भी होगी बात, क्योंकि भाई बात करने से तो बात बनती है, तो बात करना तो जरूरी है। अच्छा वैसे आज आपको पता है आज ना रेन डे मनाया जा रहा होता है, तो जिन जिन शहरों में इस वक्त रेन हो रही है वो तो इस डे को मना सकते हैं। रहा सवाल कराची वालों का, तो दे आर वेटिंग फॉर द रेन, और जो अब उन्हें सुनने को मिल रहा है कि 1st अगस्त को वो लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो हम उस दिन अपना रेन डे बनाएंगे। आज रेन डे मनाया जा रहा है बट अनफॉर्चुनेटली इस रेन डे में हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बिकॉज वी आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी सॉर्ट ऑफ रेन राइट नाउ इन कराची। लेकिन भाई अपकमिंग खबरें तो हैं ना हमारे पास अच्छी अच्छी, जिस पर हम अमल इंतजार कर सकते हैं उन खबरों का। तो मेरा मशवरा ये है कि भाई आप लोग जो है ना वो अपने सौदे में बेसन ले आएं, और ये मशवरा मैं आपको हमेशा देती हूँ जैसे ही मानसून का सीजन आने वाला होता है, मैं अपने लिसनर्स को कह देती हूँ कि प्लीज आप लोग अपने सौदे में बेसन जरूर लाएं, क्योंकि भाई बारिश का मजा तो है ही पकौड़े और समोसे खाकर। लेकिन मुझे लगता है कि पकौड़े जो है ना वो इस टाइम को मजीद बेहतरीन बना देते हैं, तो समोसों से ज्यादा बेहतरीन पकौड़े लगते हैं, बट द थिंग इज दैट कि वो गर्मा गर्म हों। तो मैं चाहती हूँ कि जी कराची में रेनी डेज आप ना सूखे सूखे एंजॉय ना करें बल्कि साथ में पकौड़े और समोसे खाकर एंजॉय करें। तो भाई मेरा मशवरा यही है कि आप मंगवा लें, यानी कि अगर मैं आपको मशवरा दे रही हूं तो इट मीन्स कि कोई तो खबर है जो कि अब कराची वालों के लिए सच्ची साबित होने जा रही है। खबर क्या है उस पर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़े से सस्पेंस के साथ ही हम आपको खबर बताएंगे कि खबर क्या है। फिलहाल हम आपको ट्रैक सुनाते हैं और उसके बाद वापस आकर जरा उस खबर पर भी जरूर हम रोशनी डालेंगे कि ताजा तरीन खबर जो है वो क्या कहती है, कितनी बारिश जो है वो शहर कराची में होने वाली है भी या नहीं, इसके लिए हम करेंगे इंतजार। और खाली खाली इंतजार नहीं करेंगे, हम ट्रैक के साथ करेंगे इंतजार अपनी नई खबर का।

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिले भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।

राइट एवरीबॉडी, सो ट्रैक के साथ हम आ गए हैं वापस। और भाई ये एक अदद ट्रैक जो है ना ये लाजमी होता है, क्योंकि प्रोग्राम के सेकंड हाफ में इस ट्रैक को हम आपको डेडिकेट करते हैं और फिर अपने गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तो भाई अब तो आप जानते ही हैं कि प्रोग्राम के सेकंड हाफ में दाखिल हो गए हैं, तो अब हम बात करेंगे आपके लंच में क्या है, तो क्या बन चुका है, क्या बनने जा रहा है, क्या पकाने का इरादा है, या फिर आज मूड नहीं है और कुछ बाहर से मंगवाने का इरादा है। तो भाई चाहे आप मंगवाएं बाहर से या बनाएं घर में, लेकिन लंच में क्या मौजूद है ये बताना बड़ा जरूरी होता है। और इसके लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, की और चाय लिखना है, स्पेस देना है, अपना मैसेज टाइप कर सेंड कर देना है 3636 पे। और अभी कुछ देर पहले मैंने जिक्र किया था कि भाई अगर आप महीने का सौदा लेने जा रहे हैं तो उसमें बेसन जरूर लेकर आएं, क्योंकि भाई अभी जो है वो कराची में बारिशें होने वाली हैं। और सिर्फ कराची में नहीं बल्कि मुल्क भर में बारिश की पेशनगोईयां मौजूद हैं। तो अब तो लोग भी कह रहे होंगे कि यार आपने कितना सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है, आखिरकार आप ये तमाम खबरें हम तक कब शेयर करेंगे, कब बताएंगी। तो डील डन है, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगी, लेकिन इस वक्त हम लंच का जिक्र कर रहे हैं, तो लंच के जिक्र के बाद मौसम की खबरों पर जरूर जिक्र किया जाएगा, ये तो प्रॉमिस हो गया है। लेकिन मैंने कहा पहले अपने सुनने वालों से जरा जानते हैं कि वो लोग इस वक्त क्या खा रहे हैं, क्या पका रहे हैं, क्या मंगवा रहे हैं। तो मंगवा क्या रहे हैं, खा क्या रहे हैं, हमें जरूर बताएं आपके लंच में क्या है भाई। और आज जो है ना वो नेशनल लज़ानिया डे भी मनाया जा रहा है। लज़ानिया इज सो सो यमी, लज़ानिया बहुत मजे का लगता है भाई, इसमें तो खैर कोई दो राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि लज़ानिया इज सो यमी। और इसको भी बनाने की ट्रिक है कि भाई बाहर से लेना इज क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन अगर आप घर में बनाना जानते हैं तो ये बहुत मजे का बनता है, जिसका दिन मनाया जा रहा है। इसी के साथ साथ आज नेशनल चिकन विंग डेज भी मनाया जा रहा है। तो विंग्स बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद होते हैं, मुझे विंग्स नहीं पसंद, मुझे विंग्स में समझ नहीं आता कि क्या खाएं, मतलब वेरी लेस चिकन इन द विंग्स, लेकिन विंग्स लोगों के बड़े फेवरेट होते हैं भाई। इसको अलग अलग जो है वो लोग सॉसेस के साथ या मसालों के साथ ट्राई करते हैं। तो भाई आज ये नेशनल लज़ानिया डे और नेशनल चिकन विंग्स डे मनाया जा रहा है। लंच का जिक्र हो रहा है तो मैंने कहा चलो जी कुछ मजे की खाने की चीजों का जिक्र करते हैं जिनका दिन मनाया जा रहा है। अब आप दाल चावल खा रहे हैं, निहारी खा रहे हैं, या फिर बिरयानी या कोई सब्जी, ये तो अब आप ही जानते हैं और आप ही की जुबानी हम आपसे जानेंगे कि आपके लंच में क्या है। तो जल्दी से हमें मैसेज करें और बताएं कि आपके लंच में क्या है। जब तक हम चलते हैं कि ट्रैक की जाने, रशीद खान ने कहा था कि भाई इस ट्रैक को शामिल कर लें, तो डन हो गया है, इस ट्रैक को हम शामिल करते हैं और फिर आते हैं वापस ट्रैक के बाद।

0: Get ready to spice up your lunch hour with the hottest tunes and the coolest vibes. It's the lunchtime special with the one and only Fatima Khan.
1: Join Fatima Khan.
0: The best of music, entertainment, and everything in between from 12 to 2, Monday to Saturday. So grab your lunch, turn up the volume, and let's take your midday break a blast.
1: Midday break a blast.
2: Yes, everybody. तो हमने आपको मैसेज करने का तरीका एक बताया और कहा कि भाई आप जल्दी जल्दी अपनी हाजिरी लगा दें और हमें बता दें कि इस वक्त आपके लंच में क्या मौजूद है. सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर मैसेजेस. अंटिल एंड अनलेस जरा मौसम के हवाले से आप लोगों तक कुछ आगाही फरहम करते हैं तो पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की नई वेदर एडवाइजरी के बारे में आपको बताते चलते हैं कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के मुताबिक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक मुल्क भर में मानसून बारिश का नया स्पेल आने का इम्कान है. कराची और सिंध. कराची में 31 जुलाई से 2 अगस्त के दरमियान बारिश और गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान है. कुछ मकामात पर दरमियानी से तेज बारिश भी हो सकती है. हैदराबाद, बदीन, मीरपुर खास, उमरकोट, असांगढ़ और ठट्टा समेत सिंध के कई इलाके भी इस स्पेल से मुतासर हो सकते हैं. पंजाब की जहां तक बात की जाए तो पंजाब में लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान और दूसरे कई शहरों में 29 जुलाई से 4 अगस्त तक बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की तशवीश है. इसी के साथ साथ कराची के कुछ मकामात पर तेज और कुछ मकामात पर बहुत तेज भी हो सकती है. खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भी कई इलाकों में तेज बारिश और गरज चमक का इम्कान है. पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और लोकल नालों में भी जो है फ्लडिंग का खतरा मौजूद है. बलूचिस्तान में 31 जुलाई से 3 अगस्त के दरमियान काफी मकामात पर बारिश और गरज चमक की पेशनगोई है. इसी के साथ साथ पीएमडी यानी कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की अहम वार्निंग, निचले इलाकों में अर्बन फ्लोटिंग का खतरा है. तेज बारिश से लोकल नदी नालों में अचानक से फ्लडिंग भी हो सकती है. तेज हवाओं और बिजली की वजह से कमजोर काफी मसले मसाइल भी हो सकते हैं. सोलर पैनल और बिजली की वजह से बिलबोर्ड्स और उसका नुकसान भी पहुंच सकते हैं तो उससे दूर रहने की भी पेशनगोई मौजूद है. और जो टूरिस्ट हैं वो मौसम की सूरत हाल देख कर सफर करें, ये बहुत जरूरी चीज है. इस वक्त ये जो सिस्टम आने वाला है वो सिर्फ कराची को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को मुतासर करने वाला है. तो इसके जेर असर सिर्फ और सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बारिश की पेशनगोई मौजूद है. जैसे कि हमने आपसे खबर शेयर की जिसमें हमने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध का जिक्र किया क्योंकि ये बारिश ऑल ओवर पाकिस्तान होने की पेशनगोई मौजूद है. इसी के साथ साथ अब जरा कराची को मजीद हाईलाइट कर आपको बताते हैं. तो कराची वालों, खलीजी बंगाल में हवा की शिद्दत के कम दबाव की मजीद ताकतवर सूरत हाल इख्तियार कर रहा है जिसकी वजह से जो सिस्टम है डिप्रेशन में चला जाता है और बड़ी गर्मी भी हो जाती है. और भारतीय रियासत में इस वक्त जो है ये सिस्टम दाखिल होना शुरू हो गया है और अभी जो इसकी मजीद सूरत हाल है वो आपको वाजे होगी. लगभग 38 घंटों में जाके सिचुएशन जरा नॉर्मल होगी और थोड़ा और वाजे हो जाएगा. जुमरात की बात अगर की जाए तो जुमरात के रोज सिस्टम भारत रियासत में मजीद आगे पहुंच जाएगा जिसके जेर असर हफ्ता 1 अगस्त को गुजरात तक पहुंच जाएगा. जैसे ही ये सिस्टम गुजरात पहुंचेगा तो इसके असरात कराची तक पहुंच जाएंगे और हफ्ता यानी कि 1 अगस्त से 3 अगस्त तक कराची में बारिशों का इम्कान मौजूद रहेगा. यह सिस्टम कराची के करीब आ जाएगा और इसके जरिए सिर्फ कराची में इंतहाई तेज हवाएं और तेज बारिश की पेशनगोई मौजूद है. सो जी हां, टेक केयर एवरीबॉडी. इस दौरान आप लोग गैर जरूरी घर से बाहर बिल्कुल मत निकलें. अक्सर औकात लोग जो है ना वो बारिश को एंजॉय करने के लिए बाइकों पर निकल जाते हैं कि भाई थोड़ा एडवेंचर करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन गैर जरूरी घर से बाहर निकलना इस वक्त आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है. मुजर है. कोशिश करें कि कोई भी अगर आपको काम वाम करना है तो आप पहले निपटा लें. अक्सर बात यह भी होता है कि बारिश की बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही होती है कि भाई बहुत तेज बारिश जो है वो होने वाली है और अक्सर औकात नहीं भी होती, लेकिन इस दफा काफी ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट किया जा रहा है इस बारिश को. सो उससे पहले आपने जो भी अपने काम वाम करने हैं वो पहले कर लें. गैर जरूरी घर से बाहर ना निकलिएगा. बारिश के दिनों में एहतियात बहुत जरूरी है और स्पेशली बाइक राइडर्स के लिए तो काफी डेंजर हो जाता है. और जब हल्की फुल्की ड्रिजलिंग भी होती है ना तो भी उनके लिए काफी रिस्क हो जाता है क्योंकि रोडें चिकनी हो जाती हैं. सो गैर जरूरी आप घर से बाहर मत निकलिएगा. लेकिन भाई बिलाखिर कराची में बारिश होने जा रही है तो ये है ताजा तरीन सूरत हाल. और सिर्फ और सिर्फ कराची नहीं, सिंध भी और पूरे पाकिस्तान में ये बारिश होने जा रही है. और कराची में एक नहीं बल्कि दो दो सिस्टम आने वाले हैं. एक अगस्त के पहले हफ्ते में हम एक्सपीरियंस करेंगे और दूसरा अगस्त के दूसरे हफ्ते में एक्सपीरियंस करेंगे. तो उसके हवाले से भी हम आप लोगों तक जल्द आगाही फराम करेंगे. बारिश का जिक्र हुआ तो चलें जी सजाद अली का ट्रैक शामिल करते हैं बारिश और आते हैं वापस ट्रैक के बाद.

जी जी, सो नेशनल लिपस्टिक डे का जिक्र करना ही था कि भाई मैसेजेस हमारे पास आ गए, क्योंकि मैंने कहा था ना कि खवातीन की पसंद का टॉपिक है भाई लिपस्टिक से, तो तमाम खवातीन को काफी ऑब्सेशन होता है। और ये खवातीन की बातें, खवातीन जाने कि भाई लिपस्टिक का कितना गहरा कनेक्शन है, तो हमारे पास मैसेज भी आ चुका है कि 13 जुलाई को ही मुझे लिपस्टिक गिफ्ट मिली थी, चाइना से आई थी। ओके जी, इन्होंने ब्रांड न्यू मेंशन किया है, ओरिजिनल है, बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे न्यू शेड्स पसंद है लिपस्टिक के। ओके, इतनी अच्छी लिपस्टिक मिली है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी खुश नहीं है लुपल कि न्यूड ही पसंद है सिर्फ। अच्छा, वैसे ये है कि न्यूड शेड्स का आजकल बहुत ही ज्यादा जो है वो एक चर्चा चल रहा है, और उसकी जो है वो लिपस्टिक्स खवातीन को ज्यादा पसंद है, और वो तो फिर सबकी अपनी भी पसंद है। हमारे पास एक और भी मैसेज आया है, उन्होंने नाम नहीं लिखा, कहती है कि मुझे भी लिपस्टिक्स बहुत पसंद है, मैं रोज लगाती हूं और पिंक मेरा फेवरेट कलर है। ओके भाई, सबकी अपनी अपनी पसंद के रंग हैं, अपनी अपनी पसंद के यू नो ब्रांड्स हैं जिसे वो बड़ी फॉलो करती हैं। जो बहुत सारी खवातीन जो हैं वो लिपस्टिक्स लगाती हैं, बहुत सारी जो है वो लिप पेंसिल लगाती हैं, और कुछ ब्रश के थ्रू लगाती हैं। खैर भैया, मैंने इतनी सारी लिपस्टिक और इसकी बातें कर ली, अब जो हमें मर्द हजार सुनेंगे कहेंगे यही क्या टॉपिक है, आप सिर्फ खवातीन की लिपस्टिकों का जिक्र कर रही हैं। हाँ, ये तो है, क्योंकि आज जिस दिन को मनाया जा रहा था तो मैंने कहा कि चलो जी जरा जान लेते हैं हमारी भी फीमेल लिसनर से कि वो कितना पसंद करती हैं लिपस्टिक को, कितनी ऑब्सेशन है हमें लिपस्टिक से, जरा उन्हीं की जुबानी जानते हैं। और ये कहना ही था कि भाई मैसेजेस तो हमारे पास मौसूल होना शुरू हो गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो चुका है प्रोग्राम लंच टाइम स्पेशल का। आज इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है, जी हाँ, और कुछ भी है, अल्लाह ताला ने टाइगर को जो बनाया है ना, मतलब मैं कहती हूँ कि उसकी अट्रैक्शन, उसका डर, एक उसका वो मतलब एक अलग ही क्लास है। बहुत सारे जानवर हैं जिन्हें हम देख के अक्सर औकात बड़े हैरान होते हैं, अल्लाह ताला की मतलब कि क्या क्रिएशन है ये, लेकिन जो बात शेर की है ना भाई, वो तो शेर की है, शेर जैसा कोई कहीं नहीं। तो शेर का जो एक ऑरा है ना, वो मेरे ख्याल से सबको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। खैर जी, इसी के साथ साथ प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म, इंशाल्लाह होगी आपसे मुलाकात कल फिर सेम प्लेस सेम टाइम। रखें अपना भरपूर ख्याल, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और ये बाकी खवातीन जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है वो भी अपनी पसंद की लिपस्टिक का शेड याद रखें। कल इस पर फिर बात करेंगे, अल्लाह हाफिज़।

0: FM 100's time check. It's 2 p.m.
1: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
2: 100 FM.
3: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
0: This program is brought to you by
4: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
0: Like us on facebook.com/FM247365.
5: قدرت کا نظام توازن پر قائم ہے.
6: وسائل سے زیادہ آبادی کے بوجھ سے توازن بگڑ جاتا ہے.
5: گھر کے افراد اور آمدن میں توازن
7: ہماری ذمہ داری ہے.
8: خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں پر عمل کر کے اپنی ذمہ داری پوری کریں.
9: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
0: FM 100. 31 سال FM 100 آپ کی آواز. السلام علیکم پاکستان.
10: السلام علیکم پاکستان.

0: the music. Take control. Control.
1: Let the music take control.
0: That is FM 100 Pakistan.
2: Shared bundles. वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है. तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
3: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ. जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें. चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
5: 100 FM.
6: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
7: This program is brought to you by
8: Hire Kar Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM 247365.
10: Genie in radio.

0: Radio.
1: Alrighty, everyone, welcome back. आप सुन रहे हैं 100 पाकिस्तान एंड आप लोग हमें मैसेजेस कर रहे हैं 3636 पर एंड facebook.com/orchid.jasmine पे भी आप अपना फीडबैक हमें दे रहे हैं. एंड टॉपिक मैं बता दूं, टॉपिक अनाउंस करके फिर हम एक सॉन्ग की तरफ जाएंगे, क्योंकि एक तो हमें नबीला ने मैसेज किया हुआ है और उन्होंने एक सॉन्ग जो है रिक्वेस्ट किया हुआ है, कभी आओ ये हम प्ले करेंगे. टॉपिक हमारा ये है कि आप लोगों की जो है ऐसे ही रैंडमली किसी से ऐसी गपशप हुई हो जो आपको याद हुई हो, कहीं पे भी, चाहे वो सफर में या वो किसी जगह पे हुई हो मुलाकात, आप बता सकते हैं. लेट अस नो ऑन 3636, वो कितनी इंटरेस्टिंग थी. और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं अबाउट हेयर एंड नेल्स हेल्थ, ठीक है, बालों में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अबाउट स्कैल्प हेल्थ. और अभी मैं आपको और भी टिप्स बताऊंगी कि क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए स्कैल्प को हेल्दी रखने के लिए. तो आपने हमारे साथ रहना है, कहीं नहीं जाना है. मीनवाइल वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स अनदर ट्रैक. दिस ट्रैक इज कदी आओ नी. मिलते हैं इस गाने के बाद.

0: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
1: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं? मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियां, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है? तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, जहां होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स। प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे प्रोफेसर डॉक्टर नजमुल इस्लाम, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, आगा खान यूनिवर्सिटी कराची, पास्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी। प्रोग्राम का मौजू होगा ज़ियाबतस से कैसे बचा जाए। सुनिए हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जुमेरात 30 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर। ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तआवुन से पेश किया जाएगा।
2: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एडको लेबोरेटरीज के तआवुन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम, जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर।
3: This program is brought to you by
4: Hire Kanaya, no frost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: Dengue ek khatarnak bimari hai jo machhar ke kaatne se phailti hai. Subah suraj nikalne ke baad aur sham suraj ghurub hone se pehle ye machhar aapko kaat sakta hai. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात आपकी हिफाजत।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365 FM 247365।
6: जी जनाब, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिल्म 100 पाकिस्तान। द शो इज कॉल्ड जीनी इन अ रेडियो। माय नेम इज जैस्मिन। मैसेजेस हमारे पास काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन हम पहले अभी बात कर रहे हैं आज स्कैल्प हेल्थ के हवाले से और बालों की सेहत और नेल्स की सेहत के हवाले से, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं स्कैल्प की हेल्थ के हवाले से। अच्छा जी, तो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि ज्यादा ऑयलिंग और ऑयलिंग के हवाले से मैंने डिस्कस कर लिया था। स्टाइलिंग के हवाले से मैंने आपको बता दिया था कि स्टाइलिंग जो है वो डेली बेसिस पे नहीं करनी चाहिए, यानी हीटिंग टूल्स जो है वो भी ज्यादा इस्तेमाल करने से आपके बालों का मॉइस्चर खत्म होता है और पीएच लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरी बात ये कि बहुत जैसे लड़कियों को आदत होती है बहुत टाइट तरीके से बालों को बांधना, ठीक है, जो पोनी टेल्स ज्यादा बनाती हैं, तो कोशिश करें कि बालों को बहुत ज्यादा ना टाइट तरीके से नहीं बांधें, थोड़ा सा ऊपर लूज रखें कि आपके बाल ऊपर रूट्स की तरफ से थोड़ा सा लूज रहें। सही है, ज्यादा टाइट बाल जब बनते हैं तो सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है। अच्छा, और अब बात करते हैं हाइड्रेशन के हवाले से। पानी जो है सबसे ज्यादा जरूरी होता है और एक मेन बेसिक चीज है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं, स्कैल्प हेल्थ के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है। नॉर्मली भी हमारे पूरे बॉडी सिस्टम के लिए जो है पानी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइड्रेटेड रहना एक मेन चीज है जिसका ख्याल रखना होता है और जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। اچھا اگر ڈائٹ کے حوالے سے بات کریں تو اپنی ڈائٹ میں شامل رکھنا ہے پروٹین، آئرن، زنک اور اومیگا 3. ٹھیک ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے بال اور آپ کے نیلز کو ہیلدی رکھتے ہیں. اچھا نیند کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، صحیح ہے، ایسا فیل ہوتا ہے کہ چلو سونا جو ہے اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے، لیکن سونا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کی پراپر نیند پوری نہیں ہوگی، آپ کا باڈی کا فنکشن پراپر کام نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کی ساری چیزوں پہ، باڈی آرگنس پہ اور بالوں پہ، نیلز پہ، آپ کے فیس پہ، آپ کی سکن پہ فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ جو ہے اس کی ہیلتھ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. نیند کا بھی خیال رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ. اور ایک اور مین چیز اسکیلپ کو ہیلدی رکھنے کے لیے کہ اپنا کام اور اپنا ٹاول کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، وہ آپ اپنا سیپریٹ رکھیں. اچھا اگر آپ لوگوں کو ڈینڈرف کا مسئلہ ہے، جیسے سر میں بہت زیادہ خشکی ہے اور ڈینڈرف کے فلیکس بہت زیادہ بنتے ہیں، صحیح ہے، تو پہلے تو کوشش کریں کہ اگر خود سے ٹپ سے سارٹ آؤٹ ہو رہا ہے، آئلنگ سے ہو رہا ہے یا شیمپو چینج کرنے کے بعد ٹھیک ہو گیا ہے تو صحیح ہے، ورنہ پھر لازمی ڈاکٹر کو دکھائیں، ڈرمیٹولوجسٹ کو دکھائیں تاکہ آپ کی ڈینڈرف کا مسئلہ حل ہو، کیونکہ ڈینڈرف سے بھی اسکیلپ ہیلتھ بگڑ جاتی ہے. اور اگر بہت سیویئر قسم کا ڈینڈرف بڑھ جائے، یعنی اتنی زیادہ فلیکس ہو جائیں کہ وہ گرنا شروع ہو جائیں اور آپ کو دکھ بھی رہا ہے، تو لازمی ڈاکٹر کو وزٹ کریں. اس چیز کو جو ہے زیادہ لمبے عرصے تک چلنے نہ دیں، آپ فوراً سے ڈاکٹر کے پاس جائیں، ٹریٹمنٹ لیں اس کا، اور اپنی ڈائٹ کا بھی خیال رکھیں.

0: Genie in Radio. Radio.
1: Okay, so now welcome back. Aap sun rahe FM 100 Pakistan. The show is called Genie Na Radio and my name is Jasmine. So facebook.com/orchid.jasmine pe aap hume messages kar sakte hain and 3636 par bhi message kar sakte hain. So abhi hum baat karenge nails ke hawale se, theek hai? Aapko sabse pehle to hum batayenge nails tootne ki reasons kya kya hote hain, kis wajah se jo hai wo nails weak ho jate hain. Sabse pehla the main reason is पानी और केमिकल से ज्यादा कॉन्टैक्ट, मतलब जिनका काम ज्यादातर पानी में है और केमिकल से रिलेटेड है, नेल्स पे ये चीज जो है वो असर डालती है, नेल्स को वीक करती है. और साथ में आयरन या बायोटिन की कमी हो, जैसे अगर न्यूट्रिशन पूरी ना हो रही हो, जैसे मैंने बालों के हवाले से भी ये चीज पहले बताई थी कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी बाल खराब होते हैं. इसी तरीके से नेल्स का भी यही सिनेरियो होता है, आयरन या बायोटिन की कमी की वजह से भी नेल्स जो है वो वीक हो जाते हैं. और जैसे बार बार नेल पॉलिश रिमूवर या नेल कलर्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि नेल कलर जब हम यूज करते हैं तो हमारे क्यूटिकल्स जो हैं वो ऑलरेडी ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीजन जो है उनकी एक ऐसे ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि हम एक लेयर अपने नेल पे लगा रहे होते हैं. इस वजह से जो है कोशिश करनी चाहिए कि नेल कलर का इस्तेमाल जो है वो कम से कम किया जाए, बल्कि ना ही किया जाए. आप अपने नेचुरल नेल्स को बफ करें, फाइल करें एंड देन दैट्स इट. जब आपके नेल में एक शाइन है तो जरूरत नहीं है नेल कलर यूज करने की. अगेन के हाँ, ओकेजनली चलने समझ आता है क्योंकि शौक होता है, खूबसूरत लगते हैं, लेकिन ऑन रेगुलर बेसिस अवॉइड दिस थिंग. अच्छा, अगर हम बात करें कि नेल्स का कलर जो है वो बेसिकली क्या बताता है, अगर आपके नेल्स जो है वो पेल कलर में है, ठीक है, तो इट मीन्स कि यू हैव अनेमिया, आपको खून की कमी हो सकती है. तो इसका इलाज करना जरूरी होता है. ऑब्वियसली अपनी डाइट, अपनी न्यूट्रिशन को अच्छा रखें, न्यूट्रिशन लेवल जो है जब बैलेंस होगा तो ये चीज जो है वो नहीं होगी. सेकेंडली, अगर बहुत ज्यादा येलो नेल्स हो रहे हैं तो इट मीन्स कि कुछ नेल्स में फंगस इश्यू है, कुछ ऐसा है, इसका भी ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है. तो यू जस्ट हैव टू चेक आउट दीज सिम्टम्स इफ यू आर हैविंग, इफ यू आर फेसिंग विद दीज थिंग विद योर नेल्स. और कोई अगर डार्क लाइन्स भी आ रही हैं नेल्स में या व्हाइट स्पॉट्स हैं, तो इसके लिए भी आपको जरूरी होता है कि आप चेकअप कराएं कि ये क्यों आ रहा है. क्योंकि अगर किसी न्यूट्रिशन की कमी है तो इट मीन्स के वो डिटेक्ट अभी होगी, जब आप प्रॉपर टेस्ट वगैरह कराएंगे आपको पता चलेगा कि हाँ इस चीज की कमी है बॉडी के अंदर, इस वजह से वो चीज नेल्स पे भी आ रही है.

अच्छा, दूसरा ये कि बहुत से लोगों को जो है वो नेल बाइटिंग का एक हैबिट होती है कि वो अपने नाखून खा रहे होते हैं. सही, यू जस्ट हैव टू अवॉइड दिस थिंग, क्योंकि कुछ लोगों को ये स्ट्रेस की वजह से भी मसला होता है. लेकिन इफ यू आर डूइंग दिस थिंग, यानी आप अपने नेल खुद से चबा रहे हैं, तो इट मीन्स कि आप अपनी नेल्स की जो रूट्स हैं उसको खराब कर रहे हैं, यू नो. और फिर आगे जाके जब आप ये चीज कंटिन्यू करते रहते हैं, तो नेल का पूरा क्यूटिकल डैमेज हो जाता है, उसकी रूट डैमेज हो जाती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर डूइंग दिस थिंग, इफ यू हैव दिस बैड हैबिट, देन यू जस्ट हैव टू अवॉइड इट. कोशिश करें इसको जल्दी से जल्दी छोड़ें. अच्छा, नेल हेल्थ और किस चीज से खराब होती है? आजकल ये एक्रेलिक नेल्स का बड़ा फैशन चल रहा है, यू नो, जेल नेल्स का बड़ा फैशन चल रहा है. लड़कियां जाती हैं सलोन में एंड यू नो दे गो एंड दे जस्ट डू दैट नेल थिंग, चलो भाई ये लगाओ. ठीक है, एक हद तक आप ये चीज कर सकते हैं, लेकिन बार बार बस आपने फौरन से, बस अगर आपका एक्रेलिक नेल खराब

टुकड़ा है आपने उसको चेंज करके दोबारा से दूसरा लगवा लिया, डोंट डू दैट. इफ यू हैव लाइक इफ यू वॉन्ट टू डू दिस ओकेजनली इट्स फाइन, ठीक है कभी कभार, लेकिन जब कंटिन्यू आप अपने नाखूनों पे कोई फेक चीज लगाएंगे, ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है फेक चीज को एक हद तक एक्सेप्ट करती है, उसके बाद फिर वो नहीं करती, उसके केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, विच मीन्स कि जब आप इस तरह की चीजें जो है बार बार इस्तेमाल करेंगे, आपके नेल्स कि जो है रूट्स जो हैं वो क्यूटिकल्स जो हैं वो कम्प्लीटली तौर पर डैमेज हो जाते हैं, जिसको रिकवर करना मुश्किल हो जाता है. सो प्लीज अवॉइड दिस थिंग. अगेन कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जो है, अगर नेल्स की जितनी भी चीजें हैं ये इसको ठीक है कुछ हद तक खूबसूरत बना देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो यूज करना सही नहीं होता. ओके, सो नेल्स के हवाले से मजीद और बात करेंगे, लेकिन अभी जाएंगे हम एक ट्रैक की तरफ. मिलते हैं आपसे एक गाने के बाद, हमारे साथ रहिएगा. और फर्दर ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नेल के हेल्थ के हवाले से बात करेंगे, डाइट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है और मजीद नेल्स को किस तरीके से और हेल्दी और शाइनी बनाया जा सकता है नेचुरली. मिलते हैं आपसे इस गाने के बाद. दिस इज द ओएसटी ऑफ बदगुमान.

0: in radio. Radio.
1: Alrighty, so now welcome back. You're listening to FM 100. So, hum baalon ki aur nail health ke hawale se jo hai wo baat kar rahe hain. Aur acha, ab main aapko bataungi ki aapne apni diet mein jo hai wo kya kya shamil karna hai apne baalon ko aur apne nails ko jo hai wo healthy rakhne ke liye. So, number one is protein. Apni diet mein jo hai wo protein ki miqdar zyada se zyada badhaye. ठीक है, इससे आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे, नेल्स भी हेल्दी रहेंगे एंड यू नो ओवरऑल बॉडी का सिस्टम जो है वो हेल्दी रहेगा. अच्छा, आयरन इज वेरी नेसेसरी फॉर योर नेल्स, क्योंकि बहुत से लोगों का एक ये भी इशू होता है कि नाखून बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, यू नो ब्रिटल हो जाते हैं एंड उसको अवॉइड करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी डाइट में ये चीजें शामिल करें. प्रोटीन, आयरन, जिंक, बायोटिन, वाइटामिन B12, वाइटामिन सी एंड ओमेगा 3 फैट्स. ठीक है, दीज आर the things and you know some vitamins, proteins, which is very essential for nails health. Is cheez ko mind mein rakhein aur saath mein ye ke kuch nail ke hawale se jo hai hum aapko healthy tips dete hain. Sabse zyada ye ki aap logon ne hydrated rehna hai, sahi hai, munasib miqdar mein pani peena hai. नेल्स को हमेशा साफ रखें और ड्राई रखें. नेल बाइटिंग का जिनको इशू है, जिनके अंदर ये आदत है, उस चीज़ को ख़त्म करें. ठीक है, और अगर आप का कोई ऐसा काम है जिसमें आपके हाथ केमिकल्स में ज़्यादा जाते हैं तो कोशिश करें कि ग्लव्स ज़्यादा से ज़्यादा पहने, अपने नेल्स को जो है केमिकल एक्सपोजर से बचाएं और क्यूटिकल्स को ना काटें. ठीक है, अपना नेल कटर जो है वो नीट एंड क्लीन रखें, साफ रखें. और मॉइस्चराइजर्स होते हैं या हैंड क्रीम्स होती हैं तो उसको कोशिश करें अपने नेल्स के आसपास भी लगाएं. नेल कटर किसी और का शेयर ना करें, ये भी आप अपना सेपरेट रखें. और अपनी डाइट में प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें. So with that said, another week, we are moving on towards a short little break. Milte hain aap se break ke baad. Hamare saath rahiyega. Stay tuned.
2: It's 3:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
3: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? श्वाबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल.
4: कहीं फिर से रहमो चाचा, अपना डांगा लेकर न आ जाए. वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे, मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ.
5: आम तौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं. बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं. जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें. पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है. तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं. मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्प लाइन 1099 पर कॉल करें. वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान.
6: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया.
7: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.
8: Your favorite number on my fingertips. Catch your favorite number within no time. Genie in a radio with your very own RJ Jasmine.

0: across the nation, there is only 100 FM.
1: FM 100's time check. It's 4 p.m.

0: 247-365. FM 247-365. FM 100. 31 साल FM 100 आपकी आवाज. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान.
1: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान. पाकिस्तान.

0: in the rhythm of life. Rhythm when of you life. Feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on.
1: FM 100's time check. It's 5 p.m.
2: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
4: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
3: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
5: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्पन बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ता

0: It's 5:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL.
2: महराना देखभाल में फितरत परवान चढ़ती है. शॉबे सिंगल रेमेडीज मखसूस हर्बल फार्म्स और नबताती बागा से हासिल की जाती हैं, ताकि आपको ऐसा मयार मिले जिस पर आप मुकम्मल भरोसा कर सकें. डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शॉबे जर्मनी के पाकिस्तान में 75 साल सिर्फ सेहतमंद पाकिस्तान के नाम.
0: This program is brought to you by
3: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
0: And
4: Sweep B Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
0: And
5: Candyland, don't stop fun karte jao.
0: Like us on facebook.com/fm247365. FM 247365.

0: FM 100's Time Check. It's 6 p.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
3: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ
2: अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहाँ HBL।
4: खालिस अज्जा, भरोसे मन शिफा, श्वाबे सिंगल रेमेडीज कुदरत के बेहतरीन अज्जा से तैयार की गई हैं, क्योंकि आपकी सेहत इससे कम की हकदार नहीं। डॉक्टर हमीद जनरल होम्यो और श्वाबे सिंगल रेमेडीज 75 सालों से पाकिस्तान में नस्लों का भरोसा।
5: हायर नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: नाजरीन, ताज़ा तरीन खबर से आपको आगाह करेंगे कि पूरे शहर में फैल चुकी है आपके टॉयलेट की बदबू।
7: बंद करो ना।

0: टॉयलेट की बदबू,
1: बंद करो ना ढक्कन।
2: स्वीपी क्लीन करे तेजी से सख्त दाग और जरासीम का खात्मा और रखे टॉयलेट को चमकता हुआ साफ।
3: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खा वहां HBL।
4: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना।
5: नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
6: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
7: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना।

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना।
1: This program is brought to you by
2: Phoenix laga aur bhul ja, Phoenix laga aur bhul ja.
1: And
3: Sweep B Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur apke toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL. And

0: 6:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 75 remarkable years.
1: HBL Freedom Account ke saath muft IDFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath. HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.
2: Hire No Frost IoT Refrigerator. Iski IoT technology food expiry notification ke saath saath aapko de mobile app se complete control. No Frost, no worries.
3: जब बात आपकी सेहत की हो तो खालिस्तान बहुत अहमियत रखता है। शोबे मयार की सख्त जांच पड़ताल करता है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर दवा असली और काबिल भरोसा हो। डॉक्टर हमीद जनरल होमियो और शोबे जर्मनी पिछले 75 सालों से सेहतमंद पाकिस्तान के लिए कोशां।
2: हायर का नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
4: शेयर्ड बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
0: This program is brought to you by
5: Phoenix laga aur bhul ja Phoenix laga aur bhul ja
0: and
6: Sweepy clean kare tezi se sakht daag aur jaraseem ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf
0: and HBL freedom account jahan khwab wahan HBL

0: FM 24/7 365. FM 24/7 365.
1: DJ FM 100 100.

0: टैक्स पे करना अब हुआ आसान। अभी जैजकैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर। आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैजकैश है ना।
1: This program is brought to you by Phoenix laga aur bhul ja,
2: Phoenix laga aur bhul ja. And Sweepy Clean kare tezi se sakht daag aur jarasim ka khatma aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
3: And HBL Freedom Account, jahan khwab wahan HBL.

us on facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: It's 6:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries. Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja. HBL Freedom Account के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान मुफ्त IBFT मुफ्त चेकबुक मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच HBL फ्रीडम अकाउंट जहां ख्वाब वहां HBL
1: Hire No Frost IoT Refrigerator. इसकी IoT technology food expiry notification के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से complete control. No Frost, no worries.
0: HBL Freedom Account के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL Freedom Account. जहां ख्वाब वहां HBL.
1: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट आईओटी रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग नो फ्रॉस्ट नो वरीज
2: शेयर बंडल्स वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना

0: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimpur, Sun. Across the nation, this is FM 100.
1: FM 100's time check. It's 7 p.m. This program was brought to you by
2: Phoenix Laga aur Bhul Ja, Phoenix Laga aur Bhul Ja.
1: And
3: Sweep E Clean, kare tezi se sak daag aur jarasim ka khatma, aur rakhe toilet ko chamakta hua saaf.
1: And HBL Freedom Account, jahan khwab, wahan HBL. And
4: Candyland, non-stop fun karte jao.
5: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं, मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता, दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ, क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ अपने ख्वाबों और बिजनेस को दे आजादी की उड़ान। मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ अकाउंट खोले डिजिटली या विजिट करें अपनी करीबी HBL ब्रांच। HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
6: आम चीजों पर समझौता क्यों करें? शोबे सिंगल रेमेडीज मुस्तनद जर्मन महारत के साथ तैयार करदा कुदरत के बेहतरीन अज्जा लाए हैं, ताकि आपकी सेहत की बेहतरीन देखभाल हो सके। डॉक्टर हमीद जर्नल होमियो और शोबे सिंगल रेमेडीज, भरोसे, देखभाल और जर्मन महारत के 75 साल।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां खास वहां HBL।
7: हायर का नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन। ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
1: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL।
8: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस।

0: बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
1: नो क्रॉस IoT रेफ्रिजरेटर, इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल। नो फ्रॉस्ट, नो वरीज।
2: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस, 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत। कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर्स से कंसल्टेशन भी। अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
3: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: तूफान है।
3: कहीं अनजाने में आप दहशत गर्दों की माली मुआवनत तो नहीं कर रहे? होशियार रहें, मोहतात रहें। अपना बैंक अकाउंट किसी दूसरे फर्द को हरगिज़ इस्तेमाल न करने दें और न ही किसी अनजान अकाउंट में रकम मुंतकिल करें। हुंडी, हवाला या बैंक अकाउंट के जरिए दहशत गर्दों की माली मुआवनत करने वाले अफराद के खिलाफ इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज हो चुका है। याद रखें, दहशत गर्दों की माली मुआवनत भी दहशत गर्दी है। हुकूमत पाकिस्तान।
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: FM 100 लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365
6: FM247365
7: Let's celebrate
8: 31 years of memories, milestone and moments. FM 100 Pakistan. It's a legacy.
9: Assalamu alaikum, Pakistan. Let's celebrate the journey.
10: Evening drive time.

0: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। चैट कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: तूफान है।
3: नशा ना परेशानियाँ खत्म करता है, इसका जरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। मातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
4: मुफाद आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
5: तोहीन रिसालत, नफरत आमेज तकरीर और मजहबी फिरका वारियत का फरोग आईने पाकिस्तान के मुताबिक एक इंतहाई संगीन जुर्म है। सोशल मीडिया जैसा कि यूट्यूब, ट्विटर या केबल FM पर इस नौयत का गैर कानूनी मवाद नजर में आए तो FIA, साइबर क्राइम विंग, PTA या पेमरा को फौरी इतला करें। जिम्मेदार शहरी बने, मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया का मुस्बत इस्तेमाल करें। मुफाद आमा का ये पैगाम आपको पेमरा की जानिब से पेश किया जा रहा है।
6: FM 24/7/365 FM 24/7/365 Evening Drive Time.

0: the structure gives you.
1: Suffer, Maniku.
2: Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahimur Khan. Across the nation, this is FM 100.
3: FM 100.
4: It's 7:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
5: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
6: HBL Freedom Account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, Muft Checkbook, Muft Online Banking
7: aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath.
6: Account khole digitally ya visit kare apni kareebi HBL branch. HBL Freedom Account, jahan khwab वहाँ HBL.
8: हायर कर नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर जिसका मल्टी एयर फ्लो सिस्टम दे बैलेंस्ड कूलिंग हर कंपार्टमेंट में और रखे आपके रेफ्रिजरेटर को क्लीन. ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
6: HBL फ्रीडम अकाउंट के साथ मुफ्त IBFT, मुफ्त चेकबुक, मुफ्त ऑनलाइन बैंकिंग
7: और बेहतरीन मोबाइल ऐप की सहूलत के साथ.
6: HBL फ्रीडम अकाउंट, जहां ख्वाब वहां HBL.
8: हायर नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर. इसकी IoT टेक्नोलॉजी फूड एक्सपायरी नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको दे मोबाइल ऐप से कंप्लीट कंट्रोल. नो फ्रॉस्ट, नो वरीज.
9: बेहतरीन इंश्योरेंस हर वक्त आपके साथ, जैसे इजी पैसा इंश्योरेंस मार्केट प्लेस. 50 से ज्यादा प्लान्स, बेहतरीन कवरेज, खास डिस्काउंट्स और सिर्फ 24 घंटों में क्लेम हासिल करने की सहूलत. कवर 3 के लिए डेडिकेटेड प्लान्स और 25,000 टॉप डॉक्टर से कंसल्टेशन भी. अभी इजी पैसा ऐप पर इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एक्सप्लोर करें. इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक.
10: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.

0: This program is brought to you by Tufaan Hai Ye, Har Jeet
1: Ki Pehchan Hai Ye. तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशत गर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। बच्चों का ऑनलाइन तहफ्फुज़ आपकी जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को ऑनलाइन राब्तों का महफूज तरीका इस्तेमाल सिखाएं। इंटरनेट के जरिए खेलों, तफरी और तालीमी सरगर्मियों में शामिल होने के फवायद जरूर हैं, लेकिन इसमें नामुनासिब मवाद, साइबर बुलिंग और दीगर ऑनलाइन नुकसानात जैसे मुमकिन खतरात भी मौजूद हैं। वालिदैन और असातिज़ा की जानिब से बच्चों की निगरानी और रहनुमाई न होने की सूरत में बच्चे बासानी मनफी सरगर्मियों का शिकार हो सकते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों के हवाले से आगाह और होशियार रहने की जरूरत है। बच्चों को नुकसानदेह मवाद जैसे नफरत अंगेज तकरीर, गुस्ताखाना और फहाश मवाद वगैरह अपलोड और शेयर करने के कानूनी नतायज के हवाले से भी शऊर और आगाही इंतहाई अहमियत की हामिल है। पीटीए की वेबसाइट पर पेरेंटल कंट्रोल सॉफ्टवेयर की एक फहरिस्त दस्तियाब है, ताकि वालदैन अपने बच्चों की ऑनलाइन सरगर्मियों की निगरानी करते हुए उन्हें ऑनलाइन नुकसान से महफूज रखें। www.pta.gov.pk। मुफाद आमा के लिए ये पैगाम FM 100 और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
3: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सर दर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
4: किसी भी इंसान के लिए सबसे अहम होती है उसकी सेहत।
5: किसी भी शख्स को देख के उसकी सेहत के बारे में अंदाजे न लगाएं।
4: मुझे पता है कि मेरा वजन ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं वॉक नहीं करता।
6: जी हाँ, मुझे भी लोग मोटी कहते हैं, मगर ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाती हूँ।
5: हम बिना किसी तहकीक के बस बातें बनाने का फन जानते हैं। सामने वाले पर क्या गुजरी हमें से क्या।
4: मैं ओबेसिटी का शिकार हूँ, सिर्फ वॉक से ये कम हुई।
6: मोटापा एक बीमारी है, सिर्फ मीठा ना खाने से खत्म नहीं होगी।
5: सिर्फ बातें बनाने से हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
6: अभी इसी वक्त अपना BMI चेक करवाइए,
4: यानी अपने वेट को अपनी हाइट की मुनासिबत से जांचिए
5: और इस वजन की असल हकीकत को समझें।
4: आइए वेट से आगे का सोचें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: ईमेल हर अदारे के लिए एक इंतहाई अहम जराए इबलाग है, लेकिन सिर्फ एक गलत क्लिक पूरे नेटवर्क को खतरे में डाल सकता है। साइबर मुजरिमों की जानिब से हुकूमती और निजी शोबे के मुलाजमीन को मुसलसल फिशिंग ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इनका क्या मकसद है? आपकी लॉगिन तफसीलात चोरी करना, सिस्टम्स को रैंसम वेयर से मुतासिर करना या गैर मजाज रसाई। महफूज रहने के लिए हमेशा ये बेहतरीन तरीके अपनाएं। हमेशा भेजने वाले की शनाख्त चेक करें, खसूसन एड्रेस। हमेशा अटैचमेंट की फाइल एक्सटेंशन चेक करें। PTA.txt महफूज है, लेकिन PTA.txt txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے. اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور سکین کریں. ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں. ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں. سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں. کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں. کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں. اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں. پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں. ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں. اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں. فیشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں. نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں. بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں. اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے. لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں، ان پر اندھا اعتماد نہ کریں. کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں. آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے. ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں. یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے.
8: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
9: FM 24/7 365. It's not

0: This program was brought to you by FM 100's time check. It's 8 p.m.
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर, सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है, और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: शेयर्ड बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना।
0: 100 FM।
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
0: 100 FM।
4: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
0: This program is brought to you by
5: Hire ka naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving. No Frost, no worries.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
6: FM247365. FM 100.
7: 31 साल FM 100 आपकी आवाज। अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान।
6: अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। पाकिस्तान।

0: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: FM 24/7/365

0: It's 8:30 p.m. This time check is brought to you by HBL Freedom Account. Jahan khwab, wahan HBL.
1: Jab zindagi ek lafz se ruk si jaye, cancer. सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है. हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं. मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है. डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मयार पर मुमकिन है. गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है. और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है. जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता. दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है. यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है. अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ. क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है. खिदमत में सबसे आगे सिंध.
2: टैक्स पे करना अब हुआ आसान. अभी जैज कैश ऐप डाउनलोड करें और अपना टैक्स पे करके लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं और जीतें इलेक्ट्रिक स्कूटर. आसान पेमेंट्स और एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स के लिए जैज कैश है ना.
3: 100 FM. शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैज कैश ऐप से जैज B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैज कैश है ना.
4: 100 FM.
5: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैज कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैज कैश है ना.
3: 100 FM.
6: जैज कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैज कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैज कैश है ना.
0: This program is brought to you by
7: Hire Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
0: FM 100. Like us on facebook.com/FM247365.
8: FM 247365.
0: This public service message is brought to you by FM 100. Traffic قوانین اور اشاروں کی پابندی کیجیے. ان کی خلاف ورزی قابل گرفت جرم ہے. Traffic قوانین کی پابندی کیجیے.

0: It's 8:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
1: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: Shared bundles, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
0: हार्मोन्स के बारे में कंफ्यूज हैं, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस या जिस्म में तब्दीलियां, आखिर जिस्म के अंदर क्या हो रहा है, तो सुनना ना भूलें हार्मोन टॉक्स, जहां होगी सेहत और हार्मोन्स बैलेंस पर खुलकर बात, माहरीन की राय और रोजमर्रा की आसान टिप्स. प्रोग्राम में हमारे मेहमान होंगे प्रोफेसर डॉक्टर नजमुल इस्लाम, कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, आगा खान यूनिवर्सिटी कराची, पास्ट प्रेसिडेंट पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी. प्रोग्राम का मौजू होगा ज़ियाबतस से कैसे बचा जाए. सुनिए हार्मोन टॉक्स, हार्मोन्स की दुनिया, जुमेरात 30 जुलाई 2 बजे सिर्फ FM 100 पर. ये प्रोग्राम एडको ग्रुप और पाकिस्तान एंडोक्राइन सोसाइटी के तावन से पेश किया जाएगा.
3: पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एडको लेबोरेटरीज के तावन से हर जुम्मा 12:30 से 1 मालूमाती प्रोग्राम, जिसमें बात होगी स्किन कंडीशन के हवाले से. पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे, तो सुनना ना भूलें सिर्फ FM 100 पाकिस्तान पर.
0: This program is brought to you by
4: Hire Kan Naya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले Maximum Cooling और Energy Saving. No Frost, No Worries.
0: This public service message is brought to you by FM 100. रात में गाड़ी चलाने के दौरान तेज रोशनी देने का मतलब ऐसा ही है जैसे दिन के वक्त हॉर्न बजाना. इसका गैर जरूरी इस्तेमाल मत कीजिए. ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कीजिए.
5: बैन अल-अक़वामी सफर पर रवाना होने वाले मुतवज्जो हों, ऐसी ऑनलाइन ऐप्स और प्लेटफॉर्म से इज्तनाब करें जो पैसों की इवज किसी नामालूम शख्स का सामान आपके अपने सामान के साथ ले जाने के लिए करें. यह आसान कमाई का तरीका तो नजर आता है, लेकिन हकीकत में खतरनाक जाल है. मंशियात फरोश इन्हीं तरीकों को इस्तेमाल करके मंशियात स्मगल कर रहे हैं. याद रखें, अगर आपके सामान से मंशियात बरामद हुई तो कानूनन इस जुर्म के जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे. खबरदार, किसी अजनबी का सामान दौरान सफर अपने साथ ले जाना आपके लिए खतरनाक हो सकता है.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है. अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें. डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें. पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें, गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें, लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहनें, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें. याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है. डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत.
0: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया.
7: FM 100. लाइक अस ऑन facebook.com/FM247365. FM 247365.

0: हेलो हेलो माय चेक 1 2 3 अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। सभी सुनने वालों को अयाज अहमद की जानिब से आदाब। क्या हाल है दोस्तों? ठीक है, मजे में है, सुन रहे एफएम 100। और जनाब टाइम हो गया है 9:12 और शो हमारा कब तक रहेगा? 11 बजे तक। तो जो लोग सुन रहे हैं और दिल चाह रहा मैसेज करने का, तो बहुत सिंपल तरीका है, मैसेज कर सकते हैं आपकी एचआई स्पेस, टेक्स्ट करेंगे, सेंड करेंगे 3636 पर। ड्राइव करें इत्मीनान सुकून के साथ ड्राइव करें, और अगर मैसेज करने का दिल चाह रहा है तो साइड पे गाड़ी करके जरा पार्क करें आप, फिर मैसेज करना। चलती गाड़ी में मैसेज करना जरा सही नहीं है। अच्छा जनाब, और जो घर में बैठे हैं तो वाह सरकार क्या बात है जनाब, एंजॉय कर रहे होंगे आप, और इसी तरह सुकून के साथ इत्मीनान के साथ मैसेज भी करें। दिन है आज वेनसडे, और वेनसडे वाले दिन जनाब हम जरा पंजाबी गाने सुनाते हैं। मैं क्या आज जनाब पंजाबी सॉन्ग्स ते नाल अरबी भी ते कुछ अंग्रेजी भी, ये भी मिक्स आज माहौल है हमारा। और कुछ दोस्त कहते हैं यार पश्तो भी सुना दे, सिंधी भी सुना दे, एक एक दो दो गाने वो भी रखे हमने, तो जरा मिक्स माहौल है, पंजाबी इंग्लिश अरबिक सब माहौल मिलेगा। मौसम के बारे में भी काफी जरा परेशान है लोग के, भाई क्यों नहीं बारिश हो रही, बाकी यार पूरे पाकिस्तान में हो रही, कराची में क्या वजह है। नदीम अंसारी हमारे प्यारे से, इंजीनियर हमारे साथ हमेशा की तरह, और एक नई एंट्री होगी भाई, बिलाल भी हमारे साथ आ गए हैं, छोटे से क्यूट से बिलाल, ये भी अब हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यानी कि यहां मौजूद है। चले जनाब आगाज करेंगे एक छोटे से ब्रेक से, सुनते रहे एफएम 100। एक दफा फिर बता दूं, बहुत सिंपल तरीका मैसेज करने का, KHI स्पेस, टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर।
1: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
2: हायर कन नया नो फ्रॉस्ट IoT रेफ्रिजरेटर, ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जिससे मिले मैक्सिमम कूलिंग और एनर्जी सेविंग, नो फ्रॉस्ट नो वरीज।
3: एक लड़की जब पढ़ेगी तो अपने पैरों पर खड़ी होगी, एक लड़की जब पढ़ेगी तो खुद मुख्तार बनेगी, एक समझदार माँ बनेगी,
4: सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे घराने की जिंदगी बदलेगी,
3: आने वाली नस्लें संवारेगी। एक लड़की जब पढ़ेगी तो मुल्क को मजबूत बनाएगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। लड़की को पढ़ाएंगे तभी तो आगे जाएंगे।
5: वज़ारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
6: मुफादे आम्मा के लिए पैगाम हुकूमत पाकिस्तान और FM 100 कराची की जानिब से पेश किया गया।
7: कभी सोचा है कि अब जंग की सूरत क्या है? अब जंग मैदाने जंग में नहीं, हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। अब दुश्मन की गोलियां बारूद नहीं, मालूमात है, और निशाना हम सब। रियासत मुखालिफ ताकतें हमारे घरों के दरवाजे तक पहुंच चुकी हैं। टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पर्दे में दुश्मन छुपा बैठा है, वो ढूंढता है कमजोर लम्हे, बेरोजगार नौजवान, जरूरतमंद खानदान, फिर उनके सामने बिछाता है ख्वाब, बड़ी नौकरी, तेज दौलत, बैरून मुल्क सफर, और फिर कभी रिपोर्टर की सूरत में कभी NGO वर्कर या फ्रीलांसर बनकर उनसे वो रास निकलवाता है जो दुश्मन का रास्ता खो देते हैं, जिनसे बदमनी, खौफ और फसाद हमारी गली कूचों तक उतर आते हैं, हमें अपनी ही मट्टी के खिलाफ खड़ा कर देता है। जो आपसे मालूमात लेता है वो आपकी जात तक पहुंचता है, आपकी तस्वीरें, पहचान, फोन, सब कुछ खतरे में डाल देता है। तो याद रखिए, किसी अजनबी को अपनी कोई हसास बात ना दीजिए, कोई मशकूक चीज, कॉल या पेशकश हो फौरन रिपोर्ट कीजिए, हसास मकामात बस अपने इदारे तक रखिए, क्योंकि हर लफ्ज, हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा, फैसला आपके हाथ में है।
6: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
1: Us on facebook.com/FM247365
8: 96.5
9: Active.
10: Yummy.
9: Adorable. Zabardast.
11: Ready hai pyaas? To suno yaar.

है जनाब, वेलकम बैक। सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेज चल रहे हैं और आराम से मैं मैसेज शामिल करता हूँ, लेकिन जरा आगाज कर इस खूबसूरत ट्रैक से।

जनाब वेलकम बैक। और नौरीन तौसीफ कह रही हैं कि भाई फैसलाबाद में ना टिका के बारिश हो रही है। नौरीन थोड़ी सी इधर भी पार्सल कर दो, थोड़ी सी शदीद वाली जो है ना हब्स हुई हुई है, सफोकेशन की इंतहा हो गई है, बारिश नहीं हो रही। नदीम भाई कुछ करो यार, क्या करें बारिश का समझ नहीं आ रही, गर्मी भी हुई हुई है, अल्लाह बेहतर करेगा। सलाम कैसे हैं, शुक्र आप आ गए। एफएम पर रौनक आ गई। जरीनूर आपका मैसेज आ गया, आपके भी मैसेज आने से रौनक आ गई भाई। सलीम मेमन कह रही है, कह रहे हैं भाई, खबातीन इतनी मैसेज करते हैं कि कह रही निकल जाता मुंह से, माजरत। सलीम मेमन कह रहे हैं, अयाज भाई आप कैसे हैं? संजीदा जी, उरूसा, जरीनूर, अयूब लाला और खास तौर पर आपको दिल की गहराइयों से मेरा सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम भैया, वालेकुम सलाम। अच्छा नौरीन तौसीफ कह रही थी कि संजीदा को गाना डेडिकेट करना, तो उनकी तरफ से ये वाला ट्रैक जरा आज जरा फुल टिका के ना हल्ला गुल्ला वाले गाने हैं, एंजॉय करना भाई। तो संजीदा जी आपके लिए नौरीन की तरफ से।

0: बाद।
1: जब जिंदगी एक लफ्ज से रुक सी जाए, कैंसर। सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक इम्तिहान है। हर दिन एक जंग से कम नहीं, एक ऐसी जंग जिसमें बहुत से लोग नाउम्मीद हो जाते हैं। मगर अब मायूसी उम्मीद में बदल रही है। डाउ कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर, हुकूमत सिंध का वो कदम जहां कैंसर का इलाज अब एक नए मायार पर मुमकिन है। गामा नाइफ एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए ब्रेन ट्यूमर का बगैर सर्जरी के इलाज किया जाता है, जो उमूमन एक ही दिन में मुमकिन होता है। और इसके जरिए एडवांस स्टेज ब्रेन ट्यूमर्स यानी तीसरे और चौथे स्टेज के साथ मल्टीपल मेटास्टेटिस का इलाज भी मुमकिन है। जदीद तरीन MR लिनक मशीन की बदौलत अब कैंसर जिस्म के किसी भी हिस्से में छुप नहीं सकता। दौरान इलाज इसे बराह रास्त देखा जा सकता है और रेडिएशन को उसके रिएक्शन के मुताबिक फौरन एडजस्ट किया जाता है। यहाँ पूरे पाकिस्तान से आए हुए लोगों का इलाज मुफ्त किया जाता है। अब कैंसर का फौरी इलाज ख्वाब नहीं, हकीकत बन चुका है, जो हुकूमत सिंध और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन से मुमकिन हुआ। क्योंकि ये सिर्फ इलाज नहीं, उम्मीद है हर उस चेहरे की जो जीना चाहता है। खिदमत में सबसे आगे सिंध।
2: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर। सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर। बड़े डिस्काउंट के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
4: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है। जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस। तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना।
3: 100 FM।
5: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका। अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज। बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना।
6: This program is brought to you by
7: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology जिससे मिले maximum cooling और energy saving. No frost, no worries.
8: Like us on facebook.com/FM247365.
9: FM247365.
10: Active,
11: yummy,
10: adorable, seven.
12: Say I've got a crush on you.
13: Listen to me.

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं एफएम 100 लगी है प्यास तो सुनो आयास। यार एक बात बताना भूल गया मैं आपको, कल डॉक्टर साहब आई थी और आते हुए कितना जबरदस्त सा गिफ्ट, यानी कि केक वैसे जिंदगी में खाते रहते हैं, वो आते रहते हैं लेकिन केक ले आई वो, लेकिन अच्छा और जबरदस्त क्यों था उसकी वजह थी, उस पर इतने खूबसूरती से उन्होंने उस केक के ऊपर लिखवा दिया लगी है प्यास तो सुनो आयास। तो डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमेरा आपका, और बहुत उस शो को लोगों ने पसंद किया और भी लोगों ने तारीफ कर दी। इसके अलावा बिलावल कहने सर टीम पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से फर्स्ट टेस्ट 90 रन से हार गई। मैं जब ये मैच हो रहा था 211 का टारगेट जब मिल गया था उसी वक्त भाई ने ऐसी मनहूस खबर सुना दी, मैंने कहा हार गया पाकिस्तान, विकेट ऐसी थी ना, विकेट घर और ऊपर से बैट्समैन उससे भी फारिग, तो बिल्कुल मैं वो परेशान नहीं हुआ, ऐसा ही जैसा एक्सपेक्ट किया वैसे ही हुआ और पाकिस्तानी टीम हार गई। बिल्कुल फारिग टीम बनी हुई है यार, भले वो टेस्ट की हो, वनडे की हो, T20 की हो, तुक्का है, बस जीत गए तो जीत गए, लेकिन रिलायबल टीम नहीं है मातरत के साथ। अच्छा जनाब एक बड़ी मुझे जरा अफसोस की खबर, वो भी मैं चाहता हूँ कि आपको मैं सुना दूं। हमारे बड़े अच्छे एक्टर, बड़े पुराने, बचपन भी हमने, हमारी यादें हैं बचपन की उनके साथ, और खालिद निजामी उनका नाम था, अगर आपने अनकही ड्रामा देखा हो जिसमें वो आतुई वो वाला करेक्टर उनका बड़ा हिट था, बहुत मशहूर था, तो उनकी डेथ आज हो गई भाई। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन। जो दुनिया में आया वाकई वो जा भी रहा है, लेकिन ये है कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया, नाम बनाया और लेजेंडरी आर्टिस्ट थे, कॉमेडी में भी कमाल उनकी टाइमिंग थी, बहुत आला म्यूजिशियन भी बहुत अच्छे थे। तो बहरहाल उनके लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, राइट जनाब। अच्छा जी एजाज मक्सी भाई आ गए, एजाज भाई कैसे हैं आप, कहने एजाज भाई आपको और बिलावल जरी नूर और सब सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बतलाइए तबीयत कैसी है आपकी, ठीक है खैरियत से हैं? शुक्रिया अदा कर दिया है संजीदा जी ने, संजीदा आपके लिए स्पेशली ये ट्रैक मैंने प्ले कर दिया था। अच्छा जी मुश्क लैला आ गई है, लैला जी क्या हाल है आपके, कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम वेलकम, आपको सुन के बहुत खुशी हो रही, इसी तरह आते रहा करें। बेटा मैं आता ही रहता हूँ, तुमने अजीब घरेलू टच दिया कि आते रहा करो चाय पानी पे, ऐसा नहीं बोलो। अच्छा किंग पंजाबी सॉन्ग्स एनर्जेटिक होते हैं, शो में मस्त माहौल हो जाता है, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा जनाब लगी है प्यास तो सुनो हमारे किंग अयास, नहीं वो रत नहीं बन रहा वो वाला, ठीक है किंग लगाने की जरूरत नहीं बीच में। अच्छा जनाब सुन रही हैं सुंदस, और सुंदस जी हमारी जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही स्वीट सी प्यारी सी लिसनर, दोबारा आ गई हैं और दोबारा से हमें सुन रही हैं, ज्वाइन कर लिया ने, तो ये गाना मैं उन्हीं को डेडिकेट कर देता हूँ, और वो है कैसे

Right, Janab, welcome back. Sundar FM 100 aur saath hi saath messages ke silsile shuru hain. Ramzan Pathan ka message aaya hai. Az bhai aapko aur Bilawal aur tamam listeners ko assalamu alaikum. Kya haal hai? Pathan bhai main bilkul theek hu. Aap batlao tabiyat kaisi hai? Bilawal keh rahe sir mulk mein na barish ka powerful spell jari hai. Beta ye power aur full pata nahi kidhar hai. Karachi mein kyun nahi hai? Na power hai na full hai. Bilkul farig hai. कह रहे हैं कि उम्मीद है कि हो जाए. अच्छा अयाज भाई किसकी डेथ हो गई है? साहबजादा भाई पूछा. ये हमारे बड़े अच्छे एक्टर हैं हमारे और वो हैं खालिद निजामी साहब. अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह अता फरमाए. आमीन सुमा आमीन. अच्छा जी बिल्कुल मुश्क लैला जी अब बिल्कुल सही आपने लिखा ही है. यानी लगी है प्यास तो सुनो अयाज. अब ठीक है बिल्कुल ठीक है. ये ऐसे ही है अपनी तरफ से बीच में ऐड नहीं करो सारा उसका जो है ना मजा खराब हो जाएगा. हाय संजीदा जी बहुत शुक्रिया गाने पसंद करने का बहुत शुक्रिया. कह रहे अच्छा है समझ आ रहे हैं कंजूस मक्खी चूस है. ये तो बात ये वाली गाने इस तरह के बड़े फिट होते हैं. सुंदर जी तो अनु भी पसंद आया कि नहीं? सुंदर जी कह रही है कि गाना अच्छा अच्छा आगे भी मैसेज पसंद आ गया. बड़ी मेहरबानी बड़ी मेहरबानी. नेक्स्ट ट्रैक और वो है कैसे

0: Turn it up. It's time to go with Ayaz Ahmed. The show's the star of the show.
1: Star of the show.
0: Full volume, 9 to 11, Sunday to Friday.
1: Full volume.
0: It's a party that won't end. On FM 100, turn it up. Let the music begin.
1: FM 100's where the vibes are proud.
2: It's 9:45 p.m. This time check is brought to you by Phoenix Batteries.
3: Phoenix laga aur bhul ja. Phoenix laga aur bhul ja.
2: This program is brought to you by
4: Hire Kanaya, low cost IoT refrigerator, twin inverter technology, jisse mile maximum cooling aur energy saving. No frost, no worries.
5: तेजी से फैलती डिजिटल दुनिया एक जबरदस्त सलाहियत के साथ साथ एक अहम जिम्मेदारी भी। मजहबी, फिरका वाराना या नस्ली बुनियाद पर नफरत अंगेजी, दहशतगर्दी की तरगीब से मुतल्लिक किसी भी तरह का मवाद फैलाना, इलेक्ट्रॉनिक जालसाजी, स्पैमिंग, धोखादही, बशमूल आइडेंटिटी थेफ्ट, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और साइबर स्टॉकिंग और अनचाही मुदाखलत, मसलन किसी भी फर्द से जबरदस्ती या बार बार राबिता करना, मुतल्लिका शख्स की रजामंदी के बगैर उसकी तस्वीर या वीडियोस बनाना और शेयर करना वगैरह संगीन जराइम है। इस तरह की खिलाफ वर्जियां पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट और दीगर कानून के तहत कानूनी नतायज की मुतहम्मिल हैं। अगर आप इस बारे में कोई सवाल करना, इस सिलसिले में मदद तलब करना, किसी वाकये की इत्तला देना या इन कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के बारे में हुकूमत की मुआवनत करना चाहते हैं, तो बराह करम हमारी हेल्पलाइन पर कॉल करें।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
6: डेंगू एक खतरनाक बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। सुबह सूरज निकलने के बाद और शाम सूरज गुरूब होने से पहले ये मच्छर आपको काट सकता है। अगर आपको अचानक तेज बुखार, शदीद सरदर्द, जिस्म और जोड़ों में दर्द, मतली या कमजोरी महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। डेंगू का मच्छर साफ पानी में पैदा होता है, इसलिए घर और इर्द गिर्द कहीं भी पानी जमा न होने दें। पानी की टैंकियों को ढांप कर रखें। गमलों और कूलर का पानी बाकायदगी से तब्दील करें। लंबी आस्तीन वाले कपड़े पहने, मच्छर मार स्प्रे और मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। याद रखें, एहतियात ही डेंगू से बचाव का बेहतरीन तरीका है। डेंगू से बचाओ, आपकी एहतियात, आपकी हिफाजत।
2: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
7: क्या आप जानते हैं कि आपका मोबाइल बैलेंस गैर इरादी तौर पर भी खत्म हो सकता है? ये अक्सर इस वक्त होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है लेकिन इंटरनेट पे एज यू गो रेट्स पर चलता रहता है, जिससे बैलेंस तेजी से कम हो सकता है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से सार्फिन को आगाह किया जाता है कि ऐसे गैर जरूरी चार्जेस से मुहतात रहें। मोबाइल फोन ऑपरेटरों की जानिब से इस मसले के हल के लिए एक मुफीद और मुफ्त सर्विस मुतारिफ कराई गई है। इस सर्विस के जरिए आपका डेटा पैक खत्म होते ही इंटरनेट का इस्तेमाल खुदकार तौर पर बंद हो जाएगा, ताकि आपका कीमती बैलेंस महफूज रहे। सर्विस फाल करने के लिए दर्ज सेल कोड्स डायल करें। जय सार्फिन के लिए *275 हैश, जोंग सार्फिन के लिए *4004 हैश, यूफोन सार्फिन के लिए *6611 हैश और टेलीनॉर सार्फिन के लिए *342 हैश। अपना बैलेंस महफूज रखें और गैर जरूरी चार्जेस से बचें। डिजिटल दुनिया में महफूज कदम पीटिए।
8: ये मुफाद आमा का पैगाम अब तक पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से पेश किया गया है।
7: कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जानिब से तमाम मोबाइल फोन सार्फिन को आगाह किया जाता है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड फाल होने चाहिए। याद रखें, अगर आपके जेरे इस्तेमाल सिम के साथ मुंसलिक शनाख्ती कार्ड मंसूख कर दिया गया है या इसकी मियाद खत्म हो गई है या शनाख्ती कार्ड का हामिल फर्द वफात पा गया है, तो आपकी मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। लिहाजा किसी भी जहमत से बचने के लिए मोबाइल फोन सार्फिन को चाहिए कि जिन शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म हो चुकी है उनकी फौरन तजदीद करवाएं। शनाख्ती कार्ड की मनसूखी से मुतल्लिक किसी کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ناترا سے رجوع کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سم کسی وفات شدہ فرد کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ نہ ہو۔ اگر آپ کی سم کسی وفات شدہ شخص کے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو قانونی وارث متعلقہ کمپنی کے سروس سینٹر مجاز فرنچائز پر جا کر ضروری دستاویزات جمع کروا کر سم کی ملکیت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ شناختی کارڈ کی بر وقت تجدید موبائل فون صارفین کے تسلسل کو یقینی بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ پی ٹی اے آپ کی شناخت کے تحفظ اور صارفین کو محفوظ ٹیلی کام سروسز کی فراہمی کے لیے پرعزم ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔

अब एक गाना मुझे याद आ गया है, अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है फुटबॉल का, स्पेन की टीम जब अपने मुल्क वापस पहुंची तो क्या जश्न हुए, ओए होए होए होए क्या जश्न हुए भैया। और उस जश्न में ये गाना इतना हिट हो गया है, ओए होए चेक करो दोस्तों, हो जाए फिर डांस।

0: FM 100's time check. It's 10 p.m. This program was brought to you by
1: Higher Kanaya No Frost IoT Refrigerator Twin Inverter Technology jisse mile maximum cooling aur energy saving No Frost No Worries
2: Shared Bundles वो भी डिस्काउंट पर सब्सक्राइब करना तो बनता है तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस V5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना
0: 100 FM
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस तो देर किस बात की हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना
0: 100 FM
4: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना
0: facebook.com/fm247365
5: FM 100
0: 31 saal FM 100 aapki awaaz Assalamu alaikum Pakistan
6: Active,
7: yummy,
6: adorable,
8: zabardast. I've got a crush on you.
9: Ready, pyaar?
10: To suno yaar.

क्या सॉन्ग था जबरदस्त भैया, वाह वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया भाई, गाने पसंद कर रहे हैं लोग। और मुनाहिल मैसेज कर रही 3636 पर और सॉन्ग से तारीफ कर रही है और कह रहे हैं भाई आपका शो ही लाजवाब होता है, बड़ी मेहरबानी। बिलावल कह रहे हैं सर सॉन्ग अच्छे हैं, बड़ी मेहरबानी बिलावल भाई, रिक्वेस्ट फॉर ओएसटी ऑफ मन मायल। अच्छा, रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि रिक्वेस्ट जो है ही नहीं। अच्छा जनाब, कह रही है कक समझ नहीं आ रहा मगर धमाल डाल दिया संजीदा जी, समझ के आपने थीसिस देने हैं, क्या कर रहे हैं आपने, इस गाने में समझने वाला कुछ था भी नहीं जिन्होंने गाया है ना, बस बम बम बस ये वाला चीज है और टिका के डांस है, तो कुछ गाने समझने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ एंजॉय करने के लिए होते हैं और ये उनमें से एक है। और वैसे कह नहीं सच मजा आ रहा है शो में, चले जनाब बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। अच्छा कुछ गाने होते हैं लोग इसलिए सुनते हैं, यार शायरी हो तो मैं डूब जाऊं उसके अंदर खो जाऊं, ये होते हैं बाज इस तरह के भी है तो, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये गाने एंजॉय करने हैं, उसमें शायरी नहीं होती बस उनको डांस चाहिए, म्यूजिक चाहिए बीट वाले, तो आज जरा माहौल फुल उस तरह का बना हुआ है। और मिसेस फारूक आ गई हैं, अस्सलाम वालेकुम कह रही, वालेकुम सलाम, दुआएं इतनी सारी दे दी हैं आपने, सॉरी मैसेज लेट करना करने पर। अच्छा जी सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं मिसेस फारूक, जब आपके पास टाइम हो सुकून के साथ इत्मीनान के साथ बस मैसेज कर दिया करें। अच्छा जनाब इसके अलावा और किसने मैसेज कर दिए हैं, रानी जी भी कुछ कह रही है, रानी कह रही है कि भाई जरूर बारिश होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जनाब, आपकी दुआएं चाहिए। अच्छा जी एक और ट्रैक की जानिब बढ़ते हैं, यार ये भी मुझे आजकल अच्छा लगने लग गया है, पहले तो मैं थोड़ा सा सुना था, आज जरा मैं आपको ज्यादा सुनाऊंगा ये गाना, चेक करें यार मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों के लिए।

0: best of 90s, 80s, and today's with Ayaz Ahmad.
1: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ मैसेजेस भी, कॉल्स भी। कुछ असगर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? खालिद निजामी के लिए कह रहे, मेरे बड़ा अच्छा दोस्त था। मेरा जनाब दोस्त इसी तरह प्यार मोहब्बत से चले जाते हैं। उनको दुआओं में याद रखिए असगर साहब, ये मैं बता दूं आपको। अच्छा जनाब, वाओ ये हुई ना बात, मेरे हाय मेरा दिल। चलें जनाब, गाने पसंद आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और गाने की शायरी भी संजीदा जी ने लिख दी है, क्या कहने जनाब, क्या कहने। अच्छा जी, खुद भी सुनाते हो सॉन्ग? खुद ही तो सुना रहा हूं मैं अपने हाथों से, ये गाने प्ले कर रहा हूं सुंदर जी आपके लिए। नेक्स्ट गाना भी आपके लिए। बिलावल कह रहे, रमजान पठान और एजाज मक्सी को सलाम। वालेकुम सलाम सर, इस सॉन्ग पर तो रियली परफॉर्मेंस परफॉर्म करना बनता है। वैसे बाकी यार गाना ऐसा था, दिल कर रहा था डांस करने का। अच्छा जनाब, इसके अलावा गुलरेज मैसेज कर रहे हैं, सर आपने पश्तो गाने का कहा था। अरे सरकार, पश्तो गाने का कहा तो था मैंने। चलिए मैं नेक्स्ट गाना वही प्ले करता हूँ, जरा क्यू शीट में से निकाल के। याद रखते हो यार बात, कोई जाने नहीं देते। बहुत शुक्रिया संजीदा गाने पसंद करने का, बहुत बहुत शुक्रिया। हाय मेरा दिल जो है, इनको गाना पसंद आ गया फुल टाइम। यदि गाना है भी अच्छा वैसे, नो डाउट। अच्छा जनाब, नौरीन कह रही है कि अयाज भाई, आज मेरी टीचर प्रोफेसर और पाकिस्तान की मशहूर शायरा मोहतरमा बिस्मिल साबरी की डेथ हो गई। अल्लाह पाक उन्हें अपने जवार रहमत में जगह, आमीन आमीन। बस जनाब, कुछ आ रहे हैं दुनिया में और कुछ जा रहे हैं, ये सिलसिला जो है ना दुनिया का चलता रहता है। लेकिन ये है, जाने वाले ने इतने काम अच्छे किए हैं कि उसके जाने पे वाकई लोगों को अफसोस होता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बहरहाल जनाब, सिलसिला जारी है। और पश्तो गाने की रिक्वेस्ट आ गई है, वो पश्तो गाना जो है रहीम शाह की आवाज में, और साथ में एक और भाई है सैफ खान, उसकी आवाज में भी हम ये गाना शामिल करते हैं। और वो है कैसे, मैसेज करेंगे KHI स्पेस, टेक्स्ट करेंगे और सेंड कर देंगे 3636 पर। चेक करो यार।

ऑल राइट जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100 और साथ ही साथ मैसेजेस 3636 पर। अच्छा जनाब, बहुत दूर से हमें सुन रही हैं, यानी यूके से सुन रही हैं नादिया मलिक। नादिया वेलकम, कैसी हो आप? ठीक हो, खैरियत से हो? वैसे उन्होंने बता दिया कि भाई फुल टाइम मजेदार माहौल हुआ हुआ यूके में और इतनी साफ सुथरी शाम हो रही है, मेरे ख्याल से इवनिंग बिल्कुल, और एंजॉय कर रही है, एफएम 100 लगा हुआ है, म्यूजिक भी एंजॉय कर रही है और साथ साथ बातें भी और अपने किसे भी सुना रही हुआ। क्या बात है, फर्स्ट तो गाना पसंद आया। और नादिया मलिक के लिए नेक्स्ट गाना उनको हम डेडिकेट करते हैं। अच्छा जनाब, साहब ज्यादा कह रहे हैं कि खालिद निजामानी जो है ब्लैक एंड व्हाइट जमाने का, कलर के भी थे यार, ऐसी बात नहीं है, और सीनियर, नो डाउट जनाब सीनियर आर्टिस्ट थे। अच्छा जनाब, बिलावल कह रहे हैं सर एक सराय की सॉन्ग हो जाए तो क्या बात है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ी सी देर में। आए सुंदर जी हंस रही है, सुंदर जी हंसते मुस्कुराते रहो बस, तुम ही हो गाने को उन्होंने लिखा, शानदार क्यू शीट है। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया संजीदा। अच्छा जी, और इसके अलावा रानी क्या कह रही हैं? रानी जी कह रही हैं कि सॉन्ग सुनने से पहले ही पसंद आ गई, क्योंकि अयाज ब्रो की पसंद ही ऐसी। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी रानी जी, बहुत शुक्रिया आपका। और रहीम शाह के गाने को पसंद किया भाई, मुश्किल, लैला जी ने भी। चले जनाब, गाने तो मैं आपको सुना रहा हूँ, एक लाइव परफॉर्मेंस हो जाए, क्या कहते हो? और नादिया मलिक आप ही को डेडिकेट कर देता हूँ, और वो है कैसे।

जनाब वेलकम बैक, सुन रहे FM 100। बहुत शुक्रिया यार, इतना अप्रिशिएट करते हैं आप, सॉन्ग्स एंजॉय कर रहे होते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। और मुस्कान हमें मैसेज कर रही है इतने प्यार से और इतने मोहब्बत के साथ, इतनी तारीफें कर दी आपने, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिलावल कह रहे हैं अल्लाह ताला नौरीन जी की टीचर की मगफरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, जाने जा फैंटास्टिक शो, गुड सॉन्ग वे जानी, हाय हाय मोहब्बत, बहुत बिजी। देखो मुझे मुश्किल हो रही है पढ़ने में, लेकिन बहरहाल आपको आपने पसंद किए गाने, प्रोग्राम पसंद कर रही है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। महा यूसुफ जाई लग रही है भाई आप। इसके अलावा अलीजा, अलीजा कह रही है अयाज भाई कैसे हैं आप। अलीजा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं तबीयत कैसी है, मजे में है, ठीक है। और संजीदा जी भी बहुत इंजॉय कर रही है गाने को, और खास तौर पर मिसेस फारूक लाइव परफॉर्मेंस पसंद आ गई भाई इनको, बहुत शुक्रिया, क्या बात है सानू नहर वाले पुल की, वाह वाह गाना तो नो डाउट, और फिर क्या खूबसूरत लाइव, तो फिर लाइव बात होती है ना। अच्छा नादिया मलिक ने भी कुछ भेजा है, अभी जरा मैं गाना लगाता हूँ फिर मैं सुनता हूँ कि क्या आपने बोला है। अच्छा जनाब, और नादिया मलिक को रानी हुसैन और पूरे पाकिस्तान का सलाम। लो जी नादिया मलिक आपके लिए सलाम आ गया संजीदा की तरफ से भी, कि भाई उन्होंने इतने दिनों बाद सुना तो कह रही बहुत अच्छा लग रहा है। रानी जी यूके में नहीं, रानी तो पाकिस्तान में है, कराची में है, नादिया मलिक यूके में, और वहां हमें सुन रही। सबसे मुझे अच्छी बात लगती है बाहर जो लोग बैठ के पाकिस्तान के चैनल सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, क्या बात, अच्छा अच्छा फील हो रहा होता है दूर बैठ के अपने मुल्क की चीजें। अच्छा जी किंग थैंक्स, इसलिए अच्छे लगते हैं प्लेलिस्ट में तो। अच्छा जनाब चले, मेरे ख्याल से प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, मुश्किल है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब और मिसेस फारूक आप खुद लाजवाब, खुद लाजवाब है, आप लोगों की वजह से शो इतना जबरदस्त होता है। अच्छा जनाब इसी बात पर पश्तो गाना भी मैंने सुना दिया, पंजाबी तो सुना ही रहा हूं, स्पेनिश भी सुना दिए। सिंधी हजरात जो सिंधी सुनने वाले वो कहेंगे यार अयाज भाई हमें याद नहीं कर रहे आप, ऐसा है कि नहीं है? तो मेरे जितने भी सिंधी भाई हैं उन तमाम दोस्तों के लिए आधा ये खूबसूरत सा ट्रैक है, बाबा मजा देता है गाना फुल टाइम। सिंधी मुझे समझ आती नहीं है लेकिन माहौल इसका बड़ा लाजवाब भाई।

0: right, जनाब, वेलकम बैक टू एफएम 100. और नादिया जी क्या बात है. और इसके अलावा नसरीन पटेल यानी मिसेस फारूक कहनी आला सॉन्ग चले जनाब, आपको पसंद आ रहा है, बड़ी मेहरबानी. और किसने वहां यूसुफ जई फिर कहीं ब्यूटीफुल सॉन्ग. और आप तो जाने जहां क्यूट टफ जॉब, बट आपको सुनकर हम हमेशा से टफ जॉब इनकी भाई मेरी नहीं है, कहीं नहीं टफ जॉब है, फिर भी आपको सुनकर अच्छा लग रहा है, हमेशा हैप्पी हो जाते हैं, सलामत रहें महा यूसुफ जई. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. अली से कहनी अयाज भाई, मैं बहुत पुरानी एंड पक्की लिस्टनर हूं, बट मैसेज फर्स्ट टाइम किया. अली जई या अलीजा, इतनी सुस्ती क्यों भाई, बस अब आपके मैसेज आने चाहिए, ठीक हो गया. और सबको वालेकुम सलाम कह दिया है नादिया मलिक ने, और मिसेस फारूक भी भाई नादिया आपको सलाम कह रही है. वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम सबकी जानिब से. अच्छा जनाब, मैसेज काफी सारे जमा हो गए. रानी जी कह रही है एंजॉय फुल सिंधी सॉन्ग. अच्छा जी, चलें जनाब, सिंधी गाने पसंद आ रहे हैं, बड़ी मेहरबानी. अब जरा एक मिनट की ब्रेक भी आ गई, उसको भी एंजॉय करें. मिलते हैं ब्रेक के बाद.
1: शेयर बंडल्स, वो भी डिस्काउंट पर. सब्सक्राइब करना तो बनता है, तो बस अभी जैस कैश ऐप से जैस B5 फैंटास्टिक बंडल लगाओ और पाओ 2,000 रुपए तक का बेहतरीन डिस्काउंट अपने फेवरेट बंडल्स पर. बड़े डिस्काउंट्स के लिए जैस कैश है ना.
2: 100 FM.
3: पैसे खर्च हो तो रिवॉर्ड तो बनता है. जैस कैश से सिर्फ 99 रुपए में रिवॉर्ड हब सब्सक्राइब करें, चैलेंजेस कंप्लीट करके अपना लेवल अपग्रेड करें और जीतें शानदार प्राइजेस. तो देर किस बात की, हर चैलेंज को एक्साइटिंग रिवॉर्ड में बदलने के लिए जैस कैश है ना.
2: 100 FM.
4: जैस कैश के साथ पाओ फिर से 1 करोड़ जीतने का शानदार मौका. अब हर महीने अपने जैस कैश अकाउंट में 15,000 रुपए या ज्यादा का बैलेंस मेंटेन करने पर 60 लकी विनर्स को मिलेगा 5,00,000 रुपए तक का इनाम, और साथ ही साथ मिलेगा 1 करोड़ का बम्पर प्राइज. बैलेंस मेंटेन करने पर करोड़ों के कैश प्राइजेस जीतने के लिए जैस कैश है ना.
5: facebook.com/fm247365
6: fm247365
7: active,
8: yummy,
9: adorable,
10: seven.
11: I've got a crush on you.
12: Ye pyaas to suno yaar,
13: ye pyaas to suno yaar.
14: I've got a crush on you.
0: जनाब वेलकम बैक, सुन रहे हैं FM 100 और साथ साथ प्यार से मोहब्बतों से मैसेज कर रहे हैं. और जनाब शिफ्ट चेंज हो गई है, गुफरान भाई तशरीफ ला चुके हैं. गुफरान भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज, कैसी तबीयत, उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे. अच्छा जनाब, बहुत सारे जो है ना मैसेजेस लोग मुझे वहां पर भी करते हैं, कहा मेरा फैन पेज है और फेसबुक के ऊपर, और वहां पर बड़े दिनों के बाद जो है ना मैंने जरा मेल देख रहा था, मैसेजेस आए हुए थे वो देख रहा था, तो एक मैसेज मुझे इतना अच्छा लगा मैंने सोचा वो शामिल कर लूं. पता नहीं वो सुन रहे होंगे कि नहीं सुन रहे होंगे. इकरामुल्ला खान मेरे खास से जॉब वॉब करते हैं और शाम में जब जाते हुए एफएम 100 लगाते हैं, तो उनके क्या फीलिंग्स हैं, क्या लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूं. कह रहे हैं, लव यू डियर, यू डोंट नो व्हाट इफेक्ट यू मेक इन लाइव्स ऑफ पीपल लाइक मी हु हैव अ लॉन्ग ड्राइव बैक होम फ्रॉम क्लिफ्टन टू बहरिया. After a long, hectic and tense day at work, your words provide energy for yet another track at life. चलें जनाब, इतने खूबसूरत अल्फाज आपने मेरे लिए कह दिए. बाकी में ऐसा है, अगर ऐसा है तो थैंक यू वेरी मच इकरामुल्ला भाई, बहुत शुक्रिया. और क्लिफ्टन से बहरिया रोज आना जाना करते हैं आप, इतनी दूर. लेकिन यार एक बात बताओ, जब से वो रोड बन गई, कौन सा वो बेनजीर वाला, तो सिलसिला काफी जरा मुनासिब हो गया, अब इतनी परेशानी नहीं, साफ सुथरा रोड तो मिल जाता है ना कम से कम, तो ये अच्छा होगा. क्राम भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, लव यू टू ब्रदर, बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट ट्रैक की जाने बढ़ते हैं, और वो है कैसे,

जना वेलकम बैक गयासुद्दीन वलमन, थैंक यू वेरी मच। कह रहे क्यूशन बहुत लाजवाब, और यही बात बिलावल भाई ने भी कर दी है, प्लेलिस्ट की तारीफ कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अली से कहनी है अयाज भाई अब रोज मैसेज करूंगी, ये अच्छी बात हो गई, गुड हो गया सीन। अच्छा जनाब, इसके अलावा संजीदा जी गाने पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और मिसेस फारूक क्या कहने आए, जबरदस्त थम्स अप आ गया भैया फुल टाइम। और इसके अलावा नादिया मलिक जो है ना, वो कह रही बिल्कुल सही बात की है, इकरामुल्ला भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, और नादिया आपका भी थैंक्स कि आप ऐसा समझ रही होती है, वैसे ये अच्छा लगा मुझे आपकी बात सुन के। और इसके अलावा एक फरमाइश इन्होंने भी की है कि वो मोहम्मद अली शेखी का और अलन फकीर का, वो आज के शो में नहीं, किसी नेक्स्ट शो में मैं जरूर प्ले कर दूंगा। आज के शो में जरा पंजाबी गाने ज्यादा हैं और पश्तो सिंधी गाने मैंने एक दो रख लिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो एतराज करते हैं, हर वक्त पंजाबी लगाते रहते, साडा भी कोई ख्याल करो। बहरा जनाब एक और पंजाबी खूबसूरत ट्रैक।

हाय हाय क्या बात है जनाब, जबरदस्त ट्रैक। और महा यूसुफ कह रही है आपके लिए अल्फाज हमेशा कम पड़ जाते हैं। वैसे आप क्या कहते हैं, मैं तो जो आप कह रही मैं वही कह रहा हूँ, ऐसी भी बात नहीं है, अल्फाज कम की कोई ऐसी बात नहीं है, आपकी मोहब्बत प्यार। और कह रही हंसी मजाक अच्छा लगता है हमें, चले कोई बात नहीं जनाब, मुझे भी अच्छा लगता है और साथ साथ ये ट्रैक्स भी अच्छे लगते हैं। हाय हाय थोड़ा सा अरबिक भी टच हो जाए, क्या ख्याल है महाजबीन। महाजबीन कह रही है आज तो सबकी पसंद लग रही है, खूबसूरत सॉन्ग्स। लीजिए जनाब ये ट्रैक आपको मैं डेडिकेट कर देता हूँ।

0: एडमिशन पर। मुनशियात को न कहीं जिंदगी को हाथ है, आइए इस खतरे के खिलाफ मुतहद। नशे से पाक नौजवान एक मजबूत मालियाती पाकिस्तान। AMF का साथ दें, मुस्तकबिल बचाएं, कौम को मजबूत करें।
1: ये पैगाम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया।
2: जनाब सुन रहे हैं FM 100 और टाइम जनाब स्पीड के साथ गुजरता चला जा रहा है। 10:47 हो गया टाइम और संजीदा जी कह रही है मैं डिनर भी नहीं कर पा रही। भाई बिल्कुल डिनर करें, हम बिल्कुल डिनर करें आराम से और साथ साथ सुनते रहें। भाई आराम से मुझे मैसेज कर सकती हैं, डिनर को डिले नहीं करना। और मिसेस फारूक बस हंसती मुस्कुराती है, मुझे बहुत क्यूट और प्यारी लगती है, बस ऐसे हंसती रहे मुस्कुराती रहे। इसके अलावा अरबिक टच बहुत आला, खुश रहे चले जनाब। अरबिक गाने मुझे लग रहा है सारे इस तरह के ट्रैक्स ना आपको बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू मिसेस फारूक। और रानी जी आपकी मोहब्बत और प्यार, और वो मुझे कह रही है कि भाई ये जो इकराम साहब ने अभी तारीफ की है ना वो बिल्कुल सही किए और दिल से किए। चले जनाब बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इकराम साहब का तो मैं कर ही रहा हूँ शुक्रिया, लेकिन आपका भी बहुत शुक्रिया। अरबिक म्यूजिक इनको भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और सुंदर कह रही है कि भाई गाना तो मैं नेक्स्ट ये वाला गाना आपको डेडिकेट करता हूँ, लेकिन ये लास्ट नहीं है। इसके अलावा एक दो गाने और भी हैं तो वो भी मैं आपको सुनाता हूँ, लेकिन ये ट्रैक जनाब सुंदर समय सुन रही हैं तो ये उनको डेडिकेट कर देते हैं। हाय हाय

हाय हाय क्या बात है जनाब, जबरदस्त ये ट्रैक। महायूसुफ़ज़ई कह रही है प्ले सॉन्ग, नाइस सॉन्ग अरबी। अच्छा जी, और वैसे एक सॉन्ग हमें हमारे नाम भी कर दो अपनी जानिब से, वैसे मर्जी है जानी। महायूसुफ़ज़ई ड्राइव और आपका कुछ लिखा मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल मैं बिल्कुल जनाब ये वाला गाना आपके लिए भैया, और चेक करें आप। जरीन नूर कह रही है नाइस सॉन्ग, नाइस सॉन्ग का बहुत शुक्रिया महायूसुफ़ आपके लिए।

0: है हाय हाय हाय,
1: मुल्तानी कंगन पवाते। मुल्तानी कंगन की भी क्या ही बात है, हालांकि मुल्तान के खाने टाइट है तो वो खाने चाहिए, लेकिन चलो ये कंगन महंगा सौदा है। चले जी। अच्छा जी, एक और ट्रैक था वो भी आज जरा प्ले होने से पूरा रह गया, थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको।

हुआ जनाब, इजाजत तो अब लेनी पड़ेगी भैया, क्योंकि टाइम कह रहा है भाई टाटा बाय बाय करें। मेरा जनाब बहुत शुक्रिया आप सब लोगों के प्यार का, मोहब्बतों का, और काफी सारे मैसेज। बिलावल भाई कहने सर गुड नाइट, गुड नाइट जनाब, गुड नाइट। और जनाब मैं भी आपसे कहूंगा गुड नाइट। और संजीदा जी इतनी सारी तारीफें करती हैं, अपना बहुत ख्याल रखें, काफी मेहनत लगी आज की, बिल्कुल जनाब मेहनत तो लगती है, लेकिन यह है कि प्यार होता है आप सब लोगों से तो वो फिर बनती ही चली जाती है क्यू शीट। और नादिया मलिक जी बहुत अच्छा लगा, आप जो है इतनी दूर से हमें मैसेज कर रही हैं और कह रही भाई मैं तो खाने वाले भी बना लेती हूँ, खाने खा भी लेती हूँ और एफएम भी सुनती रहती हूँ। भाई वाह वाह वाह वाह, क्या कहने आप, तो फिर आप है ना नादिया मलिक, तो ये कहना। इसके अलावा सुंदर जी आपका बहुत शुक्रिया, इतने प्यार से आप सुन रही हैं, मैसेजेस करती हैं। इसके अलावा रानी जी, मिसेस फारूक, यासुद्दीन बलबन और जनाब हमारे प्यारे से बिलावल भाई, सब लोगों का, सलीम मेमन भाई, सारे जो हैं इतने प्यार से मुझे मैसेज करते हैं, थैंक्स बहुत आपका। क्यूटो क्यूटो ढोला आए आए माज उसे बस कर दो। अच्छा जनाब, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में होगी आपसे मुलाकात। अयाज अहमद को दें इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज, रब रखा, खुदा पामान। आए हाय क्या बात है।

0: Like us on facebook.com/FM247365.
1: Raheem Yarhan, Multan, Avatar.

0: और क्या था भाई, मैं आज तुम्हारे लिए कुछ खास करने वाला हूँ।
1: बीवी कहती है, सच में क्या करोगे?
0: श्योर, और आज मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा।
1: बीवी कहती है, पहले तो बताओ गलती क्या हुई?
0: अरे गलती वलती कोई नहीं हुई बीवी।
1: नहीं नहीं नहीं, बिला वजह तारीफ, ये तो शक की बात है।
0: अरे मैं सच बोल रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी हो बीवी।
1: अच्छा, और
0: शौहर तुम घर बहुत अच्छे से संभालती हो।
1: और
0: शौहर तुम्हारे हाथ का खाना सबसे अच्छा है।
1: और
0: बस आखिरी वाली बात सारी तारीफ को खराब कर देगी।
1: अरे मैं तो मजाक कर रहा था बीवी। पता है तुम्हारी सबसे अच्छी आदत क्या है
0: शोहर?
1: क्या बीवी? तुम हर बार अपनी गलती खुद बता देते हो।
0: शोहर मैंने कौन सी गलती बताई?
1: बीवी गुस्सा, गुस्सा प्यारा है बोलकर।
0: शोहर मतलब तो तारीफ करने आया था और फंस गया। बीवी शादीशुदा जिंदगी में यही तो बात है। शोहर कहता है, अब तो मैं चुप ही रहूंगा, इसी में खैर है।
1: बीवी कहती, ये पहली बार कहा है आपने।
2: अली भाई,
3: क्या
2: एक जोक सुनाना चाहता हूँ?
3: नहीं नहीं यार,
2: अगर बोले तो।
4: facebook.com/fm247365 fm247365
0: خواتین حضرات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ہمارے ساتھ بہت اچھے آرٹسٹ بیٹھے ہیں، سنگر ہیں، ہر زبان میں گاتے ہیں، رشین میں بھی گاتے ہیں، اٹالین میں بھی گاتے ہیں، پنجابی تو خیر ہے ہی، اور اردو میں بھی گاتے ہیں۔ تو ابھی وہ گانے لائے ہیں، تمہیں کیسے بتا دوں تم میری منزل ہو، یہ گائیں گے ہمارے ساتھ، اور وہ کریاکی میں گائیں گے، آپ لوگ سنیں گے، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ جی ندیم صاحب، آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا، یو آر موسٹ ویلکم۔ اور یہ ہے آپ کا گانا۔

0: वेरी नाइस वेरी नाइस। करियोकी में गाना बड़ा मुश्किल होता है और ये अच्छी बात है कि आप उसको मुक मुका गए। तो आगे भी आपके बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं, अभी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग करेंगे आपके। कितना अरसा हो गया आपको इटली में रहते हुए?
1: इटली मैं तकरीबन 27 साल रहा हूँ।
0: तो 27 साल मतलब क्या लेके गए थे वहाँ?
1: अपनी ख्वाहिशें, अपने ख्वाब।
0: मतलब ये कि जैसा कि लोग जो बड़ी ख्वाहिशें करते हैं घर बार बेच बाच के चले जाते हैं।
1: नहीं नहीं, घर बार मैंने नहीं बेचा था। मैं वहाँ पे बिजनेस वीजा भी गया था।
0: गुड।
1: पहले मैं रशिया गया था, वहां से फिर मुझे फ्रांस का वीजा मिल गया था, और उसके बाद वहां जब मैं पहुंचा तो वहां फिर इमिग्रेशन अप्लाई की मैंने, वो मुझे फिर रेजिडेंस परमिट मिल गया इटली का।
0: गुड गुड गुड गुड।
1: तो बाकी एक बच्चा था हमारा ऑलरेडी और एक अल्लाह पाक ने।
0: तो ये शादी अपने रशिया से कर ली?
1: रशिया में। इटालियन लड़की रशिया में ही मिल गई थी मुझे।
0: ओए क्या देखी मिला आपको, कैसी मिल गई?
1: बस जब अल्लाह मेहरबान होता है।
0: और तो हम पहलवान होते हैं।
1: इसमें तो मुझे एक जोक याद आ गया, बड़ा अच्छा सच। एक आदमी जा रहा था अपनी खूबसूरत बीवी के साथ, तो किसी ने कहा हूर के बाजू में लंगूर। तो उस आदमी ने पकड़ के उसकी खूब पिटाई की जिसने बोला था ना। लोगों ने बोला इसको क्यों मार रहा है? कह रहा है मेरी बीवी को लंगूर कह रहा था।
0: वाकई वो लंगूर था। अच्छा आप गाना चलाए?
1: चला।
0: नेक्स्ट कौन सा चलाऊं आप?
1: कभी तो तुमको।
0: अच्छा सामाईन और नाजरीन, ये करियोकी है, इसमें म्यूजिक तो रिकॉर्डेड है मगर आवाज यहाँ लाइव गा रही है, मतलब ये लाइव है म्यूजिक, मतलब लाइव सिंगिंग है।

0: Nice.
1: Thank you.
0: What a great जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त आप ये बताएं ये ये हमारी भाभी जो है ये आपको कहाँ मिली और कैसे मिली, बड़ा तजस्सुस है ना।
1: ये मेरी लेदर जैकेट की वहाँ पे दुकान थी ताशकंद के
0: अंदर। आपकी दुकान थी, आप काम कर रहे थे?
1: नहीं नहीं, मेरी दुकान थी उसमें ये खरीदारी के लिए आई थी।
0: मत छुपाते हो, बहुत मजे हैं।
1: वहाँ नुकसान भी बहुत हुआ, वहाँ से जीरो होकर यूरोप गया था।
0: सरमायेदार आखिरकार सरमायेदार है।
1: बहरहाल वो आई थी दुकान में तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी वो, लेकिन हिम्मत नहीं हुई मेरी बात करने की।
0: मजा आया।
1: और उनको बाद में पता चला कि उनको भी मैं भी बहुत अच्छा लगा था, और वो भी सोच रही किस तरह बात शुरू करें।
0: यार ये बड़ी अजीब।
1: हाँ, तो जैसे ही वो दुकान से बाहर निकली तो मैं भी उनके पीछे पीछे, लड़के को मैंने बोला नजर रखना जरा, मैं बाहर निकला। अब वो बाहर खड़ी,
0: पहले दिन ही ऐसा हो गया,
1: वो बाहर दुकान के बाहर खड़ी थी, बारिश हो रही थी।
0: अच्छा।
1: हल्की हल्की बारिश हो रही थी।
0: ओए ओए।
1: तो मैंने उनसे कहा, बातचीत तो क्योंकि दुकान में हो गई थी सामान दिखाते वक्त, तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, अगर आप मुझे करीबी मेट्रो तक छोड़ दें, वहां सबवे चलती है, ट्रेन चलती है, तो मैंने कहा बारिश हो रही है, अगर आप काइंडली मुझे, आपके पास अम्ब्रेला है तो मुझे थोड़ा सा वहां तक छोड़ दें, एक अम्ब्रेला में हम दोनों चले जाएंगे।
0: देखा यार,
1: तो वो फौरन राजी हो गई।
0: फौरन राजी भी हो गई है।
1: हाँ, क्योंकि वो भी चाह रही थी, बता रही थी बाद में बात करने,
0: ये ऊपर वाले को मंजूर था।
1: बिल्कुल। तो जाहिर है तीन बच्चे उन्होंने देने थे अल्लाह पाक ने।
0: हाँ बिल्कुल, उन्होंने इस दुनिया में आना
1: था। तो रास्ते में वो फूल की दुकान पड़ी तो मैंने फूल एक खरीदा।
0: बस यही है सबसे बड़ा काम जो आपने किया।
1: मैंने उनको फूल गिफ्ट किए और फिर वो मेट्रो तक गए और थोड़ी थोड़ी जाहिर बातचीत हुई रास्ते में। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अगर हो सके तो आप कल आ सकती हैं तो दोबारा मैं मिलना चाहूंगा, चाय वाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 7 बजे शाम को आ जाऊंगी।
0: वाह भाई वाह, क्या बात। और क्या बड़े सूट पहना होगा, खुशबू वगैरह लगा लूंगे और दोबारा से फ्लावर बुके खरीदा होगा।
1: ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि जिस दिन मुलाकात हुई है 7वें दिन हमारी शादी हो गई। 7वें दिन शादी हो गई। चट मंगनी पड़ गया
0: भाई। यार आप है ही कोई मामा।
1: ये हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको।
0: चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, जबरदस्त। अभी इसी मजे में हम एक और एक और एक और एक और।
1: आपने वो नहीं चलाया कभी तो तुमको याद है।
0: आइए ले।
1: नहीं आपने, नहीं ये तो वही चला गया, तुम्हें कैसे बताऊं। नहीं तो कभी तो ये अब सही।
0: ये जैसा कि आपको पता है नदीम शबनम भाई ये पिक्चराइज हुआ है।

0: FM 100's time check. It's 12 midnight.
1: अरे यार, time check निकल गया था तकरीबन और हम

0: जब अच्छे गाने में ये असर होता है कि इंसान उसमें गुम हो जाता है, और हम शायद टाइम चेक से भी कुछ आगे पीछे हो गए थे, वेरी वेरी सॉरी। और ये ऐसा रोमांटिक जो एक मरहला होता है वो हर किसी की लाइफ में गुजरा हुआ होता जरूर है, कुछ भी हो, कोई भी हो, किसी भी तरह, किसी भी इतनी इंटेंसिटी शायद न हो, मगर किसी देखिए 7 दिन में सब कुछ हो गया। एक आदमी जो पाकिस्तान से गया था वो रशियन में नया नया, और उन्होंने लेदर की दुकान खोली थी, और वहां मतलब एक रशियन लेडी आ गई, और बस 7 दिन के बाद शादी। अच्छा अच्छा, अब ये बता रहे कि उनके वालिद जो थे वो इटालियन थे और
1: अम्मी रशियन,
0: वालिदा रशियन थी। खैर, हमारे लिए तो इंसान इंसान है, अच्छा इंसान होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये गाने का सिलसिला चलने के बाद, चूंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं रहा है दूसरे गानों के लिए, अगला गाना
1: दिल दिल पाकिस्तान।
0: हाँ बिल्कुल, 14 अगस्त तो आने वाला है, मगर उससे पहले पहले आप प्रैक्टिस भी कर लेंगे अपना, क्योंकि आप भी एक बहुत बड़े कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले रहे हैं इसी गाने के साथ।

0: अच्छा उसके उसके नेवल बदर में एक सॉन्ग बड़ा अच्छा है, ये तो दिल दिल पाकिस्तान तो 14 अगस्त पे ही अच्छा लगेगा। अभी फिलहाल इन्होंने एक सॉन्ग चुना है जो पाकिस्तानी फिल्म का गाना है। फिल्म का नाम पता है आपको? फिल्म का नाम दोराहा। डायरेक्टर का नाम पता है? नहीं पता। हीरोइन का हीरो हीरो का नाम पता है? वहीद मुराद। हीरोइन
1: तो अकेला है, ये
0: सोलो है। अच्छा सोलो है। यूं खो गए तेरे प्यार में, अच्छा यूं खो गए तेरे प्यार में, अब होश में आना मुश्किल था।

0: और आप उर्दू में गा रहे होंगे, वो रशियन में गा रही होगी, ऐसा कुछ था। चलें, बहुत अच्छी बात है। और आज आज अच्छा जनाब, एक एक और सिंगर है, उसने अजीब सा गाना बना के भेजा है, और उसने बोला कि मेरा नाम लेना नहीं और गाने को चला देना, अब मैं वो चलाने वाला हूँ।
1: चला दे।

0: वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब भाई कहाँ खो गए आप, भरी अपनी यादों में खो गए शायद, है ना?
1: लाइन मिस हो गई।
0: हाँ वेरी गुड, ये तो बाग बाग में भी घूमे होंगे, गाने वाने भी गाए होंगे, है ना?

חבל לשם בפות לסיוע. רובי לשם. ये वीडियो मैं देख सकता हूं।

0: एक और गाना बहुत जबरदस्त गाना है, वो थोड़ा सा मिस हो गया मेरे ख्याल में, दोबारा से ट्राई करें। वो गाने तुम्हें कैसे बता दूं, वो जब रूट जाती हैं तो और पता क्या, ख्वातीन को बहुत पसंद है कि आप झूठ बोल रहे हैं, उनको पता है। इतनी तारीफ की और बाद में कहा कि एक दिन क्या बात है, क्या बात है, अरे मैं तो मजाक ही कर रहा था। तो उधर वह बहुत गुस्सा हो जाते, बहुत ओए ओए। हाँ जी,
1: शौहर ने अपनी बीवी को बोला तुम बहुत खूबसूरत हो, के लिए कहती है छोड़िए ना, कहता है तुम्हारी जुल्फें बहुत खूबसूरत है, कहती है छोड़िए ना, कहती कहता है तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है, कहती है छोड़िए ना, कहता है छोड़ तो रहा हूँ और कितनी छोड़ू।
0: सही है, सही है, सही है, सही है, आप इस गाने में छोड़े।

0: turn it up. Nobody can control me.
1: बहुत बेस हो रहा
0: है,
1: बहुत
0: बेस
1: हो रहा है। आपने इस गाने की मुझे प्रैक्टिस नहीं, आपने सुना नहीं गाड़ी से। ये गाना गलत चल रहा है। लेकिन यार रशियन गाना मसा ऊंचे सुरों में गाया लड़की बोला नोवा ने, या तो स्केल नीचे कर लेते पहले, फिर गाते इसको।
2: नहीं सही है, काम का बेसरा गा रहे, कोई मजा नहीं थी बेसरा गाने।
1: कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूज हो गया।
2: जी जनाब, आपने देखा ये मैं कोशिश करता हूँ मेरे जो गेस्ट आए इस शो में, सिर्फ वो कहते हैं मॉडल्स हैं, एक्टर्स हैं, ये यू हैं तू हैं, नहीं, उनका जरूरी है गाना, चाहे वो एक्टर हो एक्ट्रेसेस हो, अगर गाना गाएंगे तो इस शो में आएंगे और गाना भी अच्छा गाएंगे। तो मेरा उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे मेरे नवीद साहब। अच्छा, आपको कोई इटालियन आता है गाना? अरे यार
1: ट्रैक नहीं है,
2: नेक्स्ट टाइम आ लाएंगे आप याद रखिए, एक महीने के बाद आ सकते हैं दोबारा, यू कैन बी रिपीटेड इन वन मंथ। चले आजकल तो ईरान ईरान है हर तरफ, तो यह ईरानी सॉन्ग है क्योंकि मेरी अपनी मादरी जबान है, इसलिए

0: non-stop listing pleasure.
1: 24 hours.
2: This is FM 100, Pakistan. Today's hit music.
3: Awesome.
4: It's not just music, it's an addiction. FM 100.
5: कुछ अजीब ही मजा आ रहा है आज. कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान प्लैंड आता है और शो जो है ना वो मजेदार नहीं होता. कभी कभी बगैर प्लानिंग के आते एकदम से अचानक बैठ जाते हैं और गाने से गाने पे गाना, गुफ्तगू से गुफ्तगू, टॉपिक पे टॉपिक चलता रहता है और अच्छा लगता रहता है.

भाई आज तो शफकत अमानत ने बल्कि कहते ना छा गए हैं। अब देखे ना टाइम के साथ साथ आवाज का टोन्स भी चेंज हो रहे हैं। मैंने भी जरा सी कोशिश की थी जो मैंने आज गाना सुनाया थोड़ी सी आवाज को चेंज करना, उसमें कोई मजाक नहीं। आपकी आवाज आपकी आवाज है, आप कितना भी उसमें ट्यून डालें, इसमें कुछ भी इक्वलाइजेशन करें, एकर रिवर्ब वगैरह डालें, इफेक्ट्स डालें, आपकी आवाज अगर अच्छा बनाने के लिए आपने इसमें किया है तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच।

अच्छा जनाब, ये है ओपो शराज। इनके गाने बहुत अच्छे होते हैं, यूनिक होते हैं, और बहुत कम उन्होंने गाया है ज्यादा। और मेरे ख्याल में ऐसे ऐसे लोग जो होते हैं, जो जेनियस होते हैं, वो बार बार गाना नहीं रिलीज करते, वो एक गाने बहुत टाइम लगाते हैं और मुकम्मल जब उसके अंदर तखलीकी उसमें क्रिएटिविटी आ चुकी होती है जब उसको रिलीज करते हैं। तो यही हाल शिराज उपर का है और इनका सॉन्ग है बहका रहा।

0: this is your music.
1: And, of course, very, this is a very entertaining show, they said. Bada achha laga, cut bahut achha tha, nice song. Phir ye likha hai koi, Arabic song was very good. Koi blawal hai, Asha ji. अब तो खैर टाइम हो चला है मेरे जाने का, मगर नवीद साहब को ये बहुत जोरों से एक जोक आ रहा है, जल्दी से एक जोक सुनाए ताकि हम यहां से फिर घर की तरफ रवाना हो जाएं।
2: एक उस्ताद क्लास में बच्चों को बता रहा था कि देखो जिंदगी में उड़ना चाहिए, अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ना चाहिए, और अगर दौड़ नहीं सकते तो कम से कम रेंगना चाहिए। तो एक बच्चा खड़ा होकर बोलता है, सर वो तो सब ठीक है लेकिन जाना कहाँ है?
1: बस, और दूसरे वाला जो बेगम का
2: बेगम वाला ये था कि एक खातून थी, वो बहुत लंबा लंबा फोन करती थी, दो दो घंटे का फोन करती थी। तो एक दिन वो दो घंटे डेढ़ घंटे की बजाय उन्होंने आधे घंटे में फोन रख दिया। तो उनके शौहर ने हैरान होकर पूछा, बात सुनो, ये तुमने आज इतनी जल्दी कॉल रख दी, थोड़ी बात की, क्या वजह थी? तो बेगम बोली कि आज कोई रॉन्ग नंबर आ गया था इसलिए मैंने आधे घंटे ही बात की खाली।

0: एक और है बड़े मजे
1: ये पर्शियन सॉन्ग आपको लगा के जा रहा हूँ और आप लोगों से बड़ी खुशी हुई आप लोग मेरा प्रोग्राम सुनते हैं. थैंक यू सो वेरी मच और तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और ये दुआ करता हूँ कि आप लोग खुश रहें और खुश रखने की कोशिश करें सब लोगों को और अच्छा सोचें और देखें जिंदगी में बुरी सोच की बहुत सारी चीजें होती हैं उनको छोड़ें अच्छी सोच अच्छी चीज सोचें. आपकी तरफ हमारी तरफ से आपको खुदा हाफिज अन शब खैर. इसी तरह नबी साहब भी खुदा हाफिज कह रहे हैं. बोले बोले
2: जी मेरी तरफ से भी थैंक यू बहुत बहुत आप लोगों ने सुना हमें एंजॉय किया कंपनी हमारी रईस साहब के साथ. इंशाल्लाह एक महीने बाद फिर मुलाकात होगी. थैंक यू वेरी मच. अस्सलाम वालेकुम.

0: FM 100's time check. It's 1 a.m.
1: This is your music.

मिल दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर, नजरसानी करो जरा।

वेलकम बैक आएंगे सुनियो हुसना दी सरकार। अबरारुल हक का नया गाना आपने सुना और उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। तो जनाब बढ़ते हैं सवाल की जानिब। मुझे वो गाना याद आ रहा है।

0: क्या गाना है यार, जिन्होंने सुना होगा उनको तो याद होगा, जिन्होंने नहीं सुना होगा उनको नहीं याद होगा। ख्वाब के हवाले से, ख्वाब हर इंसान देखता है और एक ख्वाब ऐसा है जो कि इंसान जागते में देखता है और एक ख्वाब ऐसा है जो इंसान सोते में देखता है। जागे वो जो ख्वाब होते हैं, जागते में जो ख्वाब देखता है इंसान, वो होते हैं हमारी जिंदगी से रिलेटेड। ये ख्वाब है जी, मेरा ख्वाब है कि मैं मर्सिडीज गाड़ी खरीदूं, नए मॉडल की, घर खरीदूं, पैसा कमाऊं बहुत सारा। ख्वाब होते हैं, मेरी दुल्हन आए
1: बहुत प्यारी सी, खूबसूरत, हसीन, गोरी, चिट्टी, लंबे बाल,
0: बड़ी बड़ी आंखें, झील जैसी, आय हाय हाय हाय, गुलाब की पनखड़ियों की तरह, मतलब तारीफें इस तरह की। और ये ख्वाब है, और मिलता क्या है, जो नसीब में होता है। और एक ख्वाब वो है जो कि इंसान सोते में देखता है,
2: अबे मैं गिर गया था ख्वाब, अबे ख्वाब ने किसी ने मुझे मार दिया, ये हो गया, मैं उड़ रहा था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था।
0: वो ख्वाब जो जागते में पूरे नहीं होते, वो सोते में पूरे इंसान कर लेता है।
1: महबूब से मुलाकात भी हो जाती है, ऐसा ना भी फुल टाइम।
0: तो खैर, अगर ख्वाब में सांप देखा जाए तो ये किस चीज की अलामत हो सकता है, ये आपको पता है? और ख्वाबों की ताबीर होती है, ये भी आपको पता है, 100% होती है। और सवाल जैसे कि मैंने आपसे पूछा है, उसके साथ साथ एक सवाल और जोड़ रहा हूं, वो इस्लामिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड होगा। ख्वाब में सांप देखना किस चीज की अलामत है, ये तो मेरा सवाल है। और इसके साथ जुड़ा हुआ सवाल ये है कि वो कौन से नबी थे जिनको अल्लाह ताला ने ये मोजज़ा अता फरमाया था कि वो ख्वाबों की ताबीर बता देते, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। तो ये बताना है आपने 3636 पर, और देखते हैं जनाब हमारे साथ कौन कौन है। सबसे पहले अय्यूब आफरीदी आ गए हैं, कह रहे जाने जिगर या हबीबी, जीते रहो, खुश रहो, सबुल हिना मुश्क मानूर और तमाम सुनने वालों को प्यार भरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और हमारे यूसुफ भाई पापू उससे भी आ गए हैं और तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है उन्होंने, एफएम 100 की तमाम फैमिली को भी सलाम कहा है, खुसूसी तौर पर हमारी प्यारी सी आंटी को, चाची को, रूसा को, गुलबानों को, तमाम डॉक्टर्स को, इमरान भाई, खिताब लाला, गुफरान भाई और मेरे वालिद मोहतरम को सलाम कहा, बहुत बहुत शुक्रिया जना, जीते रहे, मुस्कुराते रहे। और आगे बढ़ते हैं जनाब, अनीस साहब आगे हैं, कह रहे हैं भाई सलाम, और तमाम लिसनर्स और गुफरान भाई को भी हमारा सलाम कह दीजिए। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अनीस साहब आप कैसे हैं, जरा अपने बारे में भी तो कुछ बताएं आप,
1: कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी?
0: और मैसेजेस की जाने भी जा रहा हूं, जरा सबर कीजिए, मैं वो स्क्रॉल करके देख रहा हूं। बहुत सारे लोग आए हैं भाई, बहुत सारे लोग आए हैं, चलें इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। इसी बात पर हम आपको लेकर चलते हैं एक और बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब, एलो फड़ो।

वेलकम बैक कहेंगे सुनियो आप सबको। हैं जी ते हैं जी, मैसेजेस आपके आ रहे हैं 3636 पर। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है उनको बता दें जनाब, मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एने सुने। सवाल मैंने ये फ्लोट किया है कि ख्वाब में अगर सांप को देखा जाए तो ये किस चीज की अलामत समझा जाता है, और इसके साथ साथ हमारे वो कौन से नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये मोजज़ा अता फरमाया था कि वो ख्वाबों की ताबीर बता देते थे बिल्कुल दुरुस्त, यानी कि समझ रहे हैं ना। हमारे नौमान भाई बल्दिया से आ गए हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है आपकी, ओके ठीक। और सवाल का बताया है, नंबर एक का जवाब है दुश्मन की अलामत है, और नंबर टू आपने बिल्कुल दुरुस्त बता दिया है। वो नाम नहीं बताऊंगा मैं भी कि जो जिस नबी का नाम है जिक्र है वो आपने बिल्कुल दुरुस्त बता दिया है, ओके टेक। और कौन है जनाब, अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब। अच्छा जी, कल आपने मेरा प्रोग्राम में शामिल नहीं किया, मैसेज कल आया ही नहीं, अभी आया तो शामिल कर रहे हैं। और सॉन्ग की फरमाइश है समी शेख, अयूब आफरीदी, खताब गुल्लाला, नसीम कुरैशी, इमरान रियाज, और आपके वाजिबुल एहतराम मोहतरम वालिद मोहतरम की खिदमत एकदस में अकीदत भरा सलाम पेश किया। अलीमुद्दीन यूसुफ जई साहब एबीरिया कराची। लाला कहते हैं कि सबा गुल को हिना गुल को एक मैशअप सॉन्ग और GBN एंजॉय करेंगी उसको, ओके जी, उनको डेडिकेट कर देंगे। आपका शो बहुत अच्छा लगता है, माय नेम इज नईम खान फ्रॉम नाजमाबाद। नईम भाई कैसे हैं आप भाई, हमारे चचा साथ भाई हैं नईम, वो नईम अख्तर हैं। तो नईम भाई आप भी हमारे भाई हैं, आप नाजमाबाद से सुनते हैं, वो तो सुनता भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और सलाम के बाद कहा है जनाब, कैसे हैं आप, तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है, आप की खामोश लिसनर हूं, मुझे भी याद रखा करें। और इस एल्सा वानिया 5G न्यू कराची, एल्सा वानिया हम आपको बिल्कुल याद रखेंगे, हमने अलीजा को भी याद रखा हुआ, अक्सा को भी याद रखा हो, हमारे नए यूसुफ भाई को भी याद रखा हो, तो अब इल्सा को भी याद रखेंगे, इल्सा वानिया को। मैंने सही प्रोनाउंस किया ना आपका नाम वानिया, सिर्फ वानिया ही कह देंगे, इल्सा हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, लेकिन खैर जी आप लोग आ रहे हैं, नए नए लिसनर्स आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। मगर एक चीज का अजीब सा भी लग रहा है, गम भी हो रहा है कि हमारे बहुत ही प्यारे प्यारे पुराने पुराने लिसनर्स जो है वो गायब हुए हैं। समी कहाँ गायब है ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको मैं कान से पकड़कर खींच के ला सकता हूँ, मेरा छोटा भाई है। अच्छा भाई, गफ्फार साहब आ गए हैं, सलाम के बाद कह रहे हैं सर सबको सलाम, और हबीबी के साथ आपका इंतखाब मेरा जुनून था। सूखे दरख्त में कोई जान आ जाए वो तेरा ही सरूर था। कोई एक सॉन्ग सुना दे जिस दिन वक्त मिले, अभी वक्त मिल रहा है जनाब, अभी सुनाएंगे। हाय हाय, बिल्कुल सुनाएंगे भाई, गफार भाई ये तो मेरा पसंदीदा गाना है। और बलूची ट्रैक की उन्होंने, गफार भाई ने फरमाइश की है, और उसके साथ उन्होंने दूसरे सवाल का जो इस्लामिक जनरल नॉलेज का सवाल था उसका जवाब इन्होंने दुरुस्त दिया, मगर ये नहीं बताया कि ख्वाब में कभी सांप नजर आया है या हकीकत में ही सांप आस्तीनों में घूम रहे हैं, ये बताइएगा। अनीस भाई कह रहे हैं, अने भाई ख्वाब में सांप देखना दुश्मन की अलामत समझा जाता है, और दुरुस्त है जनाब, मैंने कह दिया दुरुस्त है, लेकिन और भी है कुछ। कादिर बख्श बलोच भाई भी आ गए हैं, अने भाई आपको और सब सुनने वालों को सलाम, कैसे हैं, मिजाज शरीफ हैं आपके, अल्हम्दुलिल्लाह कादिर बख्श भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हमारे आसिफ भाई कैसे हैं आप ये बताइए। और ख्वाब में सांप देखना का मतलब है कि आपका दुश्मन है, साहबजादा साहब आपने दूसरे का बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, और पहले का जवाब हमने पढ़ लिया, सबके ही पढ़ ले, दूसरे का नहीं पढ़ ले, अब वो दुरुस्त है जवाब पहले का दुश्मनी के हवाले से या गलत है
ये हम आपको बताएंगे कुछ ही देर में, यानी कि समझ रहे हैं ना आप, इसी बात पर आपको लेकर जाएंगे एक और बहुत ही प्यारे से ट्रैक की जानिब। और ये ट्रैक जो है ये थोड़ा सा फरंगी गाना है, यानी कि अंग्रेजी गाना है, और ये स्पेशली डेडिकेट करूंगा मैं जनाब। अब पता नहीं सुन रही हैं या नहीं सुन रही हमारी प्यारी सी बहना अरूसा, और अरूसा क्योंकि इंग्लिश गाने बड़े पसंद और उसका फेवरेट ट्रैक है ये, और वो सुने ना सुने हम गाहे बगाहे उनको याद करते रहेंगे। उसके साथ साथ जनाब हमारी प्यारी सी बहन नसरीन पटेल जो हैं उनको भी इंग्लिश ट्रैक बड़े पसंद है, अगर वो सुन रही होंगी तो उनको भी सुनाएंगे। वैसे वो खामोशी से सुन रही हैं, आजकल कुछ ज्यादा ही खामोशी है। और जितने भी इंग्लिश सॉन्ग लवर हैं उन सबके लिए एलो फड़ो।

वेलकम बैक आएंगे सुनियो आप सबको दिल में तुम हाय हाय बनी का सॉन्ग थैंक्स जबरदस्त गाना ये कह रही है फरहीन और आगे बढ़ते हैं जना आपके मैसेज के जॉन है लाला कह रहे हैं कि जिगर ये मुज़ा जो था ओके बिल्कुल आपने सही बताया लाला अयुब आफरीदी हैं और अनीस भाई कह रहे हैं कि भाई एक सॉन्ग सुना दे अनीस भाई आपने पहली दफा फरमाइश की है तो आपकी फरमाइश हम जरूर पूरी करेंगे हैं जी और मैं असल में ये लिख लूं ताकि मैं भूलूं नहीं अनीस भाई ये ना कहे यार नदीम भाई आपने कहा तो चलाया नहीं कोई बात नहीं और मेरी प्यारी सी शहजादी बहना जरीन नूर भी आ गई हैं और कह रही हैं सलाम कैसे हैं वाले साहब कैसे हैं संजू को और तमाम सुनने वालों को सलाम आपकी संजू हमारी संजू गायब है फिलहाल और आगे बढ़ते हैं लाला कहते हैं कि जागते में मैंने बहुत ख्वाब देखे हैं अल्लाह पाक ने पूरे किए हैं अच्छा माशाल्लाह बस एक ख्वाब पूरा नहीं हुआ ओए होए होए वो ख्वाब जो अधूरा रह गया वो ख्वाब सुहाना रूठ गया मुझे बोल याद नहीं है बड़ा जबरदस्त सा गाना है मैडम नूरजहान का तो अच्छा है ख्वाब आपका पूरा नहीं हुआ तो वो ख्वाब क्यों नहीं पूरा हुआ जरा इस पर रोशनी डालिए कुछ टॉर्च से और एने भाई आज के दिन के हिसाब से सूटेबल होगा प्लीज रिक्वेस्ट पूरी कीजिएगा बिल्कुल करेंगे जनाब हमारा डोंट वरी साहबजादा कह रहे हैं कि भाईजान जो गई उनको जाने दो सिनेमे का पर्दा वही रहता है स्टार्स बदल जाते हैं जो गया है या गई साहबजादा क्या कहना चाहते हैं आप ये अपने बारे में बोल रहे हैं ये सबके बारे में बोल रहे हैं ये बताइएगा मेरे को अच्छा भाई फरीन कह रही है कि बनी भाई का एक ही सॉन्ग हिट हुआ ना ही जी हो जाऊंगा दीवाना यू देखो ना मुझे तेरी अशोकदाएं ये भी बहुत हिट गाना था बनी भाई का और बनी साहब तो बनी साहब है चाहे एक गाना भी हिट हुआ आप ये देखिए कि कितने साल पुराना गाना है मगर अभी तक यानी कि समझ रही है ना इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में तो भाई लाला कौन सा ख्वाब पूरा नहीं हुआ ये बताइएगा और आपने जिंदगी में कोई ख्वाब देखा है अगर देखा है तो शेयर कीजिए क्या पता हम सीढ़ी बन जाए या आपको ऐसा मशवरा देते हैं कि आप वो रस्सी पकड़ लें जिससे आपका वो ख्वाब जो है वो पूरा हो जाए यानी कि समझ रहे हैं ना आप भाई समी कहाँ हो तुम इतने मतलब शादी के पैसे तो नहीं जमा कर रहे या फिर कोई ऐसा सिलसिला कि भाभी ने कह दिया कि रेडियो मत सुनना नदीम भाई को मत सुनना कोई ना कोई सीन है भाई मुझे लग रहा है भाई चलो जी इसी बात पर हम अयुब लाला की फरमाइश को पूरा करते हैं उन्होंने कहा है कि सबागुल हिनागुल को एक ट्रैक डेडिकेट कीजिए और ये ट्रैक डेडिकेट करेंगे तो जीबीएन को अच्छा लगेगा तो जनाब ट्रैक आपके लिए एलो पढ़ो

0: वेलकम बैक, और उम्मीद करता हूं कि ये ट्रैक आपको पसंद आया होगा। जनाब, जागते के ख्वाब और सोते के ख्वाब दोनों के बारे में बात हो रही है, मैसेजेस आपके आ रहे हैं। मेरी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ जो हैं वो इसला क्या नाम है फैसलाबाद से आ गई हैं और कह रही हैं, प्यारे भैया जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? मैं दरअसल सो गई थी, अभी आंख खुली है और आपके शो में शिरकत करने आ गई हूं। हम याद कर रहे थे आपको, तमाम हसीन तरीन समातों को मेरी तरफ से सलाम और ढेरों सलामती की दुआएं। अच्छा, जवाब इनकी जानिब से हमेशा अच्छे ही आते हैं। ख्वाब में सांप देखना आम ताबीर के मुताबिक अक्सर दुश्मनी, हसद करने वाले शख्स या किसी आजमाइश की अलामत समझा जाता है। ताहम ताबीर ख्वाब देखने वाले की हालत और ख्वाब की तफसीलात पर भी मुनसर है, इसलिए हर ख्वाब की ताबीर एक जैसी नहीं होती। आस्तीन का सांप उस शख्स को कहा जाता है जो बजाहिर दोस्त या खैरख्वाह है बने, लेकिन मौका मिलने पर धोखा दे या नुकसान पहुंचाए। हाय आस्तीन के सांप हर एक के पास मौजूद। और भी कोई सवाल है नदीम भाई? बिल्कुल, एक और सवाल है और मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास उसका जवाब मौजूद होगा। सवाल दूसरा ये इस्लामिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड है कि वो हमारे कौन से नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने ख्वाब की ताबीर का मौजजा दिया हुआ था। वो ख्वाब की ताबीर जो है वो बिल्कुल दुरुस्त बताते थे अल्लाह की रजा से। मेरी भी रिक्वेस्ट प्ले कर दें नदीम भाई,
1: और जरूर प्ले कीजिएगा जी, प्ले हो जाएगा, डोंट वरी डोंट वरी।
0: नवान भाई कह रहे हैं कि नदीम भाई, मैंने कुछ दिन पहले कहा मैं अपने भाई को बहुत परेशान देखा ख्वाब में, मेरा ख्याल लिखा होगा कहान में। कहान में क्या मतलब है भाई, कान में या कहान में? बहुत परेशान देखा, मैंने कॉल किया भाई को और खैरियत दरियाफ्त की और कहान भी सुनाया। ये कहान क्या है यार? तो उन ख्वाब मेरा ख्याल लिखना चाह रहे हैं, तो ख्वाब भी सुनाया तो उसने कहा आपने ख्वाब बहुत लेट देखा है, मैं 3 माह पहले बहुत परेशान था लेकिन अब सब सेट है। हाँ, कहने लगे कि मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए नहीं बताया। इसको कहते हैं दिल को दिल से राह होती है, नहीं इसको क्या कहते हैं मैं भी आपको इस हवाले से बताऊंगा। लुबे लुबाब ये कि इनका मैसेज पढ़ते हुए तो थोड़ा सा खैर टाइम लग गया, लेकिन देखना था कि ना मैसेज में है क्या। तो असल में मैसेज में ये था कि ख्वाब में उन्होंने अपने भाई को बड़ा परेशान देखा और जब कॉल की तो पता चला कि वाकई में हकीकत में वो बहुत परेशान थे। तो इसको कहते हैं कि दिल को दिल से राह होती है, ये तो है ही, दिल का ताल्लुक इससे 100% है। मगर इसके हवाले से थोड़ी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ मैसेजेस पढ़ने दें। जिगर, मैंने जागते में जो ख्वाब देखे हैं अल्लाह ने सब पूरे किए हैं, मगर एक ख्वाब अधूरा रहा है, वो भी GBN का। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ख्वाब अधूरा क्यों रहा? खैर जी, दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपके सारे ख्वाब जो है वो पूरे कर दे, और क्या कह सकते हैं। हैं जी, जी हैं जी। मोहम्मद काशिफ सोल्जर बाजार से मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। काशिफ भाई कैसे हैं आप? हम ठीक ठाक हैं। बहुत खुशी हुई काशिफ साहब आपका मैसेज पढ़कर, फर्स्ट टाइम मेरा ख्याल है आपने भी मैसेज किया है काशिफ साहब ने। अरे इसको तो सही कर दें, बिल्कुल कर दिया। और जनाब आगे बढ़ते हैं, कहां से शुरू करूं? आपकी मोहब्बतें नदीम भाई, आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए और वजू करके सोना चाहिए। दुनिया का कोई भी बुरी चीज ख्वाब में नहीं आ सकती और ना ही किसी का बुरा हो सकता है। गफार भाई कह रहे हैं, देखिए भाई आयतुल कुर्सी तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए, पढ़ के सोना चाहिए, और ये बात भी आपकी सही है, हसार भी मान लेना चाहिए ताकि कोई भी चौड़ैल पास ना आए। लेकिन शादीशुदा लोग अगर आयतुल कुर्सी पढ़कर हसार भी मान लें तो कोई ना कोई चुड़ैल जरूर बासा दिए। अच्छा जी सलाम भाई, पंजाबी सॉन्ग मिस अहमद। अच्छा मिस अहमद ने जो है वो हमें रिक्वेस्ट कर दी है। खांसी हो रही है भाई।

और आगे बढ़ते हैं जनाब। सलाम भाई। अच्छा ये तो मिस अहमद का हो गया। मिस अहमद आपका आपकी फरमाइश हमने नोट कर ली है, जरूर चलाएंगे। कादिर बश कह रहे हैं भाई पाकिस्तान की टीम ये टेस्ट आसानी से जीत सकती थी, दो दिन बाकी थे, पता नहीं प्लेयर्स को किस बात की जल्दी थी। देखिए भाई बॉल भी बड़ी मूव हो रही थी कादिर बख्श, और बहुत जबरदस्त बॉलिंग करवाई वेस्टइंडीज के बॉलर्स ने, ये ना कहें, लेकिन आपकी ये जो जल्दी वाली बात है ना, ये दुरुस्त है काफी हद तक, लेकिन उसके साथ साथ बैट्समैन में पोटेंशियल भी तो हो ना, कैलिबर भी तो हो। अब आपकी जो टीम है वो चार मैच आ रही है, सारे खिलाड़ी कहते होंगे हम बहुत अच्छे हैं, कमी कहीं ना कहीं तो है ना, सामने वाले भी जो है वो चने बेचने तो नहीं आए ना, वो भी क्रिकेट खेलते हैं, उनको भी खेल आता है, तो जीत उसी की होती है जो बेहतर हो। तो हमारे प्लेयर्स जो है स्पेशली बैट्समैन बेहतर नहीं है, मां सिवाय छन के। अच्छा सा सॉन्ग संजू के नाम कल भी नहीं लगाया था, जरीन नूर हमने चलाया था, संजू को डेडिकेट भी किया था या नहीं किया था, ऐसा कैसा हो सकता है संजू? हाँ आपका नाम नहीं लिया था हमने, आज हम आपका नाम लेकर डेडिकेट करेंगे। डोंट वरी वरी प्यारी सी बहना, वरी वरी सही वरी याद आ गया। तो प्यारी सी बहना जरीन नूर आपका नाम लेकर हम डेडिकेट करेंगे, बहुत अच्छा लगता है ये सॉन्ग, वाओ गुड थिंग्स हमारे लाला ने कहा है, और मैं भी बहुत ख्वाब देखती हूँ, खुली आंखों से पूरे भी होते हैं, शुक्र है माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो मुस्कुराती रहो जरीन नूर। मेरी प्यारी सी बहन हमारी तो दुआ है कि हम बहने जो भी ख्वाब देखें अल्लाह ताला वो पूरे करे, लेकिन जायज कुछ ख्वाहिशात इंसान की ऐसी होती है ना, तो जिनको पूरा करने के लिए घर के मर्द हजरात जो है वो बेतहाशा मेहनत कर रहे होते हैं, तो इसको नेगेटिव नहीं लीजिएगा। नदीम भाई जो लोग गए जाने दो, फुटबॉल वर्ल्ड कप किस मुल्क ने जीता? आजकल ना टीवी है ना एंड्रॉइड। साहिबजादा कह रहे हैं, अच्छा भाई आप इसीलिए जाने दे रहे हैं सब तमाम चीजों को, भाई आजकल एंड्रॉइड भी नहीं है आपके पास और टीवी भी नहीं है, तो इस तरह तो होता है साहिबजादा, लेकिन रेडियो तो है ना आपके पास, हम तो है ना आपके साथ, हम आपको बताते रहेंगे सब कुछ। और थैंक्स कहा है सबक उलने लाला आपका। इसी बात पर एक बहुत ही प्यारे से गाने की जानिब जा रहे हैं जनाब, स्ट्रैक की हमें रिक्वेस्ट की थी हमारे प्यारे से भाई गफ्फार भाई ने, और ये बलोची ट्रैक है, तो गफ्फार भाई बलोची ट्रैक आपके लिए, जिस गाने की आपने फरमाइश की एलो फड़ो। ये म्यूजिक भी बंद कर देते हैं और गाना अभी चलने वाला है, चल पड़ा

वेलकम बैक आएंगे सुनियों आप सबको जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है उनको बता दें जनाब कि मेरा नाम है नदीम अख्तर और प्यार से आप लोग मुझे कहते हो एन ए सोने हो और जनाब स्लीपलेस नाइट में मैं हूं आपके साथ आपका और मेरा साथ है तीन बजे तक और तीन बजे तक ये हल्ला गुल्ला जारी हो सारी है। इसमें शामिल होने का बहुत ही आसान सा तरीका है अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाइए के चाय लिखिए स्पेस दीजिए अपना प्यारा सा नाम प्यारा सा मैसेज और उसको सेंड कर दीजिए 36361। सवाल मैंने आपसे पूछा है कि ख्वाब में सांप देखना किस चीज की अलामत है और इसके जवाब दुश्मनी से ही ज्यादातर आ रहे हैं कि दुश्मनी दुश्मनी दुश्मनी और दूसरा इसके साथ ही रिलेटेड सवाल इस्लामिक जनरल नॉलेज से रिलेटेड किया है कि हमारे वो कौन से नबी हैं कि अल्लाह ताला ने जिनको ये मौजज़ा अता फरमाया था कि वो ख्वाबों की ताबीर जो है वो बताते थे। तो दोनों के जवाब आ रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैसेज के जाने बढ़ते हैं आपके और नौरीन मैना क्या कह रही हैं नौरीन मैना हाँ बिल्कुल सही कहा आपने जनाब जनरल नॉलेज इस्लामिक जनरल नॉलेज के हवाले से इन्होंने दुरुस्त जवाब दिया है। संजू को रोज मेरे कहे बगैर अच्छा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दिया करें नदीम भाई ठीक है बिल्कुल अब आज आपने जो ट्रैक कहा है वो हम जरूर डेडिकेट कर देंगे उनको और एक ट्रैक जरीन नूर की जानिब से होगा और एक ट्रैक हम भी कर देंगे और दोस्तो जी हैं जी ते हैं जी। इस तरह मेरे वालिद ने अपनी भतीजी के मुतालिक बुरा ख्वाब देखा जब वालिद ने कॉल किया तो पता चला अभी अभी रूह परवास कर गई है। तो जनाब इसको क्या कहते हैं इसको कहते हैं इल्हाम। जब आपको किसी से मोहब्बत हो सच्ची मोहब्बत हो मुखलिस मोहब्बत हो बेलौस मोहब्बत हो किसी से चाहे वो आपका रिश्तेदार है चाहे आपका सगा खून है चाहे आपका दोस्त है चाहे आपका महबूब है लेकिन ये चीज बहुत मतलब ये बड़ा जरूरी है कि जो आपकी उनसे मोहब्बत है उसमें मुखलसी उसमें प्यार जो है वो खालिस नपातुला किस्म का बेलौस जिसको कहते हैं कि बगैर किसी मतलब की जो एक मोहब्बत होती है ना वो बड़ी जरूरी है। तो जब इस तरह से किसी को मोहब्बत किसी से आपको हो प्यार हो और वो आपसे कहीं दूर हो चाहे किसी दूसरे मुल्क में दूसरे शहर में और आपको इस तरह का इल्हाम हो यानी कि ख्वाब की सूरत में तो इसको इल्हाम कहते हैं। ये सच्ची जिसको कहते हैं कि बात होती है और ये इल्हाम हो जाता है अल्लाह ताला की तरफ से आपको कि यार दिल जो है ना वो जोर जोर से धड़कता है और ऐसा लगता है कि यार जैसे आपके वालिद साहब को भतीजी जो है वो परेशान नजर आई तो उनका दिल जो है फौरन उसकी तरफ गया और कॉल की और आपको अपने भाई परेशान नजर आए। ये अलग बात है कि सिग्नल प्रॉब्लम था जब आप भाई के मुतालिक ख्वाब देख रहे थे तो आपको बाद में पता चला लेकिन ऐसा होता है। इससे भी जल्द एक मैं भी आपको बताता हूं इल्हाम के हवाले से। मेरे एक बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं सलमान सालिक मैं पहले भी उनका जिक्र कर चुका हूं। वो पहले इंग्लैंड में रहते थे और उसके बाद अब वो अमेरिका में रहते हैं लेकिन जब वो इंग्लैंड में रहते थे तो मैं सोते में अचानक उठ गया था और जैसे नहीं वो फिल्मों में देखते हैं हम नहीं ऐसा नहीं हो सकता तो इस तरह का मैंने उसको बहुत परेशान देखा था और बाकायदा मैंने बहुत अच्छा इत्तफाक ऐसा है कि मेरी जो है उनसे उनके जितने भी नंबर्स थे कोई नंबर नहीं मिल रहा कि उनसे दोस्तों से रابطे कायम करने की कोशिश कर रहा हूं और दो तीन दिन मैं बहुत परेशान था और मेरा हर वक्त दिल और दिमाग जो है उसकी जानिब जो है ना जा रहा था उसकी जानिब जा रहा था। और खैर इन शॉर्ट ये कि एक हफ्ते के बाद पता चला कि वो वाकई में बहुत उसी लम्हे जिस लम्हे में हड़बड़ाकर उठा था उसी लम्हे उनके साथ एक जो है वो एक्सीडेंट हो गया था। तो ये होता है इल्हाम होता है क्योंकि मेरी उनसे जो दोस्ती है वो बड़ी मैं समझता हूं कि खालिस प्योर और बेलौस मोहब्बत है। ये सिर्फ मेरी जानिब से नहीं है उनकी जानिब से भी है। तो ये होता है जनाब इस तरह तो होता है
اس طرح کے کاموں میں. نعمان بھائی دیکھیں آپ نے جو بات کی تھی نا, آپ نے ایک اور قصہ بھی بتا دیا, ایک قصہ میں نے بتا دیا اور اس پر چرچا بھی ہو گئی لمبی چوڑی. اچھا جی, سنجو نہیں ہے آج, ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے. بالکل ہو رہی ہے جناب, ہمیں بھی کمی محسوس ہو رہی ہے. سوال کا جواب ہے, بالکل صحیح جواب دیا آپ نے, اسلامک جنرل نالج سے ریلیٹڈ, اور آپ کو اس کے قصے بھی بتاؤں گا. دبر سات جمبری پوڑی پوڑی. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے میسجز کی جانب. لالا کہتے ہیں کہ جگر میں نے بھی آستین کا سانپ 6 سال پالا ہے اور اللہ پاک کے فضل و کرم تھا کہ میری جان چھٹ گئی. پتا نہیں سانپ مر گیا ہے یا پتا نہیں کہاں ہے, غائب ہے, میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں. سانپ کو بھی ڈھونڈ رہے ہیں ہم, کیا بات ہے جناب. اچھا جی, اچھا لگتا ہے یہ سانگ دبر سات جمبری, سمجھ نہیں آتا مگر اچھا لگتا ہے. سبگل کہہ رہی ہیں, سبگل سیم ٹو سیم بھائی بہن, مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا مگر بہت اچھا لگتا ہے. فٹ بال ورلڈ کپ کا بتانا بھول گئے صاحبزادہ صاحب کہہ رہے ہیں. فٹ بال ورلڈ کپ کے حوالے سے دیکھیں, پہلی دفعہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ فیفا کا ورلڈ کپ جو ہے وہ کافی کانٹروورسی میں رہا ہے. خصوصی طور پر جو میری بھی فیوریٹ ٹیم تھی برازیل کے حوالے سے میں بات کروں گا, برازیل کہہ رہا ہوں یار, ارجنٹینا جو کہ رنر اپ رہے تھے اور پچھلا ورلڈ کپ وہ ون تھے, اپنے ٹائٹل کا دفاع کر رہے تھے. تو جو امپائرنگ کا معیار جو ہے وہ متنازع رہا تھا اس ورلڈ کپ میں, اور اس حوالے سے جو ہے نہ صرف ہمارے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بڑی چرچا رہی ہے. لیکن اسپین نے جو ہے وہ ورلڈ کپ اپنے میرٹ پر جیتا ہے, نو ڈاؤٹ, اور ایسا لگ رہا تھا کہ اسپین کو جیتنا بہت سے ملکوں کو اچھا بھی نہیں لگا, مگر اسپین پھر بھی جیتا. لیکن ارجنٹینا کے جتنے بھی میچز ہیں اسپیشلی طور پر جو ٹاپ 16 کے میچ اور کوارٹر فائنل کا جو میچ تھا ان کا, یا شاید کوارٹر فائنل, پری کوارٹر فائنل اور کوارٹر فائنل اور پھر سیمی فائنل, میرا خیال ہے کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل, آخری جو دو میچ تھے وہ بہت زیادہ متنازع رہے تھے. جو مصر کے ساتھ ایک میچ تھا, یعنی کہ سمجھ رہے ہیں نا آپ, تو یہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. کیونکہ جو سب سے زیادہ بات صاحبزادہ سمجھ میں نہیں آئی نا میرے, اسپیشلی میں فٹ بال لور ہوں, آپ کی ہنسی سمجھ رہا ہوں, وہ یہ نہیں سمجھ میں آئی کہ ایک ٹیم جو ہے غفران بھائی وہ جیت رہی ہے تقریباً 3

वेलकम बैक कहेंगे सुने हो आप सबको बोलो हैदर कलंदर अली अली ब्यूटीफुल ट्रैक एंड आई होप कि आप सबको पसंद आया होगा। मैसेजेस कर रहे हैं आपके एचआई स्पेस आपका नाम आपका मैसेज उसको सेंड कर रहे हैं आप 3636 पर। और अब मैं मैसेंजर्स पर जो लोग मुझे मैसेजेस करते हैं मेरे प्यारे प्यारे से लिसनर्स उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मैसेंजर पर मैसेज ना करें फौरन से बेशतर फेसबुक पर आ जाए। मैं लाइव आ चुका हूँ सुने यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ समझ रहे हैं भाई समझ रहे हैं। तो मैं इस वक्त फेसबुक पर लाइव हूँ तो लिहाजा आप यहाँ पर आकर मुझे मैसेज करेंगे तो वो मेरे सामने अपीयर हो जाएंगे और आप मुझे देख भी सकेंगे और सुन भी सकेंगे। सवाल मैं रिपीट कर चुका हूँ फेसबुक पर तो मैं बता चुका हूँ कि भाई सवाल ये है कि ख्वाब में सांप देखना किस चीज की अलामत है और इसके साथ साथ हमारे वो कौन से नबी हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा अता फरमाया था कि वो ख्वाबों की ताबीर बताते थे। और अब आपके मैसेजेस की जान बढ़ते हैं। गुल साहब नजर आ रहे हैं मुझे थोड़े थोड़े से हैं जी ते हैं जी लाला आप अपना मैसेज इधर फेंक दें। और आस्तीन के सांप के हवाले से जो है बड़ी तफसील के साथ जो है मेरी प्यारी सी बहन नौरीन तौसीफ ने बताया था वो चर्चा हम करेंगे तकरीबन आधे घंटे के बाद। और नौरीन तौसीफ से भी रिक्वेस्ट है कि आ जाएं फेसबुक पर हैं जी ते हैं जी और आपकी फरमाइश भी अभी चलने वाली है उन्होंने एक फरमाइश की हुई है। और जिंदगी के मैसेज के बाद ओके जनाब सवागुल ने फिर मैसेज कर दिया वही वाला जावेद अख्तर साहब के ट्रैक का यानी कि हमारे वालिद मोहतरम के यानी कि समझ रहे हैं ना आप। नदीम भाई अर्जेंटाइन ब्राजील पुर्तगाल स्पेन ये एक ही कौम है दे ऑल आर स्पेनिश पीपल। साहबजादा साहब स्पेनिश नहीं है ये साउथ अमेरिका के ममालिक हैं जिसमें अर्जेंटीना भी है पुर्तगाल भी है और उसके साथ साथ यूरोगॉय पैरागोए ये तमाम जो है ना ये वहां के ब्राजील ब्राजील जो है सबसे बड़ा मुल्क है साउथ अमेरिका का आपको ये भी बता दूं मैं। और जो स्पेन है यानी कि समझ रहे हैं ना आप। हाँ जुबानें इनकी जो है वो मिलती हैं बहुत पुर्तगाली स्पेनिश और अर्जेंटाइन की ब्राजील की जो इनकी जो जुबान है वो मिलती जुलती है यानी कि समझ रहे हैं ना आप। मैसेज क्यों नहीं अपेयर हो रहे यहां पर कोई ना कोई सिलसिला है जनाब आ गया जनाब मैसेज अपेयर होना शुरू हो गए हैं। लाला तो आ गए हैं और कह रहे हैं कि अय्यूब आफरीदी हेयर जीते रहो बहुत बहुत शुक्रिया लाला। इसी बात पर हम चलते हैं एक अदद ट्रैक की जानिब जो कि फैसलाबाद से हमें फरमाइश आई थी हमारी प्यारी सी बहना नौरीन तौसीफ की और उन्होंने कहा था ये ट्रैक डेडिकेट कर दीजिएगा संजू को तो उनकी जानिब से संजू एलो फड़ो

वेलकम बैक कहेंगे। जरीन मेरी बहन कह रही है अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, जीती रहो मेरी प्यारी जी बहना। लाला कहते हैं कि शेख साहब फरमाते हैं कि वफा जुर्म मन जाती है अगर किसी से बेवफा करो तो। खैर जिस तरह तो होता है। हमारे तारिक रोड से अब्बास भाई भी आ गए हैं और कह रहे हैं बिल्कुल सवाल का जवाब उन्होंने दुरुस्त दिया है, इस्लामिक जनरल नॉलेज वाला जो है। और हमारे प्यारे से गुल तेरा रंग चुरा लाए गुलजारों से हमीद गुल साहब भी आ चुके हैं। गुल साहब आपने जो मैसेज मुझे किया था वो अब आप दोबारा कीजिए ताकि वो मैं पढ़ूं। यहां पर स्क्रॉलिंग का मसला है, बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है कैमरा। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बेहतरीन शो जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाला। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, क्यों था फिरते और सरयू की शाम में। भाई जिन जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए हुए थे वो दोबारा मुझे मैसेज करें ताकि मैं वो दोबारा पढ़ सकूं, ऑन एयर पढ़ सकूं, यानी कि समझ रहे ना आप। तो नौरीन तौसीफ की फरमाइश हमने पूरी की है और अब जो है जनाब और भी फरमाइशें पूरी करनी है हमने। अनीस भाई की भी फरमाइश है, अनीस भाई, और अनीस भाई आपकी फरमाइश तो मैंने भी निकाली भी नहीं, अभी हम उसके ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाते हैं। थैंक्स कहा है मेरी प्यारी बहन नौरीन ने। सलाम मेरे पाकिस्तान, आई एम नदीम नियाजी। नदीम नियाजी साहब कैसे हैं आप? सलाम मेरे पाकिस्तान, एफएम 100 पाकिस्तान। अच्छा नदीम नियाजी साहब भी आ गया, या नदीम अख्तर साहब। गुल साहब कह रहे हैं हाँ अस्सलाम वालेकुम, सलामत रहें हमेशा। और कहते हैं कि पहले जो दूसरा जवाब था, सवाल था इस्लामिक जनरल नॉलेज का, उसका दुरुस्त जवाब दिया है। और पहले सवाल का जवाब दिया है कि ख्वाब में सांस देने की ताबीर अमूमन छुपे हुए दुश्मन, ये जहन में रखिए छुपे हुए दुश्मन का है इन्होंने, या नुकसान से की जाती है। सांप का देखना हसद और खुफिया साजिश या खतरे की अलामत भी हो सकता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। और अब्बास भाई आपने भी दुरुस्त जवाब दिया है, वफा जुर्म बन जाती है अगर किसी से बेवफा से करो तो। वाह वाह वाह वाह, यानी कि किसी बेवफा से वफा मत करो, यही मतलब हुआ ना जनाब। हम समझ गए जनाब, बिल्कुल समझ गए। समी कहां हो शहजादे तुम? आज दिमाग बहुत घूम रही है, बहुत घूम रही है भाई। समी साहब गायब हुए हुए हैं। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। कुछ ही देर के बाद हम आपको इन सवालों के जवाब भी बताएंगे। इल्हाम के बारे में भी मैंने बात की थी क्योंकि नौमान के मैसेजेस आ रहे थे और नौमान ने जिस तरह अपने भाई साहब के हवाले से कहा कि ख्वाब में जो भाई साहब को परेशान देखा और उनसे पूछा तो वो वाकई में परेशान रहे, मगर वो अल्हम्दुलिल्लाह वो परेशानी खत्म हो चुकी थी उस वक्त। इसी तरह भतीजी के हवाले से वालिद साहब ने ख्वाब देखा था, तो वो ख्वाब तो है लेकिन ये इल्हाम भी कहलाता है। हाय ताहिरा मसूद आ गई हैं भाई, बहुत अरसे के बाद इनका भी मैसेज आया, करेंगे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ताहिरा, कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगी। और हर सवाल का जवाब नहीं होता, ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होता। वाह वाह वाह वाह वाह, हर सवाल का जवाब नहीं होता, ख्वाब सिर्फ ख्वाब नहीं होता। गुल साहब क्या बात है, आपके दो मिसरों में जान होती है। समी भाई आराम फरमा रहे हैं, आप बताएं नदीम भाई कैसे हैं? अब्बास भाई आपको कैसे पता है कि वो आराम फरमा रहे हैं, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। भाई नदीम नियाजी साहब आपका मैसेज एक दफा दो दफा आ चुका है, हुक्म कीजिए क्या कहना चाहते हैं आप, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। भाई अभी हम एक और गाने की जानिब जा रहे हैं और ये ट्रैक जो है मिस अहमद जो है उनको डेडिकेट करेंगे, या उनकी जानिब से आप सबको डेडिकेट करेंगे। उसकी वजह ये है कि उन्होंने कहा जनाब कि हमें पंजाबी गाना सुना दीजिए जरा आप, तो हमने कहा हम आपको पंजाबी गाना सुना देते हैं। पंजाबी गाने और भी बड़े अच्छे अच्छे से मेरे पास आए हुए हैं। फिल्मी गानों पर मबनी जब मेरा प्रोग्राम होता है तो उसमें भी मैंने दो पंजाबी गाने चलाए थे,

गाने देख रहा हूँ मैं और सोच रहा हूँ कौन सा चलाऊं। मेरा ख्याल है मलका तरन्नुम नूर जहान का ही चला देते हैं, और बड़ा अच्छा सा रोमांटिक सा ट्रैक है और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। तो ये ट्रैक जनाब मिस अहमद की जानिब से आप सबके लिए, एल्लो फड़ो।

0: वेलकम बैक कहेंगे आया मौसम तेरे मेरे प्यार दा। काशिफ भाई आ गए हैं जनाब और सलाम कह रहे हैं तमाम सुनने वालों को भी। और अब्बास भाई कह रहे हैं हम तो पंजाब से घूमकर भी आ गए हैं, क्या बात है। एफएम 100 उल्टा क्यों लिखा हुआ आ रहा है? क्योंकि कैमरा उल्टा है भैया, इसलिए आपको उल्टा लिखा हुआ नजर आ रहा है। फ्रंट कैमरा यूज कर रहा हूं ना मैं, अगर मैं बैक कैमरा यूज करूंगा तो बिल्कुल सीधा सीधा आएगा, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। और अंसारी कह रहा हूं मैं, ये तो काशिफ साहब है। और अब जिन लोगों ने मुझे पहले मैसेज किए थे वो मुझे दोबारा मैसेज करें, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। अच्छा जनाब, एक और बड़ा जबरदस्त, मैंने थोड़ी देर पहले जो है तानिया हसन जी का नाम लिया था और तानिया जी हमें सुन रही हैं और उन्होंने एक बहुत जबरदस्त सा मैसेज किया है। और वो मैसेज ये है जनाब कि उन्होंने भी ये ख्वाब देखा, जागते में ख्वाब देखा और वो ख्वाब हुआ पूरा माशाल्लाह से। ख्वाब में देखा जनाब उम्रे की अदायगी और माशाल्लाह से अभी उम्रे की अदायगी अदा करने के बाद आई हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपके साथ साथ जो जो भी लोग गए वहां पर उन सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला ये ख्वाब हर इंसान का पूरा करे, यानी कि हमारा भी पूरा करे। और जो जो भी मुसलमान ये ख्वाब देखते हैं, देखता तो ये ख्वाब हर कोई है मगर पूरा किस्मत से होता है। तो तानिया हसन जी आप यकीन मानिए कि दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको स्पेशल एक ट्रैक जो है वो मैं अपनी जानिब से डेडिकेट करूंगा अभी कुछ ही देर में, यानी कि समझ रहे हैं ना आप। यहां होना चाहिए यहां तक, मतलब और ऊपर नहीं आए, ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, तो गुफरान भाई आए हुए हैं हमारे सामने। गुफरान भाई मैं भी लाइव ही आया हूँ, इत्तफाक है, समझ रहे ना। इतने सीरियस क्यों हुए हैं, क्या हुआ, खाना नहीं खाया आपने? मैसेज पढ़ूं, सॉन्ग चलाऊं? कह रहे सॉन्ग चलाओ भाई, अच्छा सा सॉन्ग चलाओ। वो भेज दिया आपने? हाँ
1: चेक कर लिएगा।
0: अच्छा कौन सा
1: देख लिएगा?
0: देखू उनको, देख के पता चल जाएगा। तो आप इसलिए आए थे? अरे यार ये मोहब्बत है आपकी, थैंक यू वेरी मच यार।
1: सर ये मोहब्बत में बाद में बताऊंगा क्यों की
0: है। अच्छा मैं बता,
1: वरना वहां से भी हो सकती
0: है। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, और भी आपके मैसेजेस हैं। अयाज के शो से पता चला सीनियर आर्टिस्ट खालिद निजामी साहब इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाया। अगर ये खबर दुरुस्त है साहबजादा साहब, और खालिद निजामी साहब पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े आर्टिस्ट, ड्रामा आर्टिस्ट रहे हैं, क्या बात है, एक्टर थे वो। और खालिद निजामी साहब के हवाले से यार मैं पहले खबर की तस्दीक कर लूं उसके बाद। गुफरान भाई सामने आए, वो इस वक्त बड़े मसरूफ हैं, उनका सामने आना बड़ा मुश्किल है। गुल साहब कह रहे हैं तानिया साहिबा को उम्रे की मुबारक, बड़ी सादत की बात है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी अदा किए हुए हैं तो मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त उनकी क्या कैफियत होगी। और आप यकीन मानिए कि उस जगह से जब कोई आ जाता है तो दिल चाहता है कि वहां से वापस ना आए, वहीं पर रहे। तो तानिया जी आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारक, और अब तो मुबारकबाद का सिलसिला जो है जारी और सारी रहेगा। और मैं अपनी तरफ से आपको एक बहुत जबरदस्त सा ट्रैक डेडिकेट करूंगा और उम्मीद करूंगा कि इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगा वो। और अब जनाब अनीस साहब की डेडिकेशन रह गई है और एक हमारी जिंदगी की, तो वो हम दोनों पूरी करेंगे। हाकिम अली साहब कह रहे हैं जियो नदीम भाई, और जी तुसी भी जियो, सदा जियो, सलामत रहो, यानी ये समझ रहे हैं ना आप। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। चले इसी बात पर चलते हैं एक और ट्रैक की जानिब, और ये ट्रैक हम डेडिकेट कर रहे हैं जनाब इरफान मेमन को, मेमन कजन्स को, सायरा मेमन को, सलीम मेमन को, जो कि आज गायब हैं, और हमारे सलीम मेमन खारा दर वाले भी गायब हैं, तो इन दोनों को भी डेडिकेट करेंगे।
2: हमारी सायरा बहन आपको देखो हम याद करते रहते हैं, और उसके साथ साथ तीनों सीमाओं को भी जो है ये डेडिकेट कर देंगे। ब्यूटीफुल ट्रैक, हियर वी गो।

वेलकम बैक आएंगे जनाब। और मैं अभी देख रहा था कि वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है और गुल साहब ने कहा है क्या बात है, है आरजू के खुली आंख से मदीना देखूं यूं तसव्वुर में तो रोज आता जाता हूं। क्या बात है गुल साहब, ये है मोहब्बत मक्का और मदीना। तानिया जी माहौल ही चेंज कर दिया आपने। हैं जी ते हैं जी। और अबाज भाई कह रहे हैं ओके जी। हाकिम साहब कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम सुनकर बहुत सुकून मिलता है। सच में नदीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और फरीन साहबा ने जो है तस्दीक कर दी है कि साहबजादा ने जो मैसेज किया है वो सही है खालिद निजामी साहब का। खैर इस हवाले से बस यही कहेंगे कि यार उनके लिए बेतहाशा दुआएं हैं कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। क्योंकि वक्त बहुत महदूद सा रह गया है तो सवालात की जानिब आ जाते हैं। पहला सवाल मैंने किया कि सांप अगर आप ख्वाब में देखते हैं तो ये किस चीज की अलामत है, और लोगों ने 100% दुरुस्त जवाब दिया कि दुश्मन की अलामत समझा जाता है और छुपे हुए दुश्मन की भी अलामत समझा जाता है और हासिद की अलामत भी समझा जाता है। ये सब दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। और ये इंदिया होता है, आपको ये बात बता दूं, कुछ लोग बिल्कुल बेखबर से होते हैं तो उनकी बेखबरी को समझें कि अल्लाह ताला जो है उनको एक इंदिया देता है कि छुपे हुए दुश्मन तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं, उनको जानो। अयाज अहमद साहब कैसे हैं आप, आपके मुतालिक आ रहे हैं मैसेजेस आपके शो से रिलेटेड। साहबजादा साहब ने भी किया है कि आज भाई ने शो में बहुत कुछ बताया, खालिद निजामी साहब का भी आपने बताया था। और अब्बास भाई कह रहे हैं क्या बात है गुल साहब। तो जनाब पहले सवाल का जवाब तो ये दुरुस्त हो गया, और दूसरा सवाल मैंने आपको ये आपसे ये किया था कि वो कौन से हमारे नबी हैं कि जिनको अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा अता फरमाया था कि वो ख्वाबों की ताबीर जो है वो बताते थे, तो वो थे जनाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। और इसका भी जवाब 100 में से 100% लोगों ने दुरुस्त दिया है, माशाल्लाह से। क्या बात है यार, दिमाग बड़ा तेज का काम कर रहा है सब लोगों का। लगता है कि बादाम बहुत खाए जा रहे हैं भाई, बादाम सस्ते हो गए लगता है। और फौरन से पेशतर लेकर जाएंगे हम एक और फरमाइश की जानिब जो कि अनीस साहब ने की थी हमारे, वो अभी पूरी कर रहे हैं। पहले ये थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक सुने।

भिट जा भिटाई, ब्यूटीफुल ट्रैक जनाब, और ये थोड़ा सा रिमिक्स ट्रैक था, तो इस वजह से हो सकता है कि हमारे अनीस भाई को मजा ना आया हो, लेकिन इसका सेकंड वर्जन जो है वो भी हम आपको कभी ना कभी सुना देंगे। और कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, खालिद साहब की न्यूज दुरुस्त है जनाब, इसकी तस्दीक आई जा रही है मेरे पास। तो अब जनाब हम बढ़ते हैं जिंदगी के ट्रैक की जानिब, और जिंदगी ने कहा था कि फरमाइश नहीं करेंगी, मगर हम उनकी फरमाइश अपनी जानिब से पूरी कर रहे हैं। एक दो वर्ड सुनाऊंगा।

भाई हमने बहुत कोशिश की जिंदगी मगर नहीं जा गाया जा रहा, गले में बहुत गड़बड़ है और खांसी शदीद हो रही है, तो लिहाजा इस थोड़े को बहुत समझकर कबूल करो, बड़ी मेहरबानी होगी तुम्हारी। अच्छा जनाब, जिगर गले में गड़बड़ है, बहुत ज्यादा है। और अब्बास खान भाई, बिल्कुल आपकी आईडी समझ गए। और आखिरकार हमारे शहजादे आ गए हैं, शहजादा सलीम मेमन साहब। सुनो, आज कुछ तबीयत नासाज है, दुआ कीजिएगा भाई। आपके लिए ढेरों दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अच्छा जनाब, सवालात के जवाब तो मैं दे ही चुका हूं, और अब हमारी प्यारी सी तानिया हसन जी, जो कि माशाल्लाह से उम्र की सआदत हासिल करके आई हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और हम सब की जानिब से भी और खुसूसी तौर पर मेरी जानिब से तानिया हसन जी, आपको जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा कलाम जो है वो डेडिकेट करूंगा मैं, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत पसंद आएगा। हम सबके दिल के बहुत करीब ये कलाम है और ये आपके लिए। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे कल स्लीपलेस नाइट में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।

کیونکہ وہ بہت انمول ہے لیکن بول ہی کھولے بول بول